मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 और 17 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप सभी को आयुष तोमर का नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर

0: सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

अभी आप सुन रहे थे गुंदेचा बंधु की आवाज़ में ये भजन। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में लीजिए अब प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में ये भजन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का प्रसारण यहाँ से किया जा रहा है। कार्यक्रम वंदना अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम वंदना का समापन हम कर रहे हैं अंबर कुमार की आवाज़ में इस भजन के साथ।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत विषय है धैर्य। उक्त विषय पर आलेख है डॉक्टर विष्णु अग्रवाल का और वाचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का है।
1: धैर्य और सफलता का गहरा रिश्ता है, क्योंकि धैर्य बनाकर रखने वाले लोग अपने कार्यों के इच्छित परिणाम न आने पर भी साहस बनाए रखते हैं और जीत के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये धैर्य ही है जो मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाता है, जिससे मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सतत प्रयासों से असफलता से बाहर निकल आता है। इसका सीधा कारण है कि धैर्यवान मनुष्य अपनी जीत के साथ साथ अपनी हार को भी बर्दाश्त करने की क्षमता धैर्य से विकसित कर लेता है, अन्यथा धैर्यहीन के अवसादग्रस्त बन जाने का खतरा बन जाता है। आज के आपाधापी भरे युग में अधिकांश युवा व प्रौढ़ व्यक्ति, खासकर महिलाओं में अवसाद की स्थिति निरंतर बढ़ती दिखाई दे रही है। इसका एक बड़ा कारण धैर्य का अभाव और शीघ्र सफलता प्राप्त करने की तीव्र लालसा है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सफलता का सूत्र धैर्य को बताते हुए लिखा है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, पर अत्यधिक धैर्यवान हूं। बस यही इतनी सी बात है जिसके कारण मैं किसी भी समस्या के साथ ज्यादा वक्त तक रह लेता हूं। धैर्यवान होना सरल काम नहीं है, और ये कहना शायद गलत न हो कि आज की दुनिया में धैर्यवान बनना सबसे कठिन काम है। मनोविज्ञान में धैर्य की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि धैर्य का अर्थ एक तरह की शक्ति है जिसमें प्रतीक्षा, निरीक्षण व सही मौके पर सही प्रतिक्रिया से व्यक्ति स्वयं को दूसरों की अपेक्षा सफल बना सकता है। अतः धैर्य रखने का अर्थ शांति के साथ कदम उठाना और परिणाम की प्रतीक्षा करना है। उतावलेपन का अर्थ तुरंत परिणाम तक पहुंचने की लालसा रखना है, जो कि मनुष्य की बहुत सी बड़ी कमियों में से एक है। अनेक शब्दकोशों में धैर्य का अर्थ स्वयं को रोकना बताया गया है। जब कोई व्यक्ति खुद को किसी काम से रोक ले जिसे वो कर सकता हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि उसने धैर्य से काम लिया। इसलिए धैर्य की आम परिभाषा ये होगी कि खुद को ऐसे काम से रोकना जो लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट या उस तक देर तक पहुंचने का कारण बने। धैर्य कोई नैतिक गुण नहीं है, बल्कि संयम और ठहराव का एक कठिन अभ्यास है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों और साधकों ने वर्षों कठिन विषम स्थितियों में तप साधना की, अनेक बाधाएं आईं, कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा, कई बार धैर्य के बांध का फूटने का वातावरण बना, किंतु उन महापुरुषों ने अपने धैर्य को कड़ाई के साथ साधे रखा। वे आज संसार में अद्वितीय शक्तियां अर्जित कर सके हैं, आत्मकल्याण भी किया और मनुष्य जाति का भी कल्याण किया। ये केवल और केवल धैर्य के कारण ही संभव हो सका। व्यक्ति अधैर्य का मुकाबला इस प्रकार करे कि उसके चेहरे से बेचैनी प्रकट न हो, वो शांत दिखाई दे, अपनी जुबान से शिकवा न करे और अपने अंगों को गलत काम करने से रोके। धैर्य का धर्म में एक स्थान है, और इसी प्रकार एकेश्वरवादियों की भी एक विशेषता रही है। जब तक व्यक्ति में धैर्य न होगा, वो उच्च स्थान तक नहीं पहुंच सकता। वर्तमान समय में धैर्य का अभाव अधिक देखा जा रहा है। कई प्रकार की समस्याएं अधैर्य के कारण जन्म ले रही हैं। हर व्यक्ति वक्त की कमी का रोना रोता रहता है, जिसके कारण अधीरता उत्पन्न होती है। दरअसल जब व्यक्ति अपनी समस्या को थोड़ा और वक्त देने को तैयार नहीं होता, तो क्रोध और चिंता जैसे नकारात्मक गुण पनपते हैं, जिससे लिए गए निर्णय गलत होते हैं और जीवन नकारात्मकता के दुष्चक्र में फंस जाता है। नकारात्मकता किसी भी प्रकार की हो, व्यक्ति और उसके आसपास के परिवेश के लिए हमेशा हानिकारक ही होती है। आज हमारे चहुओर के वातावरण में नकारात्मक संवेगों का संचरण अधिक दिखाई देता है, जिससे सकारात्मक संवेग भी प्रभावित होकर निषेधात्मक चिंतन में परिवर्तित हो जाते हैं। फलस्वरूप हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद, चिड़चिड़ापन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अधीरता न केवल व्यक्ति के लिए हानिप्रद है, वरन समाज, राष्ट्र व विश्व के लिए भी खतरे की घंटी है। इससे बचना और बचाना परम आवश्यक है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत धैर्य विषय पर डॉक्टर विष्णु अग्रवाल का आलेख, वाचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का था। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

0: ये थी श्री रामचरितमानस से आज के कार्यक्रम की संगीतमय प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत लीजिए सुनिए ये सामयिक चर्चा, जिसका विषय है बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। उक्त विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय के रूप में करें। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। बकरी के दूध में पौष्टिक गुण होने के साथ साथ लौह तत्व की अधिकता, प्रोटीन और वसा की मात्रा लगभग माँ के दूध के बराबर पाई जाती है। बकरी के दूध में वसा के कण छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, जिससे यह दूध गाय भैंस की तुलना में शीघ्र पाचनशील होता है। जो व्यक्ति दमा और खांसी रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए बकरी का दूध दवा का कार्य करता है। बकरी गाय और भैंस की अपेक्षा आकार में छोटी होती हैं, इसलिए आवास व्यवस्था बनाने में अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और कम पूंजी में व्यवसाय आरंभ किया जा सकता है। बकरियों की यदि सही तरह देखभाल की जाए और उन्हें संतुलित आहार दिया जाए तो बकरियां शीघ्र ही आय का स्रोत बन जाती हैं। बकरियों की प्रमुख रूप से दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जमुनापारी और बरबरी। जमुनापारी बकरियां अक्सर सफेद रंग के साथ साथ काले और कत्थई धब्बों के रूप में पाई जाती हैं। इनका आकार बड़ा और कान बड़े लटके हुए होते हैं। पिछले पुट्ठों पर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं। ये बकरियां दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त होती हैं। इनका औसत दूध उत्पादन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। बरबरी बकरियां प्रमुख रूप से दूध उत्पादन के लिए ही पाली जाती हैं। बकरी खरीदते समय बकरी की उम्र लगभग 3 वर्ष हो, माथा लंबा मध्यम चौड़ाई वाला हो और माथे पर घने बाल न हो, आंखें बड़ी और चमकीली हो। जिस उद्देश्य से बकरी पालन करना चाहते हैं, सुविधा अनुसार नस्लों का चयन करना चाहिए और स्थिति के अनुसार जितनी बकरियों को सफलतापूर्वक पालन पोषण कर सकें, शुरुआत कम बकरियों से करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। बकरियों के लिए आवास व्यवस्था इस प्रकार बनानी चाहिए कि बकरियों को सर्दी, गर्मी, वर्षा और जंगली जानवरों से बचाव किया जा सके। साथ ही आवास ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी न ठहरता हो, क्योंकि बकरियां कीचड़ और गीलापन बिल्कुल पसंद नहीं करती। आवास ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर स्वस्थ हवा और प्रकाश का आवागमन होता रहे। बकरियों को स्थान का अभाव महसूस न हो। जहां पर बकरियों को रखते हैं वहां पर लगातार साफ सफाई करते रहें। नियमित अंतराल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें, जिससे किलनियां, मक्खी, मच्छर पैदा न होने पाए। अधिक ठंडी और अधिक गर्मी से बकरियों का बचाव करें। संतुलित और सुपाच्य आहार दें। स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं। अंतः परजीवियों से बचाव के लिए समय समय पर दवाएं पिलाते रहना चाहिए। बकरियों में रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। यदि बकरियों की चाल में परिवर्तन दिखाई दे, भूख कम हो जाए, नथुने और थूथन सूखने लगे, नाड़ी की धड़कन कम या अधिक हो जाए, श्वसन गति में अंतर आ जाए, गोबर और मूत्र में परिवर्तन दिखाई दे, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और रोग की रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कहीं भी और किसी भी मौसम में आसानी पूर्वक किया जा सकता है।

0: अगर बकरियों की सही तरह देखभाल की जाए तो उन्हें जीवित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आर्थिक आय का एक स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनी आपने ये सामयिक चर्चा, जिसका विषय था बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
4: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
3: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
4: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला ना रखें।
3: सीधे नल के नीचे बर्तन ना धोएं।
4: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
3: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
4: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
3: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
4: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
3: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
4: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
3: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
4: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
5: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
4: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
3: समय है पानी बचाने का,
4: पानी का मोल समझने और समझाने का।
3: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
6: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
7: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
6: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमेरिकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क ये आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का

0: प्रभुपाद।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। कलाकार होंगी शीतलेश्वरी शर्मा, इनके साथ सारंगी पर साथ देंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान और ढोलक पर साथ देंगे श्रवण कुमार शर्मा। प्रातः 9:00 आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। प्रातः 9:30 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कलाकार होंगे आरोह कंपू वाले, इनके द्वारा गायन में प्रस्तुत किया जाएगा राग नट भैरव। प्रातः 10:05 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 11:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 12:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम संग्रहालय से। दोपहर 1:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति इंदौर जिले की होगी। दोपहर 1:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम लोक संगीत, प्रस्तुति इंदौर जिले की होगी। दोपहर 1:45 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सुगम संगीत, प्रस्तुति इंदौर जिले की होगी। दोपहर 2:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा।

सायं 5:02 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति भोपाल जिले की होगी। सायं 5:33 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। सायं 6:00 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। सायं 6:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। सायं 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे मनोज शर्मा और निधि शुक्ला। रात 10:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम राग रजनी। इसी के साथ हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब यहीं संपन्न होती है।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, सांदीपनी विद्यालयों में बनेंगे खेल परिसर। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन की समस्याओं का किया जाएगा निराकरण, मंत्रिमंडल समूह ने दिया आश्वासन। और प्रदेश में भोपाल सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भोपाल स्थित नाथूखेड़ा बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित है। यहां भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मलखंब और जिम्नास्टिक अकादमी जल्द शुरू करने और प्रदेश के सभी सांदीपनी विद्यालयों की उपलब्ध भूमि पर खेल परिसर विकसित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: वाकई लग रहा है कि हाँ, हमारा भोपाल अपने खेल के उस गौरवशाली गर्वित करने वाले इतिहास में कदम रख रहा है जिसकी उसको वर्षों से दरकार थी। और ये वर्ष और हमारे लिए उल्लेखनीय रहेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी एशिया कप की स्पर्धा हमारे राज्य में होने वाली है। ऐसे में जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी राज्य से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज गर्व है इस बात का कि हर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य देश के खिलाड़ी अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और खेल जगत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान में जन सामान्य को विगत वर्षों की तरह उत्साह और देशभक्ति के साथ स्वाधीनता दिवस मनाने और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान देशभक्ति से उत्प्रोत शासकीय कार्यक्रम, चर्चाएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। अभियान में केंद्रित तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा बाइक रैली, मानव श्रृंखला, तिरंगा एंथम जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह विजयी हुए हैं। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की अयोग्य घोषित होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजालपुर विधानसभा सीट जीत ली है। भाजपा उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। वरिष्ठ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर विजयी हुए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अब तक 5,29,484 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इनमें 3,34,454 छात्राएं और 1,95,030 छात्र हैं। इस प्रकार कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में लगभग 2/3 भागीदारी छात्राओं की रही है। प्रवेश आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश का प्रवेश आधारित जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.71 दर्ज किया गया है, यानी प्रत्येक 100 छात्रों पर 171 छात्राओं ने प्रवेश प्राप्त किया है। यह आंकड़ा उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, सामाजिक विश्वास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के प्रगतिशील सोच का सशक्त प्रमाण है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी ये सिद्ध करती है कि प्रदेश की बेटियां उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र पुलिस मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे कल नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेना दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यालय असैन्य सैन्य तालमेल को उत्कृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह कार्य करता है। श्री सिंह ने कहा,
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल समूह ने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कल भोपाल में की गई बैठक में बताया गया कि परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इससे राज्य शासन की तरफ से 3 अधिकारी, 4 ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से अधिकृत एक प्रतिनिधि होगा। कमेटी जो निर्णय करेगी उस पर सरकार विस्तार विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेगी। बैठक में बस को लेकर भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है, जल्द ही उस पर निर्णय हो जाएगा। बैठक में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन उड़ीसा और केरल के मॉडल पर होगा। विधिवत बॉडी मेकर से बॉडी बनवाने के बाद भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेडलाइन से पहले क्रय किए गए चेचिस पर भी सहमति बनी है। अंतर्राज्यीय बस परमिट के जो मामले लंबित थे उन पर नियमों के प्रावधानों के तहत उस पर भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भोपाल में नागरिकों और युवाओं के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये तिरंगा यात्रा समाज में अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रेरणा सहित देशभक्ति की भावना के प्रसार का माध्यम बनेगी। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिन आज खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार की लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक औसत 15.9 इंच बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी हिस्सा जैसे जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में 20% कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में श्रावण मास के अवसर पर नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और मिजल्स की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञों ने 3 दिवसीय निरीक्षण किया। आगरमालवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम में ई विकास पोर्टल को और अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए कल कलेक्टर कार्यालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अशोकनगर के जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल जुलाई 2026 के दौरान आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के प्रदर्शन में जिले को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। झाबुआ जिले में आगामी 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इंदौर में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 531 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कल स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत पहला गीत हमने लिया है फिल्म कहो ना प्यार से। इस गीत को लिखा है विजय अकेला ने, संगीत राजेश रोशन का है और आवाज़ है लकी अली की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये पहला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में हमने अगला गीत लिया है फिल्म दिल चाहता है से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का है और आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दी हाँ ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: सो योर प्लेस और माइन
8: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डोम है
7: कॉन्डोम लेकिन हम
8: तो क्या हुआ ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो
7: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है ये बात मैं समझ गया हूँ
6: आप भी ये बात याद रखें संयम वफादारी और कॉन्डम अपनाएं सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी

0: भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
1: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
0: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने

कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर, विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए

सुना फिल्म वेलकम वेलकम का ये गीत, जिसको लिखा था आनंद राज आनंद ने, संगीतबद्ध किया था आनंद राज आनंद ने, और इस गीत को अपनी आवाज़ भी दी थी आनंद राज आनंद ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जमीर से। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत सपन चक्रवर्ती का है और आवाज़ किशोर कुमार की है।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म याराना से। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत राजेश रोशन का है और आवाज़ किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अगला गीत।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मर्यादा से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: गुस्सा।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब समय है कार्यक्रम के अंतिम गीत को शामिल करने का। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म जबरदस्त से। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और आवाज़ किशोर कुमार की है। तो आइए सुनते हैं फिल्म जबरदस्त से, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: ये आकर्षण।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
2: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
1: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
3: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक

0: यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
1: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहाँ लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग

0: असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित दो और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वीर शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning.

लोकगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। लीजिए, कार्यक्रम में अब आपके लिए प्रस्तुत है कलाकार शीतलेश्वरी शर्मा की आवाज़ में ये लोक भजन।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। लीजिए, कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलाकार शीतलेश्वरी शर्मा की आवाज़ में ये भजन।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं शीतलेश्वरी शर्मा। कार्यक्रम लोकगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं शीतलेश्वरी शर्मा की आवाज़ में इस कजरी गीत के साथ।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल स्थित नाथू बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश में मलखंब और जिम्नास्टिक अकादमी जल्द शुरू करने और प्रदेश के सभी सांदीपनी विद्यालयों की उपलब्ध भूमि पर खेल परिसर विकसित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। दौरान देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह विजयी हुए हैं। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। उच्च शिक्षा की ई प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान प्रदेश में अब तक 5,29,484 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इनमें 1,95,030 छात्र और 3,34,454 छात्राएं हैं। ये आंकड़ा उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और प्रदेश की प्रगतिशील सोच का सशक्त उदाहरण है। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि कल भोपाल में हुई बैठक में प्रदेश में परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में राज्य सरकार की तरफ से 3 अधिकारी, 4 ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और 1 मुख्यमंत्री से अधिकृत प्रतिनिधि होगा। और मौसम केंद्र के अनुसार आज नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं ग्वालियर दतिया निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: सुरमई सवेरा कार्यक्रम में फिर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नीति।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
3: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र आयुष तोमर। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी महत्वता मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत अधिक रही है। आज हम भारतीय सिनेमा और संगीत

जगत के उस महान कलाकार को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं जिनकी आवाज़ आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं महान पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्माता और निर्देशक किशोर कुमार जी की। इनकी जयंती प्रतिवर्ष 4 अगस्त को मनाई जाती है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली था। बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था। बिना किसी औपचारिक संगीत शिक्षा के उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा और अथक मेहनत के बल पर भारतीय फिल्म संगीत में वह स्थान प्राप्त किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। किशोर कुमार केवल एक गायक ही नहीं थे बल्कि अभिनय, हास्य, संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण में भी समान रूप से सफल रहे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक अनूठा कलाकार बना दिया। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास, ऊर्जा और भावनात्मक गहराई थी कि हर उम्र का श्रोता उनसे जुड़ जाता था। उन्होंने लगभग हर बड़े अभिनेता के लिए अपनी आवाज़ दी, जिसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देवानंद और धर्मेंद्र जैसे अभिनेता प्रमुख हैं। रोमांटिक गीत हों, दर्द भरे नगमे हों, मस्ती से भरपूर गाने हों या प्रेरणादायक रचनाएं हों, हर शैली में उनकी गायकी ने अमिट छाप छोड़ी। रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास, ओ साथी रे, जिंदगी का सफ़र है सुहाना, चिंगारी कोई भड़के, हमें तुमसे प्यार कितना, छूकर मेरे मन को, जैसे अनगिनत गीत भी आज उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उतने समय में थे। उनकी आवाज़ में जीवन का उत्साह, प्रेम की मिठास और भावनाओं की सच्चाई सहज रूप से झलकती थी। किशोर कुमार को अपने शानदार गायन के अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी लोकप्रियता समय के साथ और भी बढ़ती गई और आज भी नई पीढ़ी उनके गीतों को उतने ही प्रेम से सुनती है। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्ची प्रतिभा किसी एक सीमा में बंधी नहीं होती। यदि व्यक्ति में लगन, आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति समर्पण हो तो वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। किशोर कुमार ने हमेशा अपनी मौलिक शैली को बनाए रखा और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके अमर गीतों को नमन करते हैं। उनका संगीत आने वाली अनेक पीढ़ियों तक लोगों के जीवन में खुशियाँ, प्रेरणा और नई ऊर्जा सदैव सदैव भरता रहेगा।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: वीर तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र आयुष तोमर। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं हम कि स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, वे कोई और नहीं बल्कि प्रख्यात विधिवेत्ता, समाज सुधारक और कुशल प्रशासक फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता को उनकी जयंती पर हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उनका जन्म 4 अगस्त 1845 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। अपने असाधारण व्यक्तित्व, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के कारण वे भारतीय इतिहास में बॉम्बे के शेर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने विधि की शिक्षा हासिल की। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन उनका जीवन केवल एक सफल वकील बनने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने ज्ञान और क्षमता को देश और समाज की सेवा के लिए भी समर्पित किया। वे भारतीय राष्ट्रीय चेतना के प्रारंभिक दौर के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वर्ष 1885 में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका विश्वास था कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने शिक्षा, नागरिक अधिकारों और सुशासन को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। फिरोज शाह मेहता ने मुंबई नगर निगम के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्हें आधुनिक मुंबई की नगर प्रशासन व्यवस्था का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क निर्माण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए। आज भी नगर प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। वे एक उत्कृष्ट वक्ता और निर्भीक पत्रकार भी थे। उन्होंने समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और भारतीयों की आवाज़ को सशक्त रूप से सामने रखा। उनका मानना था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है। फिरोज शाह मेहता के जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान खोजने और जनहित के कार्य करने में है। उन्होंने ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं का सदैव सम्मान किया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जब हम एक सशक्त, स्वच्छ और उत्तरदायी लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज उनकी जयंती पर हम संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे, समाज के विकास में योगदान देंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

0: कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
2: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
1: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
2: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
1: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
2: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
1: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
2: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: पानी रे पानी,
4: पानी पानी रे पानी,
1: आओ मिलकर करें प्रयास,
2: शुद्ध पानी हो सबके पास।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी प्रासंगिकता आज के इस दौर में हमारे लिए बहुत अधिक बढ़ चुकी है। विषय कुछ ही इस प्रकार है कि एआई को गढ़ने वाले मनुष्यता की कितनी समझ रखते हैं। हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब यह नहीं रह गया है कि क्या एआई हमारी दुनिया को बदल देगा। वैसा तो वह पहले ही कर चुका है, लेकिन अब दुनिया को इस तकनीक के लिए एक मोरल कंपास यानी कि नैतिक दिशा निर्देश की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ जिनेवा में आयोजित एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट में 170 देशों से आए 12,000 से अधिक प्रतिनिधियों के समक्ष कंपैशनेट एआई की बात रखी गई थी। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि एआई केवल लाभ और शक्ति का माध्यम न बनकर व्यापक जनहित में योगदान दे, तो हमें एआई इंजीनियरों और डेवलपर्स को एक महीने के लिए उनकी प्रयोगशालाओं से बाहर भेजना चाहिए, उन्हें खदानों और कारखानों में काम करने वाले बच्चों से मिलना चाहिए, संघर्षों के कारण विस्थापित हुए परिवारों से भेंट करनी चाहिए और गरीबी, भेदभाव तथा सामाजिक बहिष्कार झेल रहे कमज़ोर समुदायों के बीच समय बिताना चाहिए। उन्हें उन लोगों के साथ चलना चाहिए जिनका जीवन टेक्नोलॉजी के से ज़्यादा अन्याय से प्रभावित होता है। केवल एक महीने का ऐसा अनुभव भी किसी व्यक्ति की सोच बदल सकता है, और वही इस बात को प्रभावित करेगा कि डेवलपर इस तकनीक को किस दिशा में ले जाते हैं। एआई पहले ही शिक्षा, हेल्थ केयर, बिजनेस, शासन और रिसर्च के नए रूप में ढाला जा रहा है, लेकिन हर तकनीक क्रांति एक नैतिक परीक्षा भी होती है और एआई अपवाद नहीं है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को ही भूल रहे हैं, और वो यह है कि आखिर यह बुद्धिमत्ता किसकी सेवा के लिए है। यह सही है कि वैश्विक मंचों पर होने वाली अधिकांश चर्चाएं पहले ही नैतिक एआई और जिम्मेदार एआई जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित हैं, लेकिन हमें बेहतर शासन व्यवस्था, सार्थक जवाबदेही और प्रभावी रेगुलेशन की ज़रूरत है। नैतिकता ही हमें बता सकती है कि क्या सही है। कानून सीमाएं तय कर सकते हैं, लेकिन वे उन लोगों की सोच को नहीं बदल सकते जो अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए और गहरी वस्तु की आवश्यकता है, और वह है करुणा। करुणा को अक्सर सहानुभूति, दयालुता या परोपकार का पर्याय समझ लिया जाता है, लेकिन यह इनमें से किसी भी समानार्थी के रूप में नहीं है, और ना ही यह केवल एक भावना या कोई अमूर्त नैतिक आदर्श है। करुणा की शुरुआत तब होती है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को अपना मानते हैं। यही भावना हमें उसकी पीड़ा को कम करने के लिए कदम उठाने को प्रेरित करती है। इसमें कार्रवाई करने का साहस भी शामिल होता है। करुणा में हमें केवल व्यवस्थाओं और अधिक सक्षम बनाने नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की रक्षा करने की दिशा में भी ले जाती है। कंपैशनेट एआई दूसरे फ्रेमवर्क से इसलिए अलग है क्योंकि इसकी शुरुआत तकनीक नहीं बल्कि मानवता से होती है। यह पूछने से पहले कि कोई प्रणाली क्या कर सकती है, कंपैशनेट एआई यह पूछता है कि वह किसके लिए काम करता है। अधिक दक्षता हासिल करने से पहले यह उसके मानवीय परिणामों पर विचार करता है। इनोवेशन का उत्सव मनाने से पहले यह पूछता है कि कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट जाएगा। आज एआई की अनेक विफलताओं जैसे पूर्वग्रह, भेदभाव, बहिष्कार, भ्रामक सूचना, पर्यावरणीय क्षति और बच्चों के कल्याण के लिए खतरे को अक्सर प्रगति के दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रभावों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये केवल दुष्प्रभाव नहीं है, ये इस बात के प्रमाण भी हैं कि जब इन प्रणालियों को विकसित किया गया तब मनुष्यता के हित की बात करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति अनुपस्थित था, उसकी अनदेखी की गई थी या उसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। आज बड़े हो रहे बच्चे संभवतः अपने माता पिता, शिक्षकों या पड़ोसियों की तुलना में इंटेलिजेंट मशीनों के साथ अधिक समय बिताएंगे। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को तो हम पहले ही समझ चुके हैं। इसीलिए हमें यह पूछने के बजाय कि एआई अर्थव्यवस्था को किस तरह बदल सकता है, यह पूछना चाहिए जब एल्गोरिदम किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करने की मानवीय क्षमता की जगह ले ले तो उसके क्या नतीजे होंगे। यदि उन्हें पीड़ा को पहचानने के लिए कभी तैयार ही नहीं किया गया
तो क्या वे न्याय की रक्षा कर पाएंगे? यदि उनका लक्ष्य केवल मुनाफे को बढ़ाना हो तो क्या वे शांति पर जोर दे सकेंगे? ये नैतिक प्रश्न तकनीकी प्रश्नों से पहले पूछे जाने चाहिए, क्योंकि यही मानवता के भविष्य को आकार दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं श्रोता साथियों, आपको ये चर्चा ज़रूर पसंद आई होगी। समय है कार्यक्रम में एक गीत को शामिल करने का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9:31 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं आरहो कंपू वाले और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है गायन में राग नट भैरव। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के तहत कलाकार थे आरहो कंपू वाले और इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया गायन में राग नट भैरव। सारंगी पर साथ दे रहे थे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। ज़िले की चिट्ठी का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

वाचन स्वर दीपा सिंह। सीहोर जिले में बोनी का कार्य किसानों द्वारा शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। इस खरीफ सीजन में जिले में लगभग 4,08,000 हेक्टेयर रकबे में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन, लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान और 31,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई है। जिले में इस बार अलनीनो के प्रभाव के चलते बारिश काफी कम हुई है। मॉनसून सत्र में अब तक औसतन 19.92 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले साल 25.44 इंच औसत बारिश दर्ज की गई थी। बीते दिनों अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की 202वीं पुण्यतिथि पर सीहोर के दशहरा मैदान स्थित उनकी समाधि पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, भारत छोड़ो समिति के बलवीर सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने अमर शहीद कुंवर चैन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलेक्टर बाला गुरु के ने जिले के ग्राम नापलाखेड़ी, सतपिपलिया, धामंदा के आयुष्मान आरोग्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की स्थिति देखी। जिले में एनएचआरसी दिल्ली की टीम द्वारा बमुलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NQAS प्रमाणित किया गया है। जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देव बड़ला बिलपान में प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने रुके हुए विकास कार्य शुरू किए हैं। विभाग की इस पहल से क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों सीहोर जिले में वर्षा ऋतु में पेयजल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों में क्लोरिनेशन शुरू किया। इसके तहत विकासखंड सीहोर के 1,397, इछावर के 827, आष्टा के 1,068, बुधनी के 69, भैरुंदा के 256 हैंडपंपों में क्लोरिनेशन का काम पूरा किया गया। जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग

0: के संयुक्त प्रयासों से चल रहे उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण के 3 सत्र हुए। प्रशिक्षण का मकसद शिक्षकों को आरोग्य दूत के रूप में तैयार करना रहा। पिछले दिनों सीहोर जिले में जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत भैरुंदा स्थित शासकीय गर्ल्स स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान एसडीओपी रोशन कुमार जैन ने बढ़ते साइबर अपराध से बचाव के लिए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने पर जोर दिया। सीहोर जिले में इन दिनों नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान उत्साह के साथ मनाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में रैली, मानव श्रृंखला, नशा मुक्ति शपथ, निबंध, पोस्टर, पेंटिंग और स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइकिल रैली और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीते दिनों सीहोर के बुधनी स्थित प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में गुप्त नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश और देश के लाखों श्रद्धालुओं ने मां विजयासन देवी के दर्शन किए। सीहोर जिले में ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर आय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भारत बीवीजी रामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिल रही है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इस दौरान शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ। बीते दिनों सीहोर में शिक्षा का नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ। जिले के 13 सरकारी कॉलेजों सहित 40 निजी कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पूरी हुई। सभी शासकीय कॉलेजों में बीकॉम, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी की सीट फुल हो गई है। मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर सीहोर जिले में मूंग उपार्जन का कार्य चल रहा है। इस बार जिले में किसानों से 60% मूंग की खरीदी की जाएगी। सीहोर जिले के आष्टा विकासखंड के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 5 विद्यालयों के नए भवन बनेंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने 2,39,52,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। वहीं जिले में भगवान शिव की आराधना का पवित्र सावन मास आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, साथ ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर भी तेज हो गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी भोपाल से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की पहली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है छोटी बलिया करजत मुंबई से। अहमद भाई फूल वाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, आमना आसमा परी, इकबाल अहमद फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है गणेशपुर गंज टुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सर फराज शेख, गुल फराज शेख, बेबी मुस्कान। नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीरुनिसा की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म याराना से इस गीत की, जिसको लिखा है अनजान ने, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने और आवाज़ है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत उर्फ यशु की, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह की। और इसी के साथ हमें फरमाइश प्राप्त हुई है पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल सहानी की। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म त्रिशूल से इस गीत की, जिसको लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है खयाम ने और आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: पढ़ाई छूट गई, अब चिंता छोड़िए।
5: MPSOS के साथ 10वीं-12वीं की पढ़ाई घर बैठे, अपने मनपसंद विषय चुनिए, साल में दो बार परीक्षा का अवसर।
4: चाहे नौकरी हो या घर की जिम्मेदारी, अब नहीं रुकेगी आपकी पढ़ाई। तो आज ही अपने नजदीकी आईसेट कियोस्क सेंटर पर पंजीयन कराएं, अपने पसंदीदा विषय चुनें और MPSOS परीक्षा की तैयारी शुरू करें। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के साथ तो कीजिए सपनों की नई शुरुआत।
6: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, संजय बमारकंडे, ममता मारकंडे और बेबी किट्टू की। इसी के साथ गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से भी हमें फरमाइश प्राप्त हुई है, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा की। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमें फरमाइश आई है, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की। विदर्भ गोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदर्श कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वत्सेन की हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। और इन सभी लोगों ने फरमाइश प्राप्त की है फिल्म शर्मिली से इस गीत की, जिसको लिखा है गोपाल दास नीरज ने, संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने और आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।
7: ओ मेरी

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार की। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है जो कि है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, रेशमा थापा की। और झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, बद्रु वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और फर्जू वली अंसारी की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म शालीमार से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीत राहुल देव बर्मन का है और आवाज़ किशोर कुमार और साथियों की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को हम शामिल कर रहे हैं जो कि है जेल रोड जलंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर की। इसी के साथ छटिया पोखर डुमराव से फरमाइश आई है फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार और सोनम वली बेलदार की। बिहार भवन दिल्ली से अक्रम कुटरिया और उल्लाह कुटरिया ने भी हमें फरमाइश की है। इसी के साथ बिहार कॉलोनी महासमुंद से हमें फरमाइश प्राप्त हुई है मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी की, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी की। जेल रोड मथुरा से हमें फरमाइश आई है शरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार और कल्लू मल्लू और कालिया बेलदार की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म सागर से इस गीत की, जिसको लिखा है जावेद अख्तर ने। संगीत राहुल देव बर्मन का है और आवाज़ किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है संदलपुर आंत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, चांदनी यादव और दीपक यादव की। इसी के साथ हमें एक फरमाइश और प्राप्त हुई है जो कि है गुमला झारखंड से। फरमाइश करता है SM जावेद, शगुप्ता अंजुम और नजमुल हुदा। जसपुर उत्तराखंड से हमें फरमाइश आई है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर की। इसी के साथ एक फरमाइश और प्राप्त हुई है गांव केरो ज़िला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबत की। और इन सभी लोगों

0: ने फरमाइश की है। फिल्म प्रेम पुजारी से इस गीत की, जिसको लिखा है नीरज ने, संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने और आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: शोखियों में भोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है गमरिया जमशेदपुर से। विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल की। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामनिया जिला गाजीपुर से हमें फरमाइश प्राप्त हुई है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल की। एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है डाबकी रोड अकोला महाराष्ट्र से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म सत्ते पे सत्ता से इस गीत की, जिसको लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन साहब ने और इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और भूपिंदर ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम के अंत में हमें फरमाइश प्राप्त हुई है पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री और रमेश गौड़ के साथ साथ मोहम्मद शादाब खत्री की। जामा मस्जिद रोड गोगावा से भी हमें फरमाइश आई है। हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी की। और इन सभी लोगों ने हमें फरमाइश की है फिल्म समाधि से इस गीत की, जिसको लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने और आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: वित्त मंत्रालय

0: मंत्रालय ने अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन कवरेज के लिए मासिक बेसिक वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह विजय हुए हैं। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज प्रशासन अकादमी भोपाल में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक, रोजगार उन्मुखी, बहुविषयक और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाना है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 का कैलेंडर और कार्य योजना पेश करते हुए सितंबर के पहले 10 दिनों में चुनाव कराने का लिखित आश्वासन दिया है और प्रदेश के ऊपर इस समय 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 मानसून ट्रफ सक्रिय है, लेकिन इसका प्रभाव कमजोर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है आकांक्षा श्रीवास्तव ने।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद फोन इन प्रोग्राम में। आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें बातें होती हैं दिल से और आवाज पहुंचती है आप सभी तक। तो आज आपकी बात आपकी आवाज को सभी तक पहुंचाने के लिए मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। श्रोताओं, आज हमारे इस फोन इन प्रोग्राम की थीम यानी विषय है कैसे। वो एक शब्द जो हमारी डेली लाइफ का सबसे बड़ा विलेन भी है और सबसे बड़ा हीरो भी। तो आज आप मुझे फोन करके बताइए अपनी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जहां आपने किसी मुश्किल को, किसी मजेदार सिचुएशन को या किसी डांट को हैंडल किया हो, पर कैसे किया। ये राज आज खोलना है तो हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। आपके कॉल्स, आपकी कहानी, आपके किस्से का हमें है इंतजार। हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, किन से बात हो रही है हमारी, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मेरा नाम अंजनी झा है।
0: अंजनी जी,
1: मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, अंजनी झा भोपाल से, कैसी हैं आप अंजनी जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या करती हैं अंजनी जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अभी मेरा 1 साल का बेटा है।
0: अच्छा,
1: तो अभी हमें मुझे कुछ करने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं वैसे में पेंटिंग करती हूँ।
0: ओह, कलाकार हैं आप।
1: जी
0: अंजनी जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम एक विषय देते हैं, उस पे आपसे हमारी बात हो रही है। आज का हमारा विषय है कैसे। हमारे जीवन में बहुत सारे कैसों का सामना हमको करना पड़ता है, रोज़ ही कई सारे कैसे आते हैं। अब आप एक नई नई माँ बनी हैं अभी, तो आपके जीवन में भी आते हैं, रोज़ ही आ रहे होंगे कि बच्चा है, आपका पैशन है, साथ में आप कलाकार हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? क्या आप अपने शौक को पूरा कर पा रही हैं इस सिचुएशन में अभी?
1: अगर मैं आज से 1 साल पहले की बात करूं, तो आज जो मैं हूँ शायद वो मैं 1 साल पहले नहीं थी। जितना पेशेंस मुझे इस 1 साल में मेरे बच्चे ने सिखा दिया है, उतना शायद मैं कभी नहीं कर पाती। पहले जब 2-3 काम हुआ करते थे, तब हमें समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था कि अरे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, कैसे करेंगे। और आज बच्चे को देखना है 24 घंटे की काम हो जाते हैं, 24 घंटे आपको देखना पड़ता है बच्चा।
0: बिल्कुल।
1: और मेरे बच्चे ने मुझे एक बहुत ज्यादा पेशेंट रहना और मल्टीटास्किंग होना सिखा दिया है।
0: क्या बात है।
1: तो उसका पूरा दिनचर्या तय है, उसके खाने का, पीने का, सोने का, उठने का सारा टाइम फिक्स रहता है। इन सारी चीजों के बीच में पेंटिंग मेरे लिए एक मेरा पीस है। मुझे वो करके बहुत ही सुकून मिलता है, एक मेरी अलग ही खुशी मिलती है मुझे उसमें।
0: तो उसके लिए आप कैसे समय निकाल पाती हैं? निकाल पाती हैं?
1: जी, निकालना पर जिन चीजों में आपको खुशी मिलती है उन चीजों के लिए आप समय निकाल ही लेती हैं।
0: ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने।
1: तो जब वो सोता है या फिर जब घर के बाकी लोग मदद कर रहे होते हैं, उसके साथ खेल रहे होते हैं, तब मैं उन सबसे छोटे से पल चुरा के मैं अपने लिए कुछ पल निकालती हूँ, जिनमें मैं वो पेंटिंग करती हूँ जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपने सुकून की तलाश आप पूरी कर ही लेती हैं। अच्छा, एक बात बताइए अंजनी जी, अक्सर हम जैसे एक रिमोट है, टीवी का रिमोट है, कई बार हम उसको चलाने के लिए ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, पीछे से ठक ठक ठक ठक मार दिया तो पता चला वो ऑन हो गया, जैसे कि बैटरी हमने चार्ज कर दी हो। तो हमें जीवन अपने रोज़ के दिन में भी कई बार ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। अब जैसे आपका पैशन है उसको पूरा करने के लिए, तो उसमें भी कैसे आता है कि वो आप कैसे करती हैं? क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है? आज का, पहले का कोई किस्सा है तो वो आप हमसे बता सकती हैं, कोई कहानी हो वो बता सकती हैं।
1: जुगाड़,
0: राइट? जुगाड़।
1: हमारे किचन से लेके माँ बनने तक से सफर में लेके पेंटिंग तक के सफर में जुगाड़ हमें बहुत लगाना पड़ता है।
0: जी,
1: जैसे बच्चे खाने नहीं खा रहे तो जुगाड़ लगाना पड़ता है कि कैसे खिलाएं खाना है इसको। पेंटिंग का कुछ कलर्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, और उस टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस कलर की. और वो टाइम ऐसा होता है कि आप बाहर जाके ला भी नहीं सकते, और वो आइडिया उस वक्त चला जाएगा अगर आपने नहीं किया तो. तो उस टाइम पे हमें वो कलर के लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता है, कैसा कौन से कलर से कौन सा कलर मिलाएं जो वो कलर बन जाए.
0: जी,
1: डे टू डे लाइफ में तो छोटे छोटे जुगाड़ तो हमेशा लगाने पड़ते हैं.
0: हाँ, तो इन जुगाड़ से आपका कैसे पूरा हो जाता है, है ना. अब वो कलर हम कैसे बनाएं, कलर खत्म हो गया है तो दो कलर को मिक्स किया और वो कैसे हमारा जुगाड़ से पूरा हो गया.
1: जी
0: जी, बहुत बढ़िया. अंजनी जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत अच्छे तरीके से आज के विषय को समझा और समझाया, और जो आपने किया वो काबिले तारीफ है कि छोटा सा बच्चा होने के बाद भी आपने अपने शौक को, अपने पैशन को, अपने उस सुकून को पीछे नहीं हटने दिया, सुकून पा ही लिया.
1: जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मुकाम आएंगे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिस टाइम आपको मन करेगा कि हम क्या करें, करें या नहीं करें, कैसे होगा ये, कैसे. ये कैसे बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है हमारी जैसे माओं के लिए वर्किंग, या फिर जिनको अपना पैशन, अपना कला पसंद है, टाइम निकालना, इन सारी चीजों को हैंडल करना बहुत
0: मुश्किल
1: होता
0: है. जी.
1: उस टाइम जो चीज मैं यूज करती हूँ, जो चीज मेरे दिमाग में रहती है, उस टाइम बस ये रहती है कि जो इरादे मजबूत हो तो राह बन ही जाती है, मुस्कुराहट से मुश्किल भी आसान हो ही जाती है.
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया. शायरा भी हैं आप. है ना.
1: कोशिश कर रही हूँ.
0: हाँ, यही तो कलाकार है. कलाकार में बहुत सारे किरदार होते हैं, सभी को आप बखूबी निभा रही हैं. अंजनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश. नमस्कार.
1: थैंक यू.

0: नमस्कार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, किनसे हमारी बात हो रही है?
1: प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं
1: जी।
0: प्रेम जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का हमारा विषय है कैसे। कैसे मतलब जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से कैसे हमारे सामने आते हैं, उनको आप कैसे फेस करते हैं। मतलब बहुत सारी समस्याएं, कभी खुशियां, कभी दोस्तों के साथ की कुछ बातें होती हैं और उसको हमें मैनेज करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि तो, जैसे हम खेत में काम करने ही जा रहे हैं
0: जी,
1: और समझ लीजिए कि हमें आज मजदूर नहीं मिल पाए
0: जी।
1: अब मजदूर नहीं मिल पाए तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि मजदूर आएंगे तभी खेत में काम होगा या फिर हमारा काम रुक जाएगा
0: जी।
1: तो हम ऐसे काम को सुलझाएंगे कि जैसे दो मजदूर मिले तो दो मजदूर के साथ में हम तीन लोग घर के हो जाएंगे। उसके साथ में हम भी काम करेंगे और ऐसे करके उस दिन का तो हमारा काम हो जाएगा।
0: बढ़िया, तो ये मैनेजमेंट आपका अपने आप से हो जाता है ना, अपने घर के लोगों को उसमें जोड़ के, और जो है उनसे हमने अपना मतलब काम नहीं रुका और हमने मैनेज कर लिया
1: जी। और ऐसे ही और बताना चाहेंगे आपको
0: जी,
1: कि जैसे कहीं हम बाहर जा रहे हैं या घर पे कोई नहीं है, बच्चे अकेले हैं, तो पहले बच्चों को स्कूल को छोड़कर आते हैं, स्कूल छोड़ने के बाद में फिर घर आएंगे
0: जी।
1: घर से वापस कहीं जाना होता है तो वहाँ जाएंगे, फिर वापस जल्दी आ जाएंगे ताकि बच्चों को स्कूल से पहले घर हम पहुँच सके और बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ जाएं।
0: तो ये तो मैनेजमेंट हो गया। अच्छा, इस कैसे के पीछे की कभी की कोई कहानी है कि कभी किसी सिचुएशन में आपको कोई जुगाड़ लगाना पड़ा हो, या मम्मी पापा से बचने के लिए, उनकी डांट से बचने के लिए आपने ऐसा कुछ तालमेल बिठाया हो?
1: जी,
0: कोई पुरानी कहानी हो अगर तो
1: बताएं।
0: बताएं।
1: तो मैं बहुत ही पुराना श्रोता।

0: आकाशवाणी भोपाल का
1: जी।
0: और इस तरह के जो समस्या आती है कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि इस तरह की जो कभी समय आता है तो उसमें माता पिता से झूठ बोलने का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने झूठ बोल के कोई शिकायत करके किसी से इसे बताकर हम अपनी बात को निकाला।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने।
0: होती थी ना, हम तो स्पष्ट बोलते थे
1: जी, तो उसके लिए उनको मनाना पड़ता होगा ना। अगर आपको अपना हाँ कोई काम करवाना है तो मम्मी पापा को मनाना पड़ता है। वो कैसे मनाया आपने, क्या किया कि वो मान गए, मासूम से बच्चे का चेहरा देख के मान गए या मासूम सी बात को सुन के मान गए, कैसे माने, क्या किया आपने?
0: जी ऐसे आपको बताऊं, जैसे कि अभी मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना अभी स्कूल जा रहे हैं
1: जी,
0: उन्हीं के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं।
1: बिल्कुल बताइए।
0: उनको कुछ अभी ही समझ लीजिए कि अब मैं उनको छोड़ के आया हूँ स्कूल पर, और वहाँ से जब कुछ टीचर ने उन्हें होमवर्क दिया या फिर ऐसे कुछ सामान अभी टीचर डे भी गया था, तो ऐसे मतलब बहुत सारी बातें होती है जो बच्चे हमसे बोलते हैं आकर घर पे, तो हमें उनको पहले तो बच्चों की बातों को सुने, उसके बाद में जो बच्चा बोल रहा है उसको समझे, और बच्चा खुद मतलब बताएगा कि हमें ये चीज़ की जरूरत होती है तो हम उनको लाके दिलाते हैं।
1: आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते
0: जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।

0: श्रोताओं, जीवन के हर कैसे सिर्फ फनी नहीं होते, कुछ कैसे प्रेरणादायक भी होते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब सब खत्म सा लगता है। आपने अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर का सामना किया, उससे आप बाहर कैसे आए, अगर ये भी आप हमें बताना चाहें तो जरूर बताएं। आपकी कहानी, आपका किस्सा किसी टूटते हुए इंसान का हौसला बन सकती है। हेलो, नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्ते, मैं रूपा बोल रही हूँ, होशंगाबाद रोड भोपाल से।
0: रूपा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बारिश का मौसम सुहाना सुहाना और रेडियो सुनना, ये तो एकदम मस्त वाली बात होगी।
0: बहुत बढ़िया। तो आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे
1: जी।
0: तो रूपा जी, इसमें आज हमारा विषय है कैसे। कैसे मतलब बहुत सारे कैसे हमें रोज ही उन कैसों का सामना करना पड़ता है। क्या आपके जीवन में ऐसे कैसे आते हैं, और अगर आते हैं तो आप उनका सामना कैसे करती हैं, वो हमें जानना है।
1: बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कैसे। मतलब हम हर दिन जूझते हैं ये कैसे के पीछे, और कैसे मुझे लगता है ये एक, मतलब मुझे लगता है हर जिज्ञासा की शुरुआत है। और मतलब हर दिन एक मोड़ आता है। अब हम माँ होने के बाद हमारे बच्चों के पास हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न होता है, ये कैसे वो कैसे, और हमें उस उत्तर के पीछे हमेशा
0: भागना होता है, ढूंढना होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कैसे, मैं कैसे आपको बताऊं, ऐसे एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ।
0: जी जरूर।
1: मेरी एक बहुत प्रिय सहेली हुआ करती थी, जिनको अभी पिछले कुछ महीनों पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और वो ना अपने जीवन से एकदम निराश हो चुकी थी, पर मुझे उन्हें उस चीज से बाहर निकालना था, और मैं उसका रास्ता खोजने के लिए उस कैसे के पीछे भागी।
0: तो रास्ता आपको मिला?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं आपको बड़ी खुशी से ये बोल सकती हूँ कि आज उस चीज से निकाल के, उस डिप्रेशन से निकाल के, आज उस इस जगह से आ गई है कि वो यार टीचर बन गई है।
0: वाह, क्या बात है।
1: वो कैसे, और मुझे लगता है हम हमेशा किसी कैसे के पीछे ऐसा उत्तर ढूंढते हैं जो कि किसी चीज की सफलता को हासिल कर पाए।
0: तो ये आप कैसे कर लेती हैं, ये मेरा सवाल है आपसे।
1: मतलब मुझे लगता है क्या से, अब तो हम इस उसमें है कि जहाँ हमें इंटरनेट की सुविधा है, हमें हर चीज की सुविधा है। पहले तो हम सिर्फ किताबें पढ़ के ढूंढ लेते थे, या हमारी जो लाइफ की एक्सपीरियंसेस होती हैं उसमें से हम, तो कैसे, इसलिए कि हर चीज का रास्ता तो जरूरी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उस चीज के बारे में पढ़ू, उसके बारे में ज्यादा कोशिश करूँ कि वो जैसा इंसान है उसके हिसाब से कैसी चीजें ला सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: ये मेरा
0: अच्छा, एक अलग सा सवाल, ये तो थोड़ा सा मतलब भावनात्मक उससे आपसे जुड़ा हुआ था। कभी आपकी जीवन में ऐसी सिचुएशन आई है कि कोई दोस्त है जो हमेशा प्लान बनाता हो, आप लोग प्लान बनाते हो और वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, उसको आपने कभी हैंडल किया है, कैसे हैंडल किया है ये कैसे बताइए।
1: बहुत बहुत बार हो गया। पहली चीज तो ये आपको भी लगता होगा, महिलाओं के साथ हमेशा रहता है, आप प्लान बनाइए, कभी घर की बात आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी बच्चे आ जाते हैं, तो वहां से निकलने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसा बड़ा मजेदार किस्सा है,
0: बताइए।
1: हमारी सहेली, उनको घर में बहुत, मतलब घर में थोड़ा बहुत बातचीत ऐसी हो गई थी, उनका मन मुटाव हो गया था, वो बिल्कुल दुखी।

0: वो घर से निकलने की सोच रही थी पर निकल नहीं पाई। हमने खूब प्लान बनाया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हो पाएगा। हमने सिर्फ उनको बोला चप्पल पहनिए और नीचे आ जाइए,
1: ठीक है फिर?
0: ये हमारा कैसे का उपाय था कि हमने उनको बोला आइए हम 2 मिनट बात करेंगे। हमने कुछ नहीं सुना, हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया।
1: अच्छा, नानुकुर करती इससे पहले आप उन्हें गाड़ी में बिठा के उड़ा के ले गई।
0: हाँ, और बिल्कुल उनको चाय की टपरी पे ले जाके उनसे थोड़ी देर बातचीत की और फिर निकाला। तो ये कैसे ऐसे हुआ कि वो दुखी थी पर जब घर पहुंची तो खुश थी।
1: यही होता है दोस्तों का साथ रूपा जी, है ना? हर परिस्थिति में उनका साथ देने का ये हुआ कि दुखी थी और आप लोगों का साथ पाके वो खुश हो गई।
0: कैसे जिस दिन हमारे अंदर से कैसे का सोचना बंद हो जाएगा और शायद दुनिया भी बदलना बंद हो जाएगी।
1: बहुत सही, बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: जीवित है क्योंकि वो कैसे है हमारे साथ।
1: और ये कैसे आते ही रहते हैं, रोज ही है इनका, कैसों का सामना हमको करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है
1: जी।
0: और जितने अच्छी तरह करेंगे अपने चीजों को, आसपास की चीजों पे ध्यान रखेंगे तो कैसे का उत्तर वहीं पे मिल जाएगा।
1: वहीं मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात आपने कही है रूपा जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ आप जुड़े रहिए। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत
1: हेलो
0: हमारे।
1: हेलो,
0: जी नमस्ते।
1: मैं आपका बहुत पुराना 70 के दशक का श्रोता सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
0: राजेश नेमा जी, कैसे हैं आप? आप
1: बस ठीक
0: हमारे
1: ठाक है, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं।
0: जी, हम चाहेंगे आप ऐसे ही आनंद लेते रहें,
1: जी,
0: और इतने पुराने हमारे नियमित श्रोता हैं, हमसे हमेशा
1: काफी
0: जुड़े
1: पुराना
0: रहें।
1: श्रोता हूँ और आपके फरमाइश कार्यक्रम में आप पत्र शामिल कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद।
0: आप इतने प्रेम से हमें पत्र लिखेंगे, समय निकाल के हमें पत्र लिखेंगे, तो हम लोग
1: जी
0: कैसे
1: जी
0: शामिल नहीं करेंगे राजेश जी?
1: जी
0: राजेश जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे,
1: जी
0: और हमारा आज का विषय है इसमें
1: जी
0: कैसे कैसे।
1: जी
0: मतलब कई बार कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें हम कोई मुश्किल काम में फंस जाते हैं, तो उस मुश्किल काम को आपने कैसे मुमकिन किया, कोई जुगाड़ लगाया? कई बार फनी सिचुएशन भी आती हैं हमारी लाइफ में, अगर इनसे जुड़ी कोई
1: हाँ,
0: आपकी कहानी हो तो वो हमें बताइए, हमसे साझा
1: बिल्कुल
0: कीजिए।
1: बिल्कुल। देखिए, जीवन है तो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सकारात्मक होके चलें तो आसानी से सारी समस्याओं का निराकरण
0: कर
1: थोड़े से
0: सकते
1: समय
0: हैं
1: जरूर लगता है पर हो जाता है।
0: जी, तो इन सिचुएशन से आप कैसे निकलते हैं, हमें ये जानना है।
1: परेशानी तो आती है, सबके जीवन में आती है, पर सकारात्मक एटीट्यूड रखें तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो चीजें हल होती रहती हैं।
0: ये तो हो गई कि अपने आप को हमें पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक सोच
1: जी
0: रखनी है, तो जीवन की
1: बिल्कुल
0: समस्याएं अपने आप
1: बिल्कुल,
0: समाधान
1: जीवन
0: हो
1: का
0: जाएगा
1: मूल
0: उनका।
1: उद्देश्य वही है, और संसार है तो संसार में सुख दुख की लहरें उठती रहती हैं,
0: जी, तो कोई
1: ये
0: सुख वाली लहर की
1: थोड़ा सा।
0: बात आप बताएं, कभी किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो, हंसी हो, फनी सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी दोस्त
1: हाँ
0: के
1: हाँ
0: साथ हैं, तो उससे आप
1: बिल्कुल
0: कैसे निपटेंगे? कई बार देखिए
1: बिल्कुल,
0: होता है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं,
1: हाँ हाँ
0: दोस्तों
1: हाँ
0: के बीच अपनी तरह की बात होती है, लेकिन अगर कोई
1: बिल्कुल,
0: बड़ा बुजुर्ग आ जाता है तो हमें सिचुएशन संभालनी पड़ती है उस हिसाब से
1: हाँ
0: तुरंत, तो वो अगर आई है तो आपने कैसे मैनेज किया, क्या किया?
1: हाँ बिल्कुल। अनेकों बार, एक दो बार ऐसी स्थितियां आई हैं, मगर फिर भी हम अगर सावधान रहे थोड़ा सा। क्या है, जबलपुर ट्रेन से जा रहा था तो जल्दी जल्दी में टिकट लेना ले नहीं पाया और ट्रेन आ गई तो मैं ट्रेन में चढ़ गया,
0: जी,
1: फिर टीटी आया, तो
0: आप उनसे
1: उसको मैंने
0: छुपे
1: सिचुएशन
0: या
1: बताई कि
0: सामने
1: भाई
0: आए?
1: इस तरह से मैं थोड़ा शीघ्रता में चढ़ गया, ट्रेन आ गई, जो भी आपका चार्ज वगैरह है वो ले लीजिए। निरंतर ऐसी सिचुएशन आती हैं, उससे भी मैं उभरा हूँ और
0: मतलब आप
1: आगे
0: उस
1: भी।
0: सिचुएशन से भागे नहीं, आपने उसका सामना किया।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कई बार होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, वहां से छुपते हैं
1: हाँ, नहीं छुपने का काम नहीं है
0: जी।
1: जी, वो क्या है ना, स्वास्थ्य

0: कर्मों के अनुसार आप अगर विदाउट जा रहे हो तो ईमानदारी से आप अपना जो भी चार्ज है वो दे दो।
1: बहुत बढ़िया।
0: और आगे के लिए सतर्क रहिए।
1: जी जी, लेकिन हो जाता है कई बार जाना हमारा जरूरी है और हम नहीं पहुंच पाए समय पर, तो उसका उपाय ये है कि सामना करते हुए सामना करके निपटे, भागे नहीं।
0: बिल्कुल
1: राजेश जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम 40 गांव जिला जलगांव महाराष्ट्र से बोल रहे हैं।
0: आपका नाम?
1: पांडुरंग सूर्यवंशी।
0: सूर्यवंशी जी, कैसे हैं आप?
1: हम मजे में है मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमारा आज का विषय है कैसे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कैसे आते हैं। कई सिचुएशन आती हैं ऐसी जिसमें हम कई बार फंसे रहते हैं या हमें तालमेल बिठाना होता है। आपके जीवन में क्या ऐसी सिचुएशन आई है?
1: ठीक है, एक बार आई थी हम कैसी,
0: तो उनसे आप कैसे निकले बताइए।
1: हम वैक्सीन लेके जा रहे थे खेड़े पर,
0: जी
1: तो हमें ऐसा हादसा होने का मौका था। ट्रक से हमारे व्हीकल की टक्कर हो गई थी मैडम।
0: ओहो, फिर आप
1: तो
0: कैसे निकले बाहर उस सिचुएशन
1: वहाँ
0: से
1: निकले हम और हमारे ड्यूटी पर जॉइंट हो गए और बच्चों को वैक्सीन लगाते ना हम
0: जी
1: दोस्त, तो काम हमने पूरा किया। वो जिंदगी में पूरी याद रहा ऐसा किस्सा था वो।
0: आपको कोई ठोकर तो नहीं लगी, नुकसान तो नहीं हुआ आपको?
1: नहीं नहीं थोड़ा घसीटा था, लेकिन वो आयोडीन लगन से ठीक आया था।
0: अच्छा, तो वैक्सीन सही सलामत बच गई?
1: हाँ, वैक्सीन बच गई और हम भी बच गए, भगवान की कृपा थी
0: जी।
1: अभी आज के प्रोग्राम में हमको एक हिंदी फिल्म का गाना सुनना है।
0: आज हम गीत आपकी पसंद का नहीं सुना पाएंगे सूर्यवंशी जी, क्योंकि आज कार्यक्रम में गीत हमारी पसंद का होगा। आपसे बात हम विषय पे करते हैं और गीत हम अपनी पसंद का सुनाते हैं।
1: हाँ ठीक है, धन्यवाद
0: जी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: ठीक है मैडम।

0: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: क्या क्या विषय रखा है मैडम?
0: जी, आज का विषय है कि आपके जीवन में अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें आप फंस जाते हैं तो उससे कैसे निकलते हैं आप, कैसे?
1: अरे मैडम, हमारे जीवन में तो परिस्थिति बहुत आती है, तो क्या इसका सामना करना पड़ता है, क्या करें?

0: नहीं, सामना
1: समय के
0: तो
1: अनुसार।
0: सुनिए ना, सामना तो करना पड़ता है, पर आज का हमारा विषय ये है कि उन परिस्थितियों से आप कैसे निकलते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। अगर इससे जुड़ा कोई किस्सा है तो वो आप हमें बताएं।

0: बात कर रहा हूँ, बात मत करिए।
1: हाँ हाँ मैडम, वो मैंने उनको बोल दिया तो मान गए, बात भी मान गए थे।
0: देखिए हो गया ना, यहीं पे आप
1: हाँ।
0: मेरे पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया कि आपके आसपास शोर हो रहा था, आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, उनको बोल दिया, बच्चे मान गए आपकी बात,
1: हाँ मैडम,
0: है ना। ऐसे ही बहुत सारे कैसे आते रहते हैं। अब देखिए आप हैं, आपका दिन जो बीत रहा है उसमें आप बहुत कुछ करते हैं, कई बार आपके मन का होता है, कई बार मन का नहीं होता है, तो जब
1: हाँ
0: नहीं
1: मैडम,
0: होता है तो उस परिस्थिति को आप कैसे, उससे कैसे बाहर निकलते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, यही तो है।
1: मैडम क्या है हमारी स्थिति है तो क्या है, वो तो निकालनी पड़ेगी, क्या करें, आंखों से क्या है हमको दिखता नहीं है तो क्या करें मैडम, स्थिति में बहुत मजबूर है हम तो, क्या करें।
0: मजबूर नहीं कहेंगे, देखिए
1: हाँ
0: जब बहुत कुछ करने का आप ठान लेंगे ना तो आपकी ये कमी भी आपको कमी नहीं लगेगी, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। इसलिए ऐसे निराश होके ना रहें, लेकिन जीवन मिला है तो उसको जीना तो है। आपने अभी जो हमारा विषय था उस पे बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे से तुरंत ही उस चीज़ को हैंडल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।
0: जी। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से बात हो रही है हमारी, अपना परिचय दीजिए।
1: अच्छा, मैं बबीता खरे दमोह
0: बबीत
1: से बोल रही हूँ। हाँ,
0: अच्छा,
1: बबीता खरे जी।
0: बबीता खरे दमोह से। बबीता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम तो पहले थे, करते थे काम, अब तो रिटायर हो चुके हैं।
0: क्या काम
1: स्कूल में,
0: करती
1: हाँ,
0: थी?
1: स्कूल हेड
0: अच्छा,
1: थे।
0: प्रिंसिपल थी
1: हाँ
0: आप स्कूल की?
1: देखा जी, हाँ प्रिंसिपल थे वहाँ पर, तो
0: अच्छा
1: ना सब देखने सुनना रहता था हमारा स्कूल में।
0: अच्छा बबीता जी, आज है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे,
1: अच्छा अच्छा
0: जिसमें हमारा विषय ये है कि आप अपने जीवन में जो कैसे आते हैं उनको कैसे सुलझाते हैं। अब जैसे आप स्कूल में हेड थी,
1: जी हाँ
0: है ना, प्रिंसिपल थी, तो आपने कैसे अपना मैनेज किया स्कूल और घर? बहुत सी चीज़ें मैनेज करना होती हैं। स्कूल
1: हाँ
0: है, स्कूल में सारी टीचर्स को देखना, चूंकि आप हेड हैं वहाँ की, तो
1: हाँ
0: वो आप कैसे मैनेज करती थी? और कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती आई है क्या जिसमें आप
1: हाँ
0: फंस गई हो और उससे आपको निकलना, वो आपने कैसे किया? ये है हमारा सवाल, विषय।
1: अच्छा
0: बबीता जी, जब आप स्कूल में थी, स्कूल जाना होता था, तो संडे पड़ता है, संडे तो छुट्टी का दिन, पूरा दिन आपका घर पे बीता, सुकून से बीता। दूसरे दिन अब ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की आपको चिंता, तो उस चिंता से आपने खुद को कैसे निकाला? लगता तो होगा ना कि
1: हाँ
0: अब सुबह से, रात से ही टेंशन हो गई होगी कि कल स्कूल है, कल की तैयारी करना है,
1: हाँ
0: तो
1: वैसे
0: उस
1: ये, हाँ ये रहता था कि भाई सुबह जल्दी उठना ना
0: तो उसे
1: समय, हाँ
0: उससे कैसे निकाला आपने अपने आप को? क्योंकि वो
1: हाँ
0: टेंशन से तो दूर हटना है ना, खुशी हमको
1: हाँ
0: चाहिए, तो फिर क्या करती थी आप?
1: अब ये तो सुबह समय से उठना पहले है ना, परिवार का भी सहयोग रहता था, मिस्टर का भी सहयोग रहता था।
0: तो मन को परिवर्तित करने के लिए कुछ करती थी आप?
1: हाँ थोड़ा ऐसा मन को परिवर्तन करने के लिए हमारा ये रहता था कि थोड़ा कभी म्यूजिक सुन लिया। वैसे रेडियो सुनना हमारा बचपन से ही शौक है। हाँ
0: अच्छा
1: आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते ही रहते थे
0: अच्छा तो मतलब उस टेंशन को दूर
1: जी।
0: भगाने का आपने तरीका निकाला संगीत, थोड़ा सा ध्यान वहाँ भटकाया तो आपकी
1: हाँ
0: टेंशन खत्म।
1: हाँ ये हो
0: जी,
1: जाता
0: बहुत बढ़िया। तो बबीता जी, आप ऐसे ही संगीत का आनंद लेती रहिए, रेडियो से जुड़ी रहिए। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: है। आपका
0: नमस्ते।
1: भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति आकांक्षा श्रीवास्तव की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज मुंबई में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों की पहली रोड शो और निवेशक बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे और निवेश अनुकूल वातावरण की जानकारी देंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 का कैलेंडर और कार्य योजना पेश करते हुए सितंबर के पहले 10 दिनों में चुनाव कराने का लिखित आश्वासन दिया है। अरुणाचल प्रदेश की ग्लोझील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रदेश के ऊपर इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन

0: लेशन और एक मानसून टर्फ सक्रिय है, लेकिन इसका प्रभाव कमजोर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देशवासियों को गौरवान्वित किया है। खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण के साथ कुल 39 पदक जीते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इसमें हम श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद शामिल कर रहे हैं। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं पिपरिया रोड न्यूटन चिखली वार्ड नंबर 1 तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हरिराम साहू, श्रीमती गोल्डी साहू, गगन साहू, रोशनी साहू, चंद्रप्रकाश साहू, मास्टर प्रियांशु साहू, सलीम अंसारी, भवानी साहू और पप्पू साहू की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। कुंवारा बाप फिल्म का यह गीत है, किशोर कुमार महमूद और साथियों ने गाया है। मजरू के बोल हैं राजेश रोशन की तर्ज।

अगला गीत फिल्म झबक से है। लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है, प्रेम धवन ने गीत लिखा और चित्रगुप्त का संगीत है। सुनना पसंद किया है रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शुभ नायक और समस्त डागला परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली और जुनैद अब्बासी की पसंद है। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली की।

कार्यक्रम में अगला गीत अमर प्रेम फिल्म का किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। सुनना पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय की। दुबिहा नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने।

श्रोताओं, नए श्रोता यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम पता बता दें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन कोड है 462002। पता एक बार फिर दोहरा देते हैं जो हमारे नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं उनके लिए पता बता रहे हैं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड है 462002। और अब कार्यक्रम में अगला गीत आपकी कसम फिल्म का है, किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का। सुनना पसंद किया है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर और सुमन ठाकुर की, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल की पसंद है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की पसंद है।

किशोर कुमार के गाए फिल्म आपकी कसम के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 20वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 20वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि को चारुमित्रा उज्जैनी वापस लेकर आती हैं। महामात्य ने उनकी बहन मैनावती को उज्जैनी बुलवाया है। मैनावती बंग देश की राजमाता हैं। महामात्य राजा भर्तृहरि की चिंता को मैनावती द्वारा सुलझाना चाहते हैं। अब आगे

0: राजा भर्तहरि की बहन मैनावती तब से ही आकुल थी जब से उन्हें महामात्य का कूट संदेश मिला था कि महाराज अनुपस्थित हैं, कुमार विक्रम की अनुशासन विहीन गतिविधियां हो रही हैं, सामंत और राजकर्मी उच्छृंखल हो रहे हैं, प्रजा के व्यामोह और अराजक अव्यवस्था ने मैनावती को विचलित कर दिया। वर्षों बाद वो अपने मातृगृह लौट रही हैं। इन्हीं दिनों अवंती का प्रख्यात बसंत उत्सव का आयोजन भी होता है। इतने वर्षों के बाद कनकश्रृंगा लौटी मैनावती के मन में इस उत्सव के लिए स्वाभाविक उत्सुकता है।
1: उज्जैनी पहुंचे मुझे एक अठवारा बीतने को है, किंतु इस बीच भाई से मेरी भेंट केवल दो बार हुई है। एक बार आगमन के अवसर पर हुई शिष्टाचार भेंट, और दूसरी बार तब जब वह मेरी व्यवस्था देखने स्वयं पधारे थे। महामात्य अवश्य समय निकालकर मेरे पास आ बैठते हैं, उन्हीं ने मुझे बताया था।
2: महाराज और महारानी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उनके संबंध सामान्य नहीं है। राजा राजकार्य में रुचि नहीं लेते, महाकाल की कृपा से ही व्यवस्था अभी बनी हुई है और चल रही है।
0: ये सब क्यों हो रहा है ये जानने के लिए रानी मैनावती ने महाराज तथा महारानी से बारी बारी भेंट करके इन स्थितियों का रहस्य सूत्र पकड़ने का निश्चय किया। वो राजभवन के अंतःपुरिक भाग की ओर निकल पड़ी।
3: आपके आगमन से राजनिलय पवित्र हुआ भगवती, महाराज और महारानी अपने अपने कक्ष में हैं। कहाँ सूचना दूं?
1: तुम वैसी का हो ना?
3: जी।
1: बहुत कुछ सुना है तुम्हारे विषय में। सबसे पहले मैं अपने भ्रातृय से भेंट करूंगी, जो निश्चय ही अपनी माता के कक्ष में होगा।
3: राजकुमार तो इस समय उपमाता चंपा देवी के कक्ष में होंगे, महादेवी स्नान गृह में हैं। यदि आपके आगमन की पूर्व सूचना होती तो वो यहाँ स्वागत के लिए प्रस्तुत रहती। आप महादेवी की ओर ही पधारें, वहीं राजकुमार भी भगवती का वात्सल्य पाने आ जाएंगे।
1: महादेवी अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या उन्हें मदनोत्सव में नहीं जाना? क्या बात है?
3: कुछ समय से महादेवी अस्वस्थ अनुभव कर रही हैं। देवी सांध्यकाल वे शंखवात से पीड़ित रहीं। शिरशूल की औषध लेप करते हुए मैंने अनुभव किया कि उनका मस्तक बहुत तप रहा था।
1: वैसी के तुम चतुर हो, हम्म? तुम ये भूल जाती हो कि मैं भी अपने राज्य की महारानी रही हूँ, अब राजमाता हूँ। अंतःपुर के रोगों से मेरी पहचान पुरानी है। यूं महारानी के स्वास्थ्य के प्रति असावधान नहीं रहना चाहिए। तुरंत राज्य वैद्य को बुलाओ, महाराज को उसकी सूचना है।
3: क्षमा करें भगवती, इसके लिए मैं ही दोषी हूँ, मुझसे भूल हुई, महादेवी ने भी कोई आज्ञा नहीं दी थी।
1: मैं बाह्य कक्ष में हूँ, मुझे एकाएक महादेवी के सामने नहीं पहुँचना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? उन्हें सूचना दो और राजकुमार को यहीं ले आओ।
0: चंपा राजकुमार को लेकर प्रवेश करती है।
4: भगवती को दासी चंपा प्रणाम करती है।
1: यश मिले, प्रसन्नता मिली।
4: जी।
1: लाओ राजकुमार को मुझे दे दो। देखो तो कितना सुंदर है मेरा भ्रातृ। अले ले ले। मुख छवि पूर्णतः पिता की है। भैया भी बचपन में ऐसे ही दिखते थे। चंपा तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ।
4: जी।
1: कागल भैया प्यारा। चंपा
4: जी,
1: सुना है तुम्हारी स्वामिनी अस्वस्थ है?
4: हाँ भगवती।
1: कब से?
4: कदाचित दो या तीन दिवस हुए।
1: दो तीन दिवस? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कई बरस बीत गए हों।
4: भगवती,
1: तुम्हारी स्वामिनी की अस्वस्थता का कारण क्या है? नहीं वैसिका, तुम भी यहीं रहो, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा।
4: जी।
1: तुम दोनों ही इस अंतःपुर की शुभचेता और संरक्षक हो। अंतःपुर के रोग प्रायः राज्य के लिए गंभीर हो जाते हैं। तुम महारानी के रोग के विषय में निश्चय ही जानती हो, और स्यात उसका कारण भी।
4: नहीं भगवती।
1: महाराज रात्रि कहाँ बिताते हैं?
4: निज कक्ष में।
1: केवल महाराज अकेले?
4: प्राय मुझे स्मरण कर लेते हैं।
1: अन्य कोई गुणवती अथवा गणिका?
4: नहीं भगवती, लौटे हैं जब से तब से कदापि नहीं। हाँ, निंद्रा में स्वप्न के बीच अस्फुट स्वर में तीन नाम सुनाई दिए हैं, शची, चारुमित्रा और महादेवी पिंगला।
1: चारुमित्रा, चारुमित्रा तो वही जनपद कल्याणी होगी, किंतु ये शची कौन है? ज्ञात है तुम्हें?
3: चंपा देवी नहीं जानती, किंतु मैं जानती हूँ देवी। गत प्रवास के प्रारंभ में महाराज कुछ समय सीमावर्ती ग्राम पैठार में रहे थे। शची वहीं के ग्रामीण की युवा पुत्री है।
1: उत्सव का आमंत्रण उसे भेजा गया है? सुना है चारुमित्रा को तो भेजा गया है,
3: किंतु चारुमित्रा से आप सम्मिलित नहीं हो रही। मैंने भी सुना है कि चारुमित्रा इन दिनों श्रेष्ठी नागदत्त के सेवाश्रम में हैं और किसी अभ्यास में संलग्न हैं। उनके न आने का यही कारण बताया गया है। शची को बुलाने के लिए महामाते ने राजकीय शिविका पैठार भेजी थी, वो वापस आ गई।
1: क्यों?
3: वहां कहा गया कि हमारे यहाँ बेटी की विदा पाहुने के साथ होती है, सैनिकों शिविका के साथ नहीं।
0: तभी देवी मैनावती को अवंती आते हुए पैठार पर रुकने के दृश्य स्मृति पटल पर चित्रित होने लगते हैं।
1: ओह, समझ में आया। मैंने उस ग्राम बाला को देखा है वैसिका, यहां आते हुए

0: हमारा पड़ाव प्रेतपुर के निकटवर्ती पठार ग्राम में हुआ था। अर्निश, ये ग्राम युवती मेरी सेवा में रही थी, ग्रामीणी की पुत्री, किंतु उसने या उसके पिता ने किंचित भी संकेत ये नहीं दिया कि भैया से उनका कोई संबंध है। वैसिका
1: जी,
0: इस जानकारी से मैं आश्वस्त हुई।
1: भगवती की आश्वस्ति हमारी प्रसन्नता का विषय है।
0: मैं राजोचित कूट औपचारिकता से ये नहीं कह रही, ये मेरा विश्वास है कि पठार जैसे निष्पेक्ष स्वाभिमानी ही किसी राज्य का संबल बनता है।
2: तभी दूर से दासी सूचना देती है कि राज महिषी पधार रही है।
3: क्षमा चाहते हैं नंदाश्री, हमें आने में विलंब हुआ, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रणाम स्वीकार करें।
0: सौभाग्य, संतति और समृद्धि से झोली भरी रहे। बैठो।
3: जी।
0: चंपा, तुम कुछ देर कुमार को संभालो। और वैसिका, तुमने तो प्राशन पान के लिए भी नहीं पूछा।
1: क्षमा भगवती, अभी प्रस्तुत करती हूँ।
0: मुझसे कुछ छुपाना नहीं पिंगला।
3: जी।
0: मैं तुम्हें असमंजस में नहीं डालना चाहती। महामात्य ने इसी कार्य के लिए मुझे संदेशा देकर बुलवाया है। वैसे भार्या और भ्रता के बीच अनेक बातें और प्रसंग गोपनीय होती हैं, और जिसका पति नरेश हो तो उसकी पीड़ाएं और अधिक गोपनीय होती हैं। किंतु यदि कोई व्रण विगलन उत्पन्न करने लगे तो उसे खोलना ही पड़ता है। भैया तुम्हारी सेज पर कितने समय से नहीं आए।
2: इस प्रश्न पर रानी पिंगला फूट फूट कर रोने लगती है।
3: नंदाश्री,
0: मेरे लिए यह जानना आवश्यक है पिंगला, तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए, इस कुल और राज्य के भविष्य के लिए, इसे छुपाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज परिवारों को कदाचित मैं तुमसे कहीं अधिक जानती हूं।
3: नंदाश्री, 2 वर्ष से अधिक का समय हुआ।
0: फिर ये कुमार
3: हमारा पुत्र है।
0: निश्चय ही तुम्हारा पुत्र है, राजा के अंश से उत्पन्न है, उसकी शिराओं में मेरे पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, तुम उसकी मां हो। यद्यपि उसे जन्म देने वाली कोख इस रहस्य को और कौन कौन जानता है।
3: हम, चंपा, महामात्य और वैसिका।
0: अब मैनावती भी जान गई। पुत्र पर भैया का स्नेह तो है।
3: राजभवन में संभवतः एक यही उनका स्नेह भाजन है।
0: तो राजा का पिंगला के प्रति संदेह का कारण क्या है।
3: नंदाश्री, संतान की कामना में हमने गढ़ कालिका का अनुष्ठान प्रारंभ किया था। प्रतिदिन काली के मंदिर में अनुष्ठान के लिए हमें जाना पड़ता था। तभी सुरक्षा टुकड़ी का एक नायक हमारा बहुत ध्यान रखता था। वो युवा सुदर्शन, बलिष्ठ और प्रसन्न वदन था। स्यात, मन ही मन उसकी सहानुभूति भी हमारे

0: कोख का बंधन है ये।
1: भगवती, उपहार प्रस्तुत है।
2: सभा का समय भी हो रहा है, नरेश पहुंचेंगे वहां, हमें भी वहां चलना चाहिए।

अवंतिपति भगवान महाकाल आप सभी का कल्याण करें। राजा तो वही हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। मदनोत्सव के इस अवसर पर मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि काम और वासना यूं तो एक ही प्रतीत होते हैं, किंतु उनके बीच मर्यादा की एक सूक्ष्म रेखा भी है जिसे भुलाना नहीं चाहिए। कामदेव का संयोग केवल रति से होता है, भले ही स्वर्ग में अनेक अप्सराएं हों। नदी उमग कर अम्बुद की ओर भागती है, लता विटप का आश्रय लेती है, पशु और पक्षी अपनी अपनी प्रजातियों में युग्म बनाते हैं। सर्वत्र मर्यादाएं हैं, किंतु मनुष्य प्रकृति का अतिक्रमण करके अपने ही नियम बनाता है और उन्हें तोड़ भी देता है। आज का ये उत्सव प्रारंभ हो।

0: पिंगला, तुमने राजा के मुंह से मर्यादा का आख्यान सुना?
1: सुना नंदाश्री। कहते कहते हमारी ओर ही देख रहे थे।
0: उत्सव की उद्दाम इंद्रिकता को देखो। मनोरंजन के लिए आयोजित नर नारियों का ये मेला नागरिकों में रोग बनकर बैठ गया है। दमित वासनाओं को उजागर करने का एक माध्यम। हे गुरु जालंधर नाथ, परम शिव महानाथ के नगर में काम का कैसा प्रसार है ये। जिसे देखो वही डूबा हुआ है। सब अधीर, सब चंचल। सुन रही हो पिंगला?
1: जी नंदाश्री, हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं।
0: पिंगला, मैंने अपने पति को नरक के रास्ते पर जाते हुए देखा है। पुत्र को उसी मार्ग पर चलते हुए नहीं देखना चाहती। काम कांतार में भटकने से बचाने के लिए ही मैंने उसे विवाह की मर्यादा में बांध दिया है। इस समय मैं उसके पास नहीं, अभी कुछ और समय बीतना है। प्रभु, गोपी को अपनी शरण, अपना संरक्षण प्रदान किए रहे।
2: भद्रजनों, अब आपके रंजन के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं यह प्रहसन।
3: अब हमें क्या करना होगा आर्य?
4: वही जिसे करने के लिए हमने जन्म लिया है। आर्य, इस महोत्सव में तुम किसे अनुग्रहित करोगी?
3: मूर्खा सरित्र, जानती ही हो तुम कि मूर्खता के लिए तुम मेरी प्रिय हो। नीतिकार कह गए हैं कि राजाओं और रानियों के निकटवर्ती मुंह लगे चाटुकार सेवक ही मूर्ख होना चाहिए।
4: आर्य, आपके

0: इस कथन पर सभा मौन है, ना समर्थन और ना विरोध।
1: सब सत ब्रह्मज्ञानी है मूर्खे, वे जानते हैं कि वे चुप नहीं है, और कोई है जो चुप है, वो नहीं करते, कोई और करता है और लेता है, अर्थात मौन के माध्यम से ही वह मुझसे सहमत हैं।
0: तो फिर अनुग्रह कर डालिए, सभा में इतने सारे पुरुष तो हैं आर्ये।
1: हाय, किंतु मुझे अपने योग्य इनमें से कोई नहीं दिखता।
0: कैसा पुरुष चाहती हैं आप? कवि चलेगा?
1: हाय हाय, चलती चिता में कूद जाऊंगी, पर कवि की भार्या नहीं बनूंगी।
0: क्यों?
1: सुहागराज श्रृंगार रस के छंद गाते गाते बिता देता है।
0: तो फिर राजा अथवा राजकुमार की खोज की जाए।
1: नहीं, राजा राज्यकार में ही जुटा रहता है और राजकुमार को आखिर से ही अवकाश नहीं मिलता, ऊपर से राजा संदेही होता है। कहो मधुवन में भ्रमर को मंडराते देख ले और चरित्र पर संदेह कर बैठे।
0: फिर तो केवल दास ही बचता है।
1: दास क्रय करने के लिए धन कहाँ है मेरे पास? तेरी उधर पूर्ति ही मुझे चिंता में डालती है।
0: तो फिर तुम्हारी कामना क्या है?
1: सत्य कहूँ?
0: आपके सच और झूठ में कोई अंतर है क्या?
1: मैं तो किसी श्रेष्ठी को अनुग्रहित करूंगी।
0: श्रेष्ठी? कोई कारण?
1: इसलिए कि वो धन के लिए जीता है और धन के लिए ही मरता है।
0: धन से दाम्पत्य सुख मिलेगा क्या?
1: मूर्खा, सुख तो कैसे भी क्रय किया जा सकता है, धन से रूप बल सभी मिल जाता है। धन अर्जित करने श्रेष्ठी अपना सार्थवा लेकर परदेश चला जाता है महीनों महीनों के लिए, तब स्त्री स्वतंत्र और स्वच्छंद हो जाती है।
0: तो दूर की सोच रही हो आर्ये, कनक श्रृंगा में कोई इस योग्य है?
1: यही तो दुविधा है सखी, इस नगरी में ऐसा एक नहीं अनेक हैं।
0: तो चुन लो ना किसी एक को।
1: हाय, हम स्त्रियों को कैसे कुदिन आ गए हैं, मुझ जैसी रूपवती का अनुग्रह भी किसी को स्वीकार नहीं है।
0: कितना दुखद है ये, अब क्या करोगी, अब क्या करोगी?
1: हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी।
2: दूसरी सुंदरी बना गण कुछ क्षण उसे विस्मित टुकुर टुकुर सा देखता रहा, फिर वह भी दोनों हाथ से अपना घांगरा पिंडलियों तक उठाए भागता हुआ पहले के साथ हो लिया।
3: महानुभाव गण, एक आवश्यक सूचना सुने। किसी आवश्यक कार्य के कारण महाराज अधिक समय तक कुल सभा की शोभा नहीं बढ़ा पाएंगे, अतः अब केवल एक और प्रदर्शन होगा, यह है इंद्रजाल। महानुभाव, ये कलाकार महीनों की यात्रा करके महाकाल की पुण्य सलीला इस नगरी उज्जैनी में पहुंचा है। रसज्ञ दर्शकों के सम्मुख अपनी कला की प्रस्तुति के लिए देखें और आनंद लें।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 20वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार अरुण गीते, मैनावती दिव्या पवार, महामात्य अरशद इकबाल, वैसिका प्रमिला दिवाकर, चंपा अनुराधा, पिंगला कंचन राजानी, उद्घोषक राकेश जैमिनी, स्त्रीवेशी पुरुष

0: अमित रिछारिया और पुरुष अजय सिंह पाल।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 20वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन कवरेज के लिए मासिक बेसिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों की पहली रोड शो एवं निवेशक बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे और निवेश अनुकूल वातावरण की जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में दोपहिया सड़क एम्बुलेंस शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रदेश में 9 अगस्त रविवार को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भोपाल में नागरिकों और युवाओं के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 मानसून ट्रफ सक्रिय है, लेकिन इसका प्रभाव कमजोर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देशवासियों को गौरवान्वित किया है। खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीतकर भारत का परचम लहराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सो क्यों प्यार, विश्वास और रिश्तों की खूबसूरत डोर से बंधा महिला सभा का आज का अंक, और इस अंक के साथ हाजिर हूँ मैं, यानी आपकी अपनी रेडियो सखी आराधना। आप सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुमसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुमसे फूलों का नहीं खुशबू का रिश्ता है मेरा। वाकई सखियों, रिश्ता एक खूबसूरत शब्द, एक खूबसूरत एहसास जो हर माँ का अपने बच्चे से होता है, और ये रिश्ता माँ का बच्चे से तब और अधिक बढ़ जाता है जब माँ उसे अपना दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है। सखियों, माँ का पहला दूध जो कि देखने में हल्के पीले रंग का और गाढ़ा होता है, वास्तव में ये शिशु के लिए अमृत के समान होता है। इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसे व्यर्थ बिल्कुल भी ना जाने दे सकियों, क्योंकि यह कुदरत की तरफ से बच्चे को पहला टीका होता है जो कि उसे कई अनचाही बीमारियों से बचाता है। इसी तरह सखियों, पहले 6 माह तक बच्चे को पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना यानी बच्चे के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। इसलिए जन्म के समय बच्चे को माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ आहार है और वही देना चाहिए। सखियों, स्तनपान से संबंधित ये सभी बातें हम कार्यक्रम के शुरुआत में आप सभी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। सखियों, दुनिया भर में इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि शिशु के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अनचाही बीमारियों से माँ और बच्चे की रक्षा करना। तो सखियों, हमें उम्मीद है कि स्तनपान कराने के लिए आप सभी समाज में माताओं को जागरूक अवश्य करेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है, है ना सखियों? और आज की अपनी इस बात के साथ सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

और इस प्यारे से गीत के बाद अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं सरकारी योजना की। सखियों, केंद्र सरकार ने देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए हैं, योजनाएं बनाई हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हर सक्षम और सशक्त प्रयास किए हैं ताकि देश के हर क्षेत्र का न सिर्फ विकास हो सके बल्कि हर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। सखियों, ऐसी ही योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की गाँव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना, जो कि राज्य की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। सखियों, इन योजनाओं के तहत पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाती है और इन योजनाओं के पात्रता की यदि बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को 12वीं में कम से कम 60% अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में बीपीएल धारी परिवार की मेधावी छात्राओं को जिन्होंने 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए हों वही इन योजनाओं की हितग्राही छात्राएँ होंगी। और अब बात करते हैं आवेदन की। सखियों, गाँव की बेटी योजना के लिए एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से और प्रतिभा किरण योजना के लिए एमपी हायर एजुकेशन पोर्टल पर समग्र आईडी और बीपीएल प्रमाण पत्र के साथ आप इन योजनाओं में आवेदन कर सकती हैं और अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। तो सखियों, जुड़िए और जोड़िए लाभार्थियों को सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से। और सखियों, सरकारी योजना से परिचय कराने के बाद अब मिलते हैं ऊंची उड़ान भरने वाली आपकी ही अपने बीच की सखी से। क्रम मेरी उड़ान में आज की हमारी सखी है।

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियो, आज हम अपने इस कार्यक्रम में उस कलाकार से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिनके न केवल घर के अंदर का हर कोना बहुत ही खूबसूरती से रंग बिरंगे रंगों से सजा है, बल्कि घर के बाहर की भी खूबसूरती कला के माध्यम से सजी सवरी है। सखियो, जी हाँ सखियो, हम बात कर रहे हैं कलाकार के हुनर की, जिनके हाथों का स्पर्श मिलते ही ना सखियो चीजों में जान आ जाती है। तो सखियो, आज की हमारी ऐसी ही हुनरमंद कलाकार है सोनाली जी। सबसे पहले सोनाली जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आराधना।
2: तो सोनाली जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे ही आपका खूबसूरत सा परिचय, आपकी ही तरह।
3: मैं हूँ सोनाली जैन और मैं लिप्पन आर्ट और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल से अब खूबसूरत चीजें बनाती हूँ और उनका बिजनेस भी करती हूँ और इस तरह से अपने घर को भी सजाती सवारती हूँ।
2: वो तो दिख ही रहा है। तो सोनाली जी,

0: आपने ये जो सफर शुरू किया है वो कहाँ से शुरू किया?
1: इसका मुझे, वैसे तो मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, क्योंकि हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, मम्मी दादी ये लोग घर में कभी भी फ्री नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ दोपहर के वक्त करती रहती थी। तो साथ में चूंकि हम बेटियां थी तो हमें भी अपने साथ रखती थी, तो उनके साथ रह रहकर ही ये सब कला जागृत हो गई और उससे हमने धीरे धीरे बनाना सीखा। वो मोटिवेशन मिलता गया घर से ही,
0: बिल्कुल,
1: तो वो अपने आप इमेजिन पावर बढ़ता गया, तो वो ये सब अपने आप सीख लिया देख देख कर।
0: क्या बात है। तो सोनाली जी, ये बताइए कि कोई भी काम आप चीज़ें देखती हैं, मान लीजिए वो वेस्ट मटेरियल है, तो उससे आप क्या आपके दिमाग में आता है?
1: जैसे मैंने बचपन से देखती गई, तो मुझे कहीं ना कहीं कोई भी वेस्ट चीज़ दिखती है तो मुझे अपने आप उसमें कुछ न कुछ आकृति या कुछ न कुछ दिखने लग जाता है कि इसको मैं कैसे उसको अच्छा बनाऊँ,
0: नया
1: उसको
0: आकार
1: नया
0: दें।
1: बनाऊँ, कुछ नया रूप दूँ ताकि वो सुंदर दिखे, जिसको आप ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर इस तरीके से मैं उसको अपनी कला से, अपने इमेजिनेशन पावर से उसको एक नई आकृति गढ़ने की कोशिश कर।
0: जैसे कि आपने बताया कि आप लिप्पन आर्ट वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह भी करते हैं, तो जो एक पेंटिंग आप बनाते हैं उसमें कितना समय लगता है?
1: ये आप उस पेंटिंग की मतलब बड़ी साइज या उस पर निर्भर रहता है, या आप कितना टाइम देते हैं। वैसे तो 1 या 2 दिन में बन जाती है, कोई कोई जिनको 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं। वो आपकी उस बारीकी, उसकी कार्विंग
0: काम
1: और उस
0: करने
1: पर
0: की
1: काम करने
0: क्षमता
1: की
0: पर,
1: क्षमता, उस
0: जी
1: पर निर्भर है कि आप उस
0: बिल्कुल।
1: पर कितना टाइम दे रहे हैं। तो वो उस हिसाब से वो मतलब कम से कम 1-2 दिन तो लगते ही हैं। इस प्रकार
0: बिल्कुल।
1: से बनाती हूँ मैं।
0: तो ये सभी सामान जो आप मान लीजिए इसमें यूज़ करती हैं, जो भी कलर वगैरह या बोर्ड वगैरह, वो सारे सामान आपको यहीं मिल जाते हैं, अवेलेबल
1: हाँ
0: जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं?
1: आसानी से मिल जाता है। फिर आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत हो गए हैं, तो उसको ऑनलाइन भी हम मंगवा लेते हैं। और फिर बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं इंदौर में, तो जहाँ पर ये सब आसानी से मिल
0: मिल
1: जाता है
0: जाता
1: सामान
0: है।
1: और हो जाता है मैनेज।
0: अच्छा, जब आप कोई नई चीज़ बनाती हैं तो आपको तारीफ भी मिलती होगी,
1: हाँ जी
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उस टाइम आपको कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है। तारीफ तो ऐसा है कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती
0: बिल्कुल।
1: है ना,
0: अब
1: इसलिए तारीफ तो मिलना मिलती है तो और
0: वो
1: मोटिवेशन
0: ज़रूरी भी
1: मिलता है,
0: है,
1: बहुत ज़रूरी है। तो
0: बिल्कुल।
1: उससे आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, तो और अच्छा होने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उससे फिर और मतलब प्रेरणा मिलती है, तो और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए लगता है कि हाँ ये जो अपन कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं।
0: मैंने कुछ किया
1: हाँ किया है,
0: है
1: मतलब
0: ना?
1: अपने आप से एक सेटिस्फेक्शन भी बहुत बड़ा होता है
0: बिल्कुल
1: जो, और सेटिस्फेक्शन है तो सब कुछ है।
0: बिल्कुल। अच्छा, आप जो ये बना रही हैं, कर रही हैं, तो उसमें क्या आप दूसरों को भी सिखा रही हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, अभी मैंने स्टार्ट किया है दूसरों को भी सिखाना। जैसे मेरे आसपास के जो हैं, सब मेरी फ्रेंड्स हैं आसपास जो रहते हैं, रहवासी हैं, फिर मेरी मेट के बच्चे, उनको तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है।
1: बाकी जो आसपास सहेलियाँ हैं, जो फ्रेंड सर्कल और दूसरे जो भी आता है, मैं सबको ही सिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो सभी ये सीखें, कला को आगे बढ़ाएं।
0: आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। अब सबसे ज़रूरी बात सोनाली जी की, इन पेंटिंग्स और कलाकृतियां बना रही हैं, उससे कुछ आपको आर्थिक रूप से भी फायदा होता है, मदद मिलती है आर्थिक रूप से?
1: हाँ जब मैंने ये सीखा था, बनाना शुरू किया था, तब इस बारे में बिल्कुल, मैं अपनी सिर्फ कला को आगे बढ़ाना चाहती थी और अपने शौक को डेवलप करना चाहती, तो इसलिए मैंने आर्थिक रूप से सोचा नहीं था। पर वो धीरे धीरे इतना फैल गया कि वो आर्थिक रूप से भी मुझे मदद होने लगी, और इस तरह से मुझे और घर में भी मेरा सहयोग रहने लगा इकोनॉमिक रूप से। तो मुझे दोनों ही कार्य, मेरा शौक भी पूरा हो गया और सहयोग भी हो रहा है।
0: सहयोग भी हो रहा, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सोनाली जी, जब आप कोई भी काम करती हैं तो आप जैसे पेंटिंग्स बना रही हैं, कई बार आपको बाहर भी जाना पड़ता है इस सिलसिले में, है ना?
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: ये जो
1: बिल्कुल,
0: आप काम करती हैं, तो आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहता है?
1: हाँ फुल सपोर्ट रहता है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें लगा कि इसे बहुत शौक है और ये बहुत अच्छा कर रही है, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और मेरे दोनों बेटे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे इसमें आगे बढ़ने में मतलब सहायता भी करते हैं और आइडियाज़ भी देते हैं कि आप
0: बिल्कुल,
1: मम्मी इस तरह से करिए, इस तरह। तो पूरा सपोर्ट रहता है मुझे घर का, हर तरीके से सपोर्ट
0: क्या
1: करते हैं वो
0: बात है।
1: लोग। हाँ
0: जब
1: जी
0: पीछे से सपोर्ट है तभी हम आगे बढ़
1: हाँ
0: सकते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है
1: लेडीज़
0: ना?
1: के लिए तो ये बहुत लागू होता है।
0: बिल्कुल। अच्छा सोनाली जी, एक बात और, कि यदि हमारी कोई सखी इस क्षेत्र में आगे आना चाहती
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: पेंटिंग्स वगैरह करना चाहती है, कुछ आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे क्या करना होगा?
1: बिल्कुल, मैंने मेरा ये उद्देश्य भी है कि मैं जो आर्थिक रूप से अक्षम है, जो नहीं करते सीखना, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊं ताकि वो अपना कमा भी सके और इस कला को जान भी सके और आगे फैलाएं। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि उनको मैं सिखाऊं, और
0: क्या
1: ये
0: बात
1: और
0: है,
1: सिखाती भी हूँ।
0: क्या बात है। तो इसमें कुछ जमा पूंजी की भी जरूरत होती है क्या?
1: बहुत कम, शुरू शुरू में तो आप ऐसा है कि वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, तो आप घर की चीज़ों से ही आप बना सकते हैं और बहुत कम खर्चे में ये

0: काम हो जाते हैं, धीरे धीरे आइडियाज आते हैं, तो इसे ज्यादा पूंजी नहीं लगती है।
1: बिल्कुल, यानी आपको सीखने की कला चाहिए, बस आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आने चाहिए,
0: ये सबसे कैसे मैनेज करते हैं, तो वो धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाता है। तो ये एक ऐसी कला है कि जिसमें खर्च बहुत कम होता है।
1: क्या बात है सोनाली जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अंत में आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंत में उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि हम होम मेकर हैं तो कोई भी कार्य करने से रुके नहीं। जैसे आप घर में खाना बनाती हैं तो आप कुछ भी नई नई डिश ट्राई करती हैं, तो ये डालती ही हैं कि अगर आप जॉब नहीं कर सकती हैं तो ये कला को ज़रूर अपनाएं। आप ये घर बैठे समय निकाल के बिल्कुल कर सकती हैं और अपने शौक भी पूरे कर सकती। मैं अंत में अपनी सभी सखियों से यही कहना चाहूँगी, हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दें, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दें।
1: क्या बात है सोनाली जी, यानी आपके कहने का मतलब है कि कोई भी सखी जो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो बिल्कुल वो बेशक ये काम कर सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मन में अपने दृढ़ निश्चय हो तो हर काम हो जाएगा।
1: बहुत खूब सोनाली जी। तो सखियों, यदि आप में भी हुनर है, कुछ घर बैठे करना चाहती हैं, तो बेशक कीजिए, क्योंकि किसी भी कला में कलाकार खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। तो सोनाली जी, आपका हमारी सखियों से जुड़ने और उन्हें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आराधना।

और सखियों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं सजने सवरने की। सखियों गर्मियों में तो हम सभी अपना मेकअप जैसे तैसे बचा लेते हैं, लेकिन मानसून की बूंदाबांदी में मेकअप को बचाना जरा मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर सखियों नोट कीजिए कुछ जरूरी टिप्स रूप

लावण्य में और रहिए इस मौसम में भी बेखबर। जैसे कि सखियों, इस मौसम में आप हमेशा अपना मेकअप जो करें वो हल्का ही करें, साथ ही आपका मेकअप ऐसा हो जो वाटर प्रूफ हो ताकि वो पानी लगने पर धुले नहीं। इसके साथ ही सखियों, फाउंडेशन के बजाय टेलकम पाउडर को ही आप अपना मेकअप का बेस बना सकती हैं, साथ ही लिपस्टिक भी आप हल्के रंग की ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ यदि हेयर स्टाइल की बात करें तो हेयर स्टाइल आप सादा ही रखें ताकि बालों को सूखने में आसानी हो, और हाँ, भारी भरकम ज्वेलरी के बजाय हल्की ज्वेलरी ही पहनें। वहीं कपड़ों में सफ़ेद व हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल वो सखियों कम ही करें। और हाँ, अंत में एक खास बात सखियों कि प्लास्टिक या रबर की ही चप्पलें, जूते या जूतियां ही पहनें ताकि आपके पैरों की भी सुरक्षा और सुंदरता बनी रहे। तो सखियों, इस मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच इन ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, हमारे साथ गुनगुनाते रहें बारिश में ये सदाबहार गीत।

और इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और चलते हैं अपनी रसोई में। सखियों, मौसम बरसात का है और बरसात के मौसम में पानी गिरने पर कुछ ना कुछ नया टेस्टी और हेल्दी खाने का मन हम सभी का करता है। तो चलिए आज रसोई में स्वाद के साथ लाते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट और बनाते हैं कुछ नया, अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन, और वो व्यंजन है गुड़ और आटे का चीला। तो सखियों, सबसे पहले नोट कीजिए इसमें लगने वाली सामग्री, जैसे कि गेहूं का आटा 1 कप, गुड़ बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ 1/2 कप, पानी 1 से 1.5 कप, आपकी घोल के अनुसार सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, चिरौंजी 2 छोटे चम्मच, नारियल किसा हुआ 1/2 कप, थोड़ा सा नमक और सेंकने के लिए घी या तेल। और सखियों, अब नोट कीजिए इसे बनाने की विधि। सबसे पहले गुड़ को गुनगुने पानी में सखियों घोल कर इसके पानी को आप छान लें। अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालते हुए चम्मच से मिलाएं ताकि गुठली या लम्स बिल्कुल भी ना रहें। अब इसमें नारियल का बुरादा, सौंफ, चिरौंजी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और उसकी कंसिस्टेंसी डोसे के घोल की तरह तैयार कर लें।

गैस पर नॉनस्टिक तवे को गर्म करके घी या तेल लगाएं और घोल को बड़ी चम्मच से डालते हुए एक सार फैलाएं। मध्यम आंच पर नीचे की तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकने दें और फिर उसके बाद में पलट लें और दूसरी तरफ भी अच्छे से सेंक लें। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म गुड़ और आटे का मीठा चीला। इसे आप इमली की चटनी के साथ सर्व करें। दर्शकों बनाइए, खाइए और खिलाइए ये स्वादिष्ट मीठा चीला इस भीगी सी बरसात में, और साथ ही आनंद लीजिए इन गीतों का।

सखियों, बदलते मौसम में, विशेष रूप से मानसून में, सब्जियों में मिट्टी, कीटनाशक और बैक्टीरिया का खतरा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए सही तरीके से धोने से संक्रमण और बीमारियों से बचा जा सकता है। तो चलिए काम की बातों में बात करते हैं कि सब्जियों को सही तरीके से किस तरह साफ किया जाए। सखियों, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें सब्जियों को धोते समय। सखियों, इस मौसम में सब्जियों को हमेशा बहते पानी से ही धोएं, ना कि एक बर्तन में पानी लेकर। सखियों, कुछ लोग सब्जियों को धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसके बजाय आप एक बर्तन में पानी लेकर उसमें एक चम्मच नमक या फिर सेव के सिरके का घोल भी बना सकती हैं और उनसे सब्जियों को धो सकती हैं। सब्जियों को हमेशा काटने से पहले ही अच्छी तरह से धोएं, ना कि काटने के बाद, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सब्जियां काट लेते हैं फिर धोते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो सखियों, ये तो थी कुछ बातें सही तरीके से सब्जियों को धोने की। सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। फिर मिलने के वादे के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी आराधना को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज के कलाकार थे कालू सिंह चोपड़ा और साथी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं श्रुति काले और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार थी श्रुति कालवे और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

ज़माना दीवाना फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ है विनोद राठौर की, गीत समीर का और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इस बस्ती में

आइए आपको सुनवाते हैं आप आए बाहर आए फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एनसीपीआई सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पहली बार इस बैठक में पहुंचे और उन्होंने पार्टी की एकजुटता का दावा किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्ञान और निरंतर प्रयास का संदेश देते हुए एक संस्कृत श्लोक साझा किया। उन्होंने लिखा कि लगातार मेहनत और साधना से प्रतिभा निखरती है और आज देश के युवा इन्हीं गुणों के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गीता का श्लोक साझा करते हुए ज्ञान को सबसे पवित्र बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई दौरे पर रहेंगे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार क्षेत्र के निवेशकों के रोड शो और बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल की जानकारी भी देंगे। प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर राज्यपाल डॉ. मंगूभाई पटेल ने कहा,
1: आज की यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय संकल्प को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें उपस्थित सभी कुलगुरु, प्राचार्य, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, अधिकारी तथा प्रतिभागियों का सहभागिता ज्ञान आधारित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है।
0: इस कार्यशाला में देशभर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और विश्वविद्यालयों के कुलगुरु शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित ऊर्जा और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। चुनाव होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लाखों विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली,

रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में जुलाई से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया के तहत अब तक 7 निर्धारित उपार्जन केंद्रों के जरिए 2118 किसानों से कुल 7022 क्विंटल से ज्यादा मूंग की खरीदी की जा चुकी है। नर्मदापुरम समेत प्रदेश भर के जिलों में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें रखी गई है। और शिवपुरी जिले में आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 अगस्त से 8 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद पर टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए।

0: मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
2: MSMEs have actually benefited.
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
4: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
5: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।

0: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार यह घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं सारणी जिला बैतूल से अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवलिका और संदीप पाटिल। बड़वा से प्रवीण, श्रीमाली, मीना, आदित्य, शिवानी और मीनूराज। आप सभी ने सुनना चाहा है कुछ खट्टी कुछ मीठी फिल्म का नगमा कुमार सानू की आवाज़ में, समीर के बोल और तर्ज बनाई अन्नू मलिक ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

पसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, रोडबिका और ऋषिका, इंदौर से लाल फतेह चिंतानी, लीला फतेह, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, आप सभी ने सुनना चाहा है लाजवंती फिल्म का नगमा आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीत मचरूस

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं बहिया से सुरेश केशरी, पूनम, प्रतीक, बक्सर से राजेश, पंकज और रोहन, महंसवाड़ी से शत्रुघ्न, वाल्मीकि, नीना, स्वप्निल और अजय। आप सभी ने सुनना चाहा है इश्क विश्क फिल्म का नगमा, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत समीर का, संगीत अनु मलिक का।

आदर्श नगर मचोल से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंटी, सौरभ और शाइनी शर्मा, आप सभी ने सुनना चाहा है एक बार फिर फिल्म का नगमा अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र की आवाज़ों में। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये नगमा।

एक बार फिर फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की। विनोद पांडे ने बोल लिखे थे और रघुनाथ सेठ की तर्ज थी। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्ञान और निरंतर प्रयास का संदेश देते हुए एक संस्कृत श्लोक साझा किया। उन्होंने लिखा कि लगातार मेहनत और साधना से प्रतिभा निखरती है और आज देश के युवा इन्हीं गुणों के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई दौरे पर रहेंगे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार क्षेत्र के निवेशकों के रोड शो और बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगार से जोड़ने की दिशा

0: में आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव पर सभा समाप्ति से पहले आइए जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। शाम 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम सुना जा सकता है। 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। चित्रपट संगीत आपको सुनवाएंगे 6:30 पर। 8:00 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद समीक्षा।

8:15 पर सुर्खियों में आप सुन सकते हैं। 8:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशां हम आपको सुनवाएंगे। दस बजे फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुनेंगे चेताली शेवलिकर का वायलिन वादन, राग होगा यमन। भोपाल केंद्र से शाम 7:30 पर सुना जा सकता है किसानवाड़ी कार्यक्रम।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर का ये 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। इस बीच डीटीएच पर प्रसारण जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।

डीटीएच का प्रसारण आप सुन रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें कलाकार थी श्रुति कालवे और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का नगमा। केके की आवाज़ में कौसर मुनीर के बोल हैं और प्रीतम ने इसकी तर्ज बनाई।

चित्रपट संगीत में आइए, अब आपको सुनवाते हैं विश्वात्मा फिल्म का नगमा। साधना सरगम की आवाज में आनंद बख्शी के बोल हैं और विजू शाह ने इसकी तर्ज बनाई है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी की बोलों को और इसकी तर्ज बनाई अनु मलिक ने। फिल्म का नाम अकेले हम अकेले तुम।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

हम तुम पे मरते हैं फिल्म का नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ें लता मंगेशकर और उदित नारायण की हैं, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज़ों में प्रसून जोशी के बोलों को। तर्ज बनाई है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम हम तुम।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा में इस साल छात्राओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ई प्रवेश सत्र 2026-27 में प्रत्येक 100 छात्रों पर 171 छात्राओं ने दाखिला लिया है, जिससे जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.71 पर पहुंच गया है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे। प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करती है और समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। और मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में फिर से तेज बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच का प्रसारण आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम शब्द सागर।
2: नमस्कार, शब्द सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी लेखन में संवेदना और स्वरूप का अंतर संबंध, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री गोविंद मिश्र और श्री शशांक जी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है।
3: आपका भी स्वागत।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी लेखन की जब भी बात चलती है तो उसकी स्वरूप, संरचना, कथ्य, भाषा, कला, तमाम सारी बिंदुओं पर बातचीत की जाती है। लेकिन सबसे प्रमुख चीज जो होती है कहानी में, जिसकी तलाश हमेशा रहती है और पाठकों को या श्रोताओं को बांधती है, वो होती है संवेदना। और कहानी का मतलब ही है कि कहानी अपनी संवेदना के आधार पर पाठकों के हृदय को छू ले। तो मैं गोविंद जी आपसे जानना चाहती हूँ कि कहानी की जो संरचना है, उसका जो स्वरूप है और संवेदना का क्या अंतर संबंध आप देखते हैं?
4: देखिए, ये थोड़ा बहुत तो अलग अलग लेखकों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि संवेदना वो चीज़ है जो धड़कती है कहानी में, और स्वरूप उसका वो है जो दिखता है बाहर से। कुछ कुछ कह लीजिए कि आत्मा या शरीर जैसा संबंध। अब अगर स्वरूप नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो पाठकों तक नहीं पहुँचेगी, वो भी ज़रूरी है। और अगर जो सिर्फ शैली और दिखाई दे रहा है उसी पर ध्यान देते हैं, तो सवाल होता है कि कहानी लिखी क्यों गई, कहने की जो बात दूसरी है। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से ज़रूरी होती हैं। जहाँ तक मेरी अपनी रचना प्रक्रिया है, मैं कभी इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर पाता। जिस वक्त में कहानी रूप लेती है तो अलग से कोई शैली तय नहीं होती। वो कितनी तीव्रता से संवेदना आ रही है वो अपने आप तय करती है कि उसका क्या स्वरूप होगा, क्या शैली लेंगे। यहाँ तक कि शैली भी अलग अलग बदल जाती हैं। जैसे आपने पढ़ी होगी वर्णांजलि की शैली एकदम अलग किस्म की है, और अभी जो मैं लिख रहा हूँ कहानी, उसमें चूंकि दोनों का पक्ष सही मुझे नज़र आता है, तो एक ऐसी शैली चाहिए जिसमें दोनों पात्र ऊपर उठें। इसमें कोई मतलब कहा नहीं जाए, लेकिन होते दोनों महत्वपूर्ण हैं और मेरा ख्याल है हर लेखक थोड़ा सजग इस बात को लेके होता है कि आखिर जो संवेदना मुझे झकझोर रही है वो अगर पूरी की पूरी ना सही तो अंशतः तो पाठक के अंदर उतरे ही, अर्थवर की बात नहीं होती, मतलब वो इमोशन पैशन या जो भी आप उसे कहें झंझनाहट वो तीव्रता वो उतरना चाहिए।
2: शशांक जी, जैसे गोविंद जी कह रहे हैं कि कहानी मतलब शरीर और आत्मा की बात, जैसे संवेदना और स्वरूप, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष जिसको हम कह सकते हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पहले तो हम एक पूरी कहानी पर ही बात कर रहे हैं कि कहानी में संवेदना और स्वरूप का अंतर संबंध क्या होता है, फिर आप लोगों की अपनी रचना प्रक्रिया पर भी मैं आऊँगी कि कैसे आप लोगों ने संवेदना और स्वरूप को साधा है।
3: सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि संवेदना और स्वरूप दो अलग अलग चीज़ें हैं
2: जी।
3: जब हम संवेदना की बात करते हैं तो एक कथाकार के सामने एक चुनौती की तरह पाठक की संवेदना उसके सामने होती है, मतलब पाठक की संवेदना अलग है और लेखक की संवेदना अलग है, और उस संवेदना से अपने बोध को आगे बढ़ाने का काम लेखक करता है
2: जी।
3: क्योंकि वो अंततः करता क्या है, वो अन्याय दमन और गैर बराबरी के खिलाफ कहानी को सामने रखता है और ऐसा रास्ता पाठक को दिखाता है जहाँ वो कुछ सोच सके कि जो स्थितियाँ हैं उसमें वो किस ओर खड़ा होगा। और संवेदना के भी कई स्तर मुझे लगता है होते हैं, और ख़ासतौर पे भारत को यदि आप देखें क्योंकि बड़ा विशाल प्रदेश है, और श्यामाचरण दुबे तो ये कहते हैं कि एक साथ कम से कम 50 समाज होते हैं और वो समाज हर 10 साल में बदलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी संवेदनाएं अनेक स्तरों पर होती हैं और दूसरा कई दशकों में बदलती चली जाती हैं, और वो एक ऐसा प्रिज्मेटिक रूप धरती हैं जिसमें लिखने का आनंद ही लेखक उठा पाता है। अब रहा सवाल ये कि यदि संवेदना इतनी तीक्ष्ण है तो इस पर हमें थोड़ा सा रुक कर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 20 वर्षों के ही मोटा मोटा हम हिस्सा ले लें, और मुझे लगता है कि सूचनाएं सबसे ज़्यादा हमारे पास आई हैं
2: जी।
3: मीडिया के अनेक तंत्र हमारे पास आए हैं, रेडियो है आपके पास, टेलीविज़न है, नेट है, और सोशल मीडिया के कई हिस्से हैं, और उसमें हम सभी महसूस करते हैं कि जितना हमें जानना है और जितना हमारी त्वरा को आक्रामकता जितनी होनी चाहिए उससे शताधिक आक्रामकता आज के समय में है। तो रुक कर हमें ये देखना होगा कि जन सामान्य की संवेदना में हमारा हिस्सा क्या, जैसा आज हमेशा सनसनीखेज चीज़ें आ रही हैं उस ओर हम झुकेंगे, या एक नैतिक दायित्व बोध के साथ उसमें हम रुक कर उसके साथ कुछ ऐसी सॉफ्ट ऐसी कोमल बातों की तरफ उसे खींच के ले जाएंगे जो कम से कम उगते हुए सूर्य को या एक संवेदना माता और पिता, वो थोड़ी संवेदना नहीं जो लोग आज लिख रहे हैं
2: उस तरह से
4: नहीं। शशांक भाई, इसमें वही बात है कि संवेदना पाठक की या कि लेखक की, लिख रहा है कहानी लेखक। मैं सिर्फ अपने ही संदर्भ में अपने ही तजुर्बे से बात कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी पात्र को या चरित्र को देखते हैं और वो अगर सिर्फ विशुद्ध काल्पनिक नहीं है, तो मैंने देखा कोई स्त्री पुरुष या दोनों को, तो उनकी क्या त्रासदी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई भयंकर त्रासदी रहती है। अब उसमें जाने के लिए लेखक अपनी संवेदना से एक पुल तैयार करता है, ढूंढता है कि क्या है जो जो इन्हें पीड़ित कर रहा है। अब उस व्यक्ति के अंदर जो आप बात कर रहे थे वो तो है ही कि अब आज के समय में बदली हुई संवेदना वहाँ मौजूद है। अब सवाल यह है कि लेखक उसको चुन पाए, ढूंढ पाए, फिर वैसे शब्द दे पाए, और ये ना रहे कि हमें कोई तर्क बुद्धि और इससे संवेदना से। मेरा आशय रहता है कि थोड़ा तर्क से अलग, दूर, बुद्धि से दूर, क्योंकि कहानी लिख रहे हैं आप, साहित्य लिख रहे हैं आप, तो रस संवेदना ये सिर्फ बुद्धि से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आए, उसकी त्रासदी क्या है, हम उसमें भिगो लेना चाहते हैं अपने पाठक को। तो इसलिए मुख्य रूप से आपकी बातों से ऐसा लगा कि पाठक की संवेदना मुख्य है जिसमें हमें उसको इम्पोर्टेंस दे के लिखना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इसमें लेखक की संवेदना ज़्यादा रोल प्ले करती है कि वो वहीं जाके उस चीज़ को उठाए जो उस व्यक्ति को व्यथित कर रही है और उससे अपना तार जोड़ ले और इस तरह जोड़े कि फिर उसे लांग करे तीसरा व्यक्ति, न लेखक न वो व्यक्ति जो पात्र है, तीसरा जो पाठक हो रहा है उसको भी वो वैसे ही छू ले। जहाँ ये तीनों एक रस हो जाते हैं वहाँ कहानी बड़ी प्रभावी हो जाती
3: है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि संवेदना में दरअसल हम एक ऐसा नया अछूता कोना अपने पाठक को देना चाहते हैं, क्योंकि हम यदि किसी एक विदेश की या किसी एक फैंटेसी में उसे ले जाएंगे हो सकता है कि वो उससे अभ्यस्त ना हो, मगर जहां हम जाते हैं और चिरपरिचित जगहों पर ले जाकर ये कहते हैं कि ये जगह है जो हमारे एक मानवीय संवेदना होने के कारण हमने उसे छोड़ दिया है। मैं अभी जानबूझकर पिछले 2 दशकों की कहानियां लेता हूँ, उसमें आख्यानकार या नैरेटर जो स्वतः ही कहानीकार है उसके हाथ में नियंत्रण में कहानी बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि चरित्र, जैसा कि आपने कहा है, जो आज की सबसे बड़ी कहानी की चीज है, जहाँ मांग
4: है, इसलिए कि उसमें रह जाता है कि वो शैली पर या स्वरूप पर ज्यादा जोर देने लगता
3: है। जी हाँ, वर्णन उसके पास,
2: भाषा पर
3: वर्णन इतना अधिक होता है,
4: इस वजह से हो कि हम ऐसी विलक्षणता पैदा कर रहे हैं,
3: जैसे
4: शैली पर हमारे उदय प्रकाश,
3: जैसे कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी अब नहीं मिलती है। मुझे ये भी लगता है कि जब भूगोल, स्थान और समय काल इन तीनों को मिला दें तो संवेदना का बदलाव होता था। आज से हम 20 साल पहले जिन चीज़ों से प्रभावित होते थे,
4: बदलाव होता है तो वो पात्र में दिखाई देता है। सवाल ले कि लेखक भी ऐसा हो कि उसी ढंग से ना देखे, उसी उस तरीके से। अब जैसे मैं अभी जो कहानी लिख रहा हूँ, परेशानी उसमें ये है कि एक पिता और

0: पुत्री है। पुत्री नौकरी बड़ी अच्छी छोड़ करके, इस वजह से कि पिता को सेवा करने को कोई नहीं है, उसे नौकरों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता
1: जी,
0: वो आ जाती है। पिता दुखी है कि ये अच्छी नौकरी छोड़ करके सर्वेंट मेरी बनी हुई है। दोनों अपनी पक्ष में बिल्कुल सही हैं। अब ये आज की संवेदना है कि वो इतनी माँ बाप के लिए डिवोटेड है, माँ बाप उपेक्षित होते हैं, रोज अखबार में हम पढ़ते हैं क्या क्या उनके साथ हो रहा है, तो वो अपने ढंग से सही कर रहे हैं।
1: हमारे से बिल्कुल उल्टा है, मैं इस बात को करूँगा। और मुझे खुशी है कि हमारे साथ जो उर्मिला शिरीष हैं और ये बहुत बड़ी लेखिका हैं, इनकी मैं दो कहानियों की जिक्र आपसे करूँगा, एक चीख है और उसका अपना रास्ता। इसका विश्लेषण तो भी स्वयं करेंगी, बस जिस बात को आपने कहा है कि माता पिता को मिलना चाहिए, इन दोनों ही कहानियों में, एक में जिसके साथ बलात्कार हुआ है और एक जो अपने फैशन परेड के लिए अपने को तैयार करती है, तो सारा घर का वातावरण आत्मीय होते हुए भी दरअसल ये दोनों हिस्से में उस स्त्री को कमज़ोर करने के लिए सामने आता है। तो ये संवेदना है, मगर इस संवेदना के विविध आयाम हैं और जो जितना बड़ा आख्यानकार होगा उसमें वो उतनी अधिक चीज़ें लेकर आएगा।
0: मेरे ख्याल में इसमें शशांक भाई ये तय करना चाहिए कि लेखक और लेखक की अपनी च्वाइस होती है, उसका उसको अधिकार है कि वो संवेदना को ज़्यादा महत्व देता है या स्वरूप को। अगर शैली लेकर आप चलते हो तो आपके हाथ से वो संवेदना छूट जाएगी, अगर बहुत संवेदना लेकर चलते हो तो शायद अति भावुकता वाली भी बात आ जाएगी। तो दोनों का कहीं एक अंतर गुम्फन होना चाहिए और मेरे ख्याल में वो तब तक होता है जब तक आप उस पात्र से सटे सटे चलते हो जिस पर आप लिख रहे हो। मुझे तो इस चीज़ ने बड़ी मदद की कि जब भी मैं ऐसे स्थल पर पहुंचता हूं कि मुझे परेशानी है कि मैं किधर ले जाऊं कहानी को, तो उस पात्र को देखो, उसकी ज़िंदगी को देखो और एग्जैक्टली उसके जितना करीब से करीब गुजरो तो वो चीज़ दूर बैठे एक पाठक पर भी उतरती है, क्योंकि जो आप कह रहे थे कि वो आज की संवेदना सिर्फ मेरी और
2: शशांक जी जैसे गोविंद जी बात अभी आज की संवेदना की कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो आज की संवेदना या पिछले बहुत 30-40 दशक या उसके पीछे हम जाते हैं या प्रेमचंद से शुरू करते हैं, पूरा एक कहानी का पूरा एक समय हमारे सामने है प्रेमचंद से लेकर आज तक, और कहानियों के जो विभिन्न आंदोलन जो हुए हैं और निश्चय ही उसमें भाषा में बदलाव आया, शिल्प में आया, शैली में आया, सारी चीज़ें आईं, विचार कहीं हावी रहा, कहीं कोई दूसरी चीज़ हावी रही, लेकिन मूलतः हमेशा जो कहानी है वो संवेदना की ही मांग करती है। तो मैं अब आपके आप इतने बड़े कथाकार हैं और आपकी रचना प्रक्रिया पर आती हूँ, क्योंकि आप दोनों ही अपनी पीढ़ियों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समकालीन भी है, तो आपके माध्यम से भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप कहानी लिखते हैं तो दोनों चीज़ों को साथ में साधते हैं, या जैसे आपने पाठक की बात की कि पाठक की संवेदना अलग और लेखक की संवेदना अलग, तो क्या अनकॉन्शियस माइंड में या सोचकर पाठक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से कहानी लिखते हैं?
1: देखिए, जब आप लंबे समय तक लिखते हैं
2: जी,
1: तो आपकी शैली
2: जी
1: और आपके कहानी का स्थापत्य
2: जी
1: धीरे धीरे एक रूप लेता है
2: जी,
1: जो दूसरे लेखक से अलग होता है। आज आप नाम हटा दें तो बड़े लेखकों की कहानियाँ उनके नाम और शीर्षक हटाने पर भी पाई जा सकती हैं कि ये इसकी लिखी हुई है। निर्मल वर्मा का नाम हटा दें और उनकी कहानी का जो आप हिस्सा पढ़ें तो उसका जो रसायन है वो तैयार किया हुआ निर्मल वर्मा का है। मगर ये एक बहुत अच्छी बात है कि हिंदी में सदैव एक तरफ बहुत अधिक कला के साथ लिखी गई कहानियां हैं तो दूसरी तरफ बहुत सादे ढंग से कथ्य को लेकर आगे बढ़ने वाले कहानी है। जैसे कि मान लीजिए अमरकांत हैं, वो मित्र मिलन, डिप्टी कलेक्ट्रीस जैसी कहानियां लिखते हैं और बहुत सादे ढंग से है और एक ऐसा करेक्टर आपके सामने खड़ा कर देते हैं। इसी तरह मैंने कृष्णा सोपती का नाम लिया था तो उनकी आप ए लड़की पढ़ें या मित्र मरजानी पढ़ें, आप नाम हटा दें तो अमरकांत अलग होंगे और ये
2: कृष्णा सोपती अलग।
1: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने लेखन में भाषा, शैली और कथ्य का चुनाव भी, ऐसा नहीं है कि हर तरह के कथ्य हम चुन लेते हैं। हमारे पास जिंदगी के

0: हजारों कहानियां पढ़ी हुई हैं, मगर आपके इन तीनों का जो बहुत अच्छी बात गोविंद जी ने कहा था कि एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जेम्स जॉयस ने लिखा कि जहाँ बहुत अधिक भाषा शैली की बात होती है वहाँ मुझे भूल जाया जाता है, और अपने यहाँ रघुवीर साहब कहते हैं कि कला कला जहाँ बहुत कला होगी वहाँ कला नहीं होगी, तो ये बैलेंस होगा तभी होगा। तो अब आप यदि 20 सालों में आप देखें तो जैसे चंदन पांडे की भूलना या सुनो कहानियाँ है, और मनोज पांडे ने जैसे सोने का सुअर और शहतूत कहानी लिखी है, अपने ही शहर के हैं मुकेश वर्मा, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है दिलों की एक आवाज़ ऊपर उठती हुई और ब्लैडी फूल, जहाँ आपके संवेदना को उन्होंने बताया है कि एक आदमी जो है 300 मंजिल से नीचे गिर रहा है और हम मंजिल में कैसे कैसे लोग करेक्टर बदल रहे हैं, तो ये एक आदमी
1: आपके भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं
0: जी, है ना, मगर मैं दूसरों की बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा,
1: कहानी का नाम आप नहीं ले रहे हैं, घंटी कहानी है और भी बहुत अच्छी कोसा फल है, 19 साल का लड़का है।
0: अब जैसे मैं यहाँ पर जो बात हो रही है रचना प्रक्रिया की, तो मैंने भोपाल गैस त्रासदी के समय में एक बहुत लंबी कहानी लिखी, और बल्कि मैं यूं कहना चाहूँगा कि जब मैं उपन्यास उसको लिख रहा था और उस संवेदना को मैंने जिया है यहाँ पर, उसे जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं, मैं अक्सर ये मानकर चलता हूँ कि लेखक कहानी लिखता है अलग, कहानी पे बात करता है अलग, उसकी बात करने को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए ये, क्योंकि वो अपने को एक वकील की तरह प्लीट करता है, जिरह करता है, जो उस कहानी के अंतरंग में नहीं हो सकता। तो मैंने ये पाया कि सारे दस्तावेजों को मैंने पढ़कर एक किनारे किया, और दरअसल वो क्या चीज़ है जो एक बहुत बड़ा गुंडा आपको स्कूटर पे बैठा कर आपको 5 किलोमीटर छोड़ देता है और दूसरे दिन की अफवाह में वो आपका सामान लूट लेता है, ये इतना जटिल व्यक्तित्व है व्यक्ति का, और वे लोग जो प्रताड़ित हुए वो कटोरे हाथ में लेके एक भीख की तरह भी सामने आ रहे थे।
1: गोविंद जी की खुद एक कहानी है, फांस कहानी, जिसमें इसी तरह के वो
2: वही तो है बात कि आप क्या देख करके कौन सी चीज शुरू करना चाहिए। ना आपने सवाल किया कि कहाँ से कहानी आप उठाते रहे,
1: आपके पास लंबा अनुभव है पूरा, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के साथ आप खड़े हुए, तो आपने निश्चय ही सारा यदि साहित्य उठा के देखा जाए, कहानियाँ उठा के देखी जाएं, तो आपकी कहानियों का मूल स्वर वहीं जाता है, जो बात आप आत्मा और शरीर
2: मतलब
1: की कर रहे थे।
2: मेरा संपर्क जैनेन्द्र अज्ञे और इन्होंने निर्मल वर्मा और इन लोगों से रहा, ये बात सही है कि सबकी और शायद बहुत ज़्यादा दिनों तक और गंभीरता से अपने को विस्खलित किए बिना जो कहानी या किसी भी साहित्य की विधा में लगा रहता है उसकी एक अपनी शैली विकसित होती है, क्योंकि 30-40 साल का समय है उसके पास, और वो कितनी अलग अलग किस्म की होती है। प्रेमचंद जी को लें तो उनके संपर्क में जो भी आता था कहानी उनकी हो जाती थी और जो दिखाई देता था उस पर, जैनेन्द्र जी एकदम अंदर चले जाते थे। जैनेन्द्र जी जेल कई बार गए, उन्होंने जेल का कभी जिक्र नहीं किया, जबकि प्रेमचंद कभी जेल में नहीं गए, उनमें आश्रम रहे। ये अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। मुझे जो इन सब में जो एक संतोष मिला वो शैलेश मटियानी की कहानियों में मिला। उनके यहाँ ये है कि अंदर के जगत का भी उतना ही चित्रण है और बाहर का भी है। निर्मल वर्मा में बाहर का कम है, जैनेन्द्र जी में अंदर का ज़्यादा है बाहर का कम है, इस तरह प्रेमचंद में अंदर का नहीं है, प्रेम की कहानी उनके यहाँ मुश्किल से मिलेगी। लेकिन ये जो शैलेश मटियानी, इसलिए मैंने एक जगह कहा भी था, लिखा भी है मैंने उस पर कि प्रेमचंद और जैनेन्द्र का अद्भुत मिश्रण है शैलेश मटियानी, उनकी प्रेत मुक्ति, अर्धांगिनी, महमूद, जिसमें मुस्लिम परिवेश में वो व्यक्ति बुनियादी तौर पर जो ब्राह्मण था वो कैसे मुस्लिम परिवेश में घुस जाता है और वैसा प्रामाणिक तस्वीर पेश करता है। तो ये वही होता है कि दूसरे की यातना और संवेदना से आप अपने को मिला दीजिए। जहाँ तक मेरी, आपने कहा था तो बात कर ही चुका हूँ रचना प्रक्रिया पर, मुझे दर्द है जो खींचता है, दुख। तो जब तक किसी

0: अत्र में मुझे वो दुख नहीं दिखाई देता, कहानी नहीं बनती और मेरी कहानियाँ काल्पनिक नहीं हुई। अब उनसे साथ संपर्क बना बना के फिर उसके दुख की जड़ तक जाने की कोशिश करना और उससे फिर कहानी लिखना, और वो अपने आप अपना शिल्प तय करके अलग आती। मुझे कोई उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ता, सिर्फ शिल्प के लिए आग्रह से या सिर्फ विषय तय करके कि मुझे इसी पर लिखना है। मैंने कभी कोई कहानी नहीं लिखी, हमेशा बाहर से कहानी आई तो यथार्थ भी उसमें आ गया अपने आप।
1: शशांक जी, अभी आपकी एक किताब आई थी कहानी के पास, और कहानी को लेकर आपने बहुत अच्छी चीज़ें उसमें उठाई हैं, अपने अनुभव और दूसरे कहानीकारों को लिया, रचनाकारों को लिया, और कहानी की शुरुआत से लेकर बाद में चाहे नामवर सिंह जी हों, कमलेश्वर हों, गोविंद जी हों, आप हैं, या बीच के तमाम नाम मैं छोड़ रही हूँ, कि उन्होंने कहानी के तमाम तत्वों पर बात की है। तो क्या ये जो आलोचना है, आलोचक की एक दृष्टि है, उसने क्या कहानी के स्वरूप और संवेदना में कहीं कोई इस तरह की चीज़ वो की जिससे कि हमारी कहानी की जो मूलता प्रवृत्ति या प्रकृति कही जाती है उसको कहीं क्षति पहुंची है क्या?
2: देखिए, मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था डॉक्टर धनंजय वर्मा पे
1: जी।
2: उसका शीर्षक ही था कि आलोचना सभी चाहते हैं, आलोचक नहीं
1: जी।
2: क्यों? क्योंकि हम अपनी रचना पर क्या प्रकाशमान भासमान हो वो तो चाहते हैं, मगर अंदर क्या कमियां हैं वो कम लोग चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करते हुए हिंदी साहित्य में रिव्यू, समीक्षा की बजाय परिचय और एक कॉलम का अखबारों में, किताबों में, मैगजीनों में होता है, मगर जिसने श्रम पूर्वक कहानी पर चर्चा करनी हो ये होना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे हिंदी में लोगों ने जो आलोचना की है उसके टूल्स जो हैं एक तो विदेशी हैं और वो कविता के टूल्स हैं जो कहानी पे लाए जा रहे हैं, खासतौर पे नामवर सिंह जी पे ये आरोप लगता है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि क्या प्रतिमानों का होना ज़रूरी है? जब तक अच्छी रचना नहीं होगी तो प्रतिमान कहाँ से बनेंगे?
1: बिल्कुल सही।
2: और दूसरा, यदि प्रतिमान नहीं है तो आप एक वेगवान घोड़ों को कैसे आप छोड़ देंगे? मगर ऐसा नहीं है कि हिंदी में आलोचना नहीं है। यदि आप देखें तो देवी शंकर अवस्थी, जिनकी इत्तेफाक से किताब का नाम ही है हिंदी कहानी स्वरूप पर संवेदना, ये उनकी किताब का नाम है। और इसी तरह जब यदि आप देखें कि चौधरी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, और आपके पास ऐसे कई कहानियों पर लिखने वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 30 साल पहले कहानीकारों ने कहानी पर ज़्यादा विचार किया।
1: हाँ।
2: असगर वजाहत ने विचार किया, कमलेश्वर ने विचार किया, राजेंद्र यादव ने किया, और जब आप वहाँ खड़े होते हैं इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक यदि सबकी रीडर्स बनाई जाएं, कहानी की आलोचना का सार करें, तो मुक्तिबोध से यदि आप शुरू करें तो आपके पास बात करने के लिए बहुत है, और सचेत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर अभी लिखी जा रही कहानियों में लेखक किससे अच्छा लिखा है और किसमें क्या होना चाहिए। अब जैसे राजेंद्र यादव की बात मैं सहमत हूँ, एक बहुत लंबा लेख था उसमें मुझे एक चीज़ लगती थी कि कहानी से कल्पना शक्ति को बाहर कर दिया गया है और वर्णन की अधिकता से अपठनीयता बढ़ी है।
0: तो पत्रकारिता की तरफ पटक देना होगा। हाँ। कहानी को, कल्पना को एकदम
2: तो
0: आप वो कर दें तो साहित्य क्या है?
2: तो कल्पना तो बिल्कुल ही नहीं है अब, और वर्णन इतना लंबा लंबा होता है। और एक अभी मैं किसी गोष्ठी में था जिसमें लेखिका ये बता रही थी कि मैंने बड़ी मेहनत की है।
1: हाँ।
2: और इसमें मुझे डॉक्टर ने मदद की और गूगल से ये मदद मिली।
1: अच्छा।
2: तो मैंने कहा कि एक पाठक को गूगल से मतलब नहीं है।
1: सही बात।
2: उस मरती जा रही स्त्री का जो किसी अन्य से प्रेम है वो आखिरकार उसे कहाँ ले गया? उसमें गूगल मदद नहीं करता, उसमें लेखक का अपना व्यक्तित्व तो मदद करता है, लिखने की उसकी प्रतिभा।
1: हाँ।
2: वो करती है।
0: एक बात उर्मिला जी मेरे दिमाग में आई कि इस स्वरूप की जब हम बात कर रहे हैं, स्वरूप में एक जो दिखता है कहानी का उसमें भाषा भी बड़ी चीज़ है, और भाषा के लिए भी वही बात आती है कि कभी कभी जब भाषा के लिए आग्रह अतिरेक में चला जाता है तो वो संवेदना को
1: शरित करता
0: हाँ, जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके मित्र जयश्री राय हैं, बहुत अच्छी भाषा है उनके पास, लेकिन उसका मोह इतना ज्यादा आ जाता है कहानियों में कि वो बहुत महसूस करके लिखती भी हैं कि जितना जो महसूस किया गया है उस पैनेपन से नहीं आता है और पाठक भाषा में उलझ के रह जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारी संवेदनात्मक तीव्रता मैं महसूस कर रहा हूँ एक कहानी को लेकर के तो उसमें क्लिष्ट भाषा ही आए, कोई जरूरी नहीं। वो सरल भाषा में भी आप ऐसी चीजें कह सकते हैं बशर्ते संवेदनात्मक वेग हो, वो अपने आप वो भाषा तय कर देगा।
1: यानी संवेदना के साथ भाषा का उस तरह होना जरूरी है।
2: देखिए अभी हम लोगों ने बातचीत की उसमें अस्पष्ट रूप से बात निश्चित आई है कि सभी चीजों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है,
1: कहानी तो कुल मिला के बनती है।
2: और मेरी एक छोटी सी कहानी जिसमें मैंने ये कहा है कि वो एक गोभी पत्ते गोभी को एक एक चीज निकाल रहा है आलोचक, ये कला है ये कत्य है ये बाद में डंठल छोटा सा बन जाता है। तो हमको डंठल की जरूरत नहीं है, मगर मैं बार बार कहता हूँ कि एक बड़ा लेखक अपने चरित्रों और अपनी भाषा और उसको कैसे वो व्यवहारगत सामने लाता है। आज क्यों चेखव को हम
1: बार बार सच बात है
2: केवल इसलिए कि उसमें एक ऐसी चीज है मानवीय सेंसिबिलिटी की इतनी अंदर तक जाने की कि वो स्त्री मरी हुई है वो उसको लेके ढो रहा है और वो घोड़े से बात कर रहा है क्योंकि इसको अपनी बातचीत करने के लिए कोई आदमी नहीं है। आज की तारीख में इतना सब कुछ है, आप दिन में 1000 व्हाट्सएप करते हैं, दरअसल आपकी बातचीत कुछ नहीं सुन रहा है, आपको एक घोड़े की जरूरत है जो आपको अंदर तक हिला कर रख दे। और कहानी में ये ताकत है जो आपको स्तब्ध और विस्मय करे और इस ताकत को निश्चित रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत
1: है। सही बात है और ये विषय इतना बड़ा है और इस पर घंटों लंबी चर्चा की जा सकती है। पूरा एक वैश्विक परिवेश है हमारा, हिंदी का भी है और दो वरिष्ठ कथाकार हमारे बीच हैं जिन्होंने आज कहानी की संवेदना और स्वरूप पर इतनी अच्छी बातचीत की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद और मिला
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे शब्द सागर। डीटीएच का प्रसारण इस वक्त आप सुन रहे हैं।

0: हैं प्रस्तुत है संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 20वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 20वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि को चारुमित्रा उज्जैनी वापस लेकर आती हैं। महामात्य ने उनकी बहन मैनावती को उज्जैनी बुलवाया है। मैनावती बंग देश की राजमाता हैं। महामात्य राजा भर्तृहरि की चिंता को मैनावती द्वारा सुलझाना चाहते हैं। अब आगे

0: राजा भर्तहरि की बहन मैनावती तब से ही आकुल थी जब से उन्हें महामात्य का कूट संदेश मिला था कि महाराज अनुपस्थित हैं, कुमार विक्रम की अनुशासन विहीन गतिविधियां हो रही हैं, सामंत और राजकर्मी उच्छृंखल हो रहे हैं, प्रजा के व्यामोह और अराजक अव्यवस्था ने मैनावती को विचलित कर दिया। वर्षों बाद वो अपने मातृगृह लौट रही हैं। इन्हीं दिनों अवंती का प्रख्यात बसंत उत्सव का आयोजन भी होता है। इतने वर्षों के बाद कनक श्रृंगा लौटी मैनावती के मन में इस उत्सव के लिए स्वाभाविक उत्सुकता है।
1: उज्जैनी पहुंचे मुझे एक अठवारा बीतने को है, किंतु इस बीच भाई से मेरी भेंट केवल दो बार हुई है। एक बार आगमन के अवसर पर हुई शिष्टाचार भेंट, और दूसरी बार तब जब वह मेरी व्यवस्था देखने स्वयं पधारे थे। महामात्य अवश्य समय निकालकर मेरे पास आ बैठते हैं, उन्हीं ने मुझे बताया था।
2: महाराज और महारानी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उनके संबंध सामान्य नहीं है। राजा राजकार्य में रुचि नहीं लेते, महाकाल की कृपा से ही व्यवस्था अभी बनी हुई है और चल रही है।
0: ये सब क्यों हो रहा है ये जानने के लिए रानी मैनावती ने महाराज तथा महारानी से बारी बारी भेंट करके इन स्थितियों का रहस्य सूत्र पकड़ने का निश्चय किया। वो राजभवन के अंतःपुरिक भाग की ओर निकल पड़ी।
3: आपके आगमन से राजनिलय पवित्र हुआ भगवती, महाराज और महारानी अपने अपने कक्ष में हैं। कहाँ सूचना दूं?
1: तुम वैसी का हो ना?
3: जी।
1: बहुत कुछ सुना है तुम्हारे विषय में। सबसे पहले मैं अपने भ्रतृय से भेंट करूंगी, जो निश्चय ही अपनी माता के कक्ष में होगा।
3: राजकुमार तो इस समय उपमाता चंपा देवी के कक्ष में होंगे, महादेवी स्नान गृह में है। यदि आपके आगमन की पूर्व सूचना होती तो वो यहाँ स्वागत के लिए प्रस्तुत रहती। आप महादेवी की ओर ही पधारें, वहीं राजकुमार भी भगवती का वात्सल्य पाने आ जाएंगे।
1: महादेवी अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या उन्हें मदनोत्सव में नहीं जाना? क्या बात है?
3: कुछ समय से महादेवी अस्वस्थ अनुभव कर रही हैं। देवी सांध्यकाल वे शंखवात से पीड़ित रहीं। शिरशूल की औषध लेप करते हुए मैंने अनुभव किया कि उनका मस्तक बहुत तप रहा था।
1: वैसी के तुम चतुर हो, हम्म? तुम ये भूल जाती हो कि मैं भी अपने राज्य की महारानी रही हूँ, अब राजमाता हूँ। अंतःपुर के रोगों से मेरी पहचान पुरानी है। यूं महारानी के स्वास्थ्य के प्रति असावधान नहीं रहना चाहिए। तुरंत राज्य वैद्य को बुलाओ।

0: महाराज को उसकी सूचना है?
1: क्षमा करें भगवती, इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। मुझसे भूल हुई, महादेवी ने भी कोई आज्ञा नहीं दी थी।
0: मैं बाह्य कक्ष में हूँ, मुझे एकाएक महादेवी के सामने नहीं पहुँचना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? उन्हें सूचना दो और राजकुमार को यहीं ले आओ।
2: चंपा राजकुमार को लेकर प्रवेश करती है।
3: भगवती को दासी चंपा प्रणाम करती है।
0: यश मिली, प्रसन्नता मिली
3: जी।
0: लाओ राजकुमार को मुझे दे दो। देखो तो कितना सुंदर है मेरा भ्रातृ। अले ले ले। मुख छवि पूर्णतः पिता की है। भैया भी बचपन में ऐसे ही दिखते थे। चंपा तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ
3: जी।
0: कागल है भैया। प्यारा चंपा
3: जी,
0: सुना है तुम्हारी स्वामिनी अस्वस्थ है?
3: हाँ भगवती।
0: कब से?
3: कदाचित 2 या 3 दिवस हुए।
0: 2-3 दिवस? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कई बरस बीत गए हों।
3: भगवती,
0: तुम्हारी स्वामिनी की अस्वस्थता का कारण क्या है? नहीं वैसिका, तुम भी यहीं रहो, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा
3: जी।
0: तुम दोनों ही इस अंतःपुर की शुभचेता और संरक्षक हो। अंतःपुर के रोग प्रायः राज्य के लिए गंभीर हो जाते हैं। तुम महारानी के रोग के विषय में निश्चय ही जानती हो, और स्यात उसका कारण भी।
3: नहीं भगवती।
0: महाराज रात्रि कहाँ बिताते हैं?
3: निज कक्ष में।
0: केवल महाराज, अकेले?
3: प्राय मुझे स्मरण कर लेते हैं।
0: अन्य कोई, गुणवती अथवा गणिका?
3: नहीं भगवती, लौटे हैं जब से तब से कदापि नहीं। हाँ, निंद्रा में स्वप्न के बीच अस्फुट स्वर में 3 नाम सुनाई दिए हैं, शची, चारुमित्रा और महादेवी पिंगला।
0: चारुमित्रा, चारुमित्रा तो वही जनपद कल्याणी होगी, किंतु ये शची कौन है? ज्ञात है तुम्हें?
1: चंपा देवी नहीं जानती, किंतु मैं जानती हूँ देवी। गत प्रवास के प्रारंभ में महाराज कुछ समय सीमावर्ती ग्राम पैठार में रहे थे। शची वहीं के ग्रामीण की युवा पुत्री है।
0: उत्सव का आमंत्रण उसे भेजा गया है? सुना है चारुमित्रा को तो भेजा गया है,
1: किंतु चारुमित्रा से आप सम्मिलित नहीं हो रही। मैंने भी सुना है कि चारुमित्रा इन दिनों श्रेष्ठी नागदत्त के सेवाश्रम में हैं और किसी अभ्यास में संलग्न हैं। उनके ना आने का यही कारण बताया गया है। शची को बुलाने के लिए महामाते ने राजकीय शिविका पैठार भेजी थी, वो वापस आ गई।
0: क्यों?
1: वहां कहा गया कि हमारे यहाँ बेटी की विदा पाहुने के साथ होती है, सैनिकों शिविका के साथ नहीं।
2: तभी देवी मैनावती को अवंती आते हुए पैठार पर रुकने के दृश्य स्मृति पटल पर चित्रित होने लगते हैं।
0: ओह, समझ में आया। मैंने उस ग्राम बाला को देखा है वैसिका। यहां आते हुए हमारा पड़ाव प्रेतपुर के निकटवर्ती पैठार ग्राम में हुआ था। अर्निश, ये ग्राम युवती मेरी सेवा में रही थी, ग्रामीणी की पुत्री, किंतु उसने या उसके पिता ने किंचित भी संकेत ये नहीं दिया कि भैया से उनका कोई संबंध है। वैसिका
1: जी,
0: इस जानकारी से मैं आश्वस्त हुई।
1: भगवती की आश्वस्ति हमारी प्रसन्नता का विषय है।
0: मैं राजोचित कूट औपचारिकता से ये नहीं कह रही, ये मेरा विश्वास है कि पठार जैसे निष्पेक्ष स्वाभिमानी ही किसी राज्य का संबल बनता है।
2: तभी दूर से दासी सूचना देती है कि राज महिषी पधार रही है।
4: क्षमा चाहते हैं नंदाश्री, हमें आने में विलंब हुआ, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्रणाम स्वीकार करें।
0: सौभाग्य, संतति और समृद्धि से झोली भरी रहे। बैठो।
4: जी।
0: चंपा, तुम कुछ देर कुमार को संभालो। और वैसिका, तुमने तो प्राशन पान के लिए भी नहीं पूछा।
1: क्षमा भगवती, अभी प्रस्तुत करती हूँ।
0: मुझसे कुछ छुपाना नहीं पिंगला।
4: जी।
0: मैं तुम्हें असमंजस में नहीं डालना चाहती। महामात्य ने इसी कार्य के लिए मुझे संदेशा देकर बुलवाया है। वैसे भार्या और भ्रता के बीच अनेक बातें और प्रसंग गोपनीय होती हैं, और जिसका पति नरेश हो तो उसकी पीड़ाएं और अधिक गोपनीय होती हैं। किंतु यदि कोई व्रण विगलन उत्पन्न करने लगे तो उसे खोलना ही पड़ता है। भैया तुम्हारी सेज पर कितने समय से नहीं आए।
2: इस प्रश्न पर रानी पिंगला फूट फूट कर रोने लगती है।
4: नंदाश्री,
0: मेरे लिए यह जानना आवश्यक है पिंगला, तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए, इस कुल और राज्य के भविष्य के लिए, इसे छुपाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज परिवारों को कदाचित मैं तुमसे कहीं अधिक जानती हूं।
4: नंदाश्री, 2 वर्ष से अधिक का समय हुआ।
0: फिर ये कुमार
4: हमारा पुत्र है।
0: निश्चय ही तुम्हारा पुत्र है, राजा के अंश से उत्पन्न है, उसकी शिराओं में मेरे पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, तुम उसकी मां हो। यद्यपि उसे जन्म देने वाली कोख इस रहस्य को और कौन कौन जानता है।
4: हम, चंपा, महामात्य और वैसिका।
0: अब मैनावती भी जान गई। पुत्र पर भैया का स्नेह तो है।
4: राजभवन में संभवतः एक यही उनका स्नेह भाजन है।
0: तो राजा का पिंगला के प्रति संदेह का कारण क्या है।
4: नंदाश्री, संतान की कामना में हमने गढ़ कालिका का अनुष्ठान प्रारंभ किया था। प्रतिदिन काली के मंदिर में अनुष्ठान के लिए हमें जाना पड़ता था। तभी सुरक्षा टुकड़ी का एक नायक हमारा बहुत ध्यान रखता था। वो युवा सुदर्शन, बलिष्ठ और प्रसन्न वदन था। स्यात, मन ही मन उसकी सहानुभूति भी हमारे साथ थी, और यदा कदा हम भी उसके प्रति आत्मीयता व्यक्त करते रहते थे। उन दिनों नरेश की यौन लालसा अमर्यादित थी, और हमें लगता कि उनके द्वारा मदिरा और मदनिका के अत्यधिक सेवन से हमारी कोख हरी नहीं हो पा रही है। नरेश की अवहेलना ने हमें व्यथित कर दिया था। नंदाश्री, राजा ने हमें एक उपहार दिया, और हमने वो उपहार

0: जाने किस रोष या कोप के वश होकर उस नायक को दे दिया। नायक ने बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ उसे ग्रहण किया। दो दिन बाद हमारा अनुष्ठान समाप्त हो गया। उस नायक को उसके पश्चात अवंती में फिर कभी नहीं देखा गया। संभव है कि उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, संभव है कि
1: उसका जीवन ही समाप्त कर दिया गया हो। हाँ पिंगला, यही सर्वाधिक सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है। किंतु पिंगला, तुमने उस नायक के प्रति अनुराग प्रकट क्यों किया?
0: नंदाश्री, हम अपने अस्तित्व के अपमान से आहत थे। हमारे मन में एक प्रतिशोध का आक्रोश था। हम स्याद ही प्रदर्शित करना चाहते थे कि यदि ऐश्वर्य के भोग से साधन जुटाए जा सकते हैं, तो सौंदर्य के लिए भी साधन जुटाना कठिन नहीं होता।
1: मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी पिंगला, क्षमा करने की उदारता भी आवश्यक नहीं है। तुम्हारी प्रक्रिया स्वाभाविक थी, किंतु स्त्री के दायित्व उसे इतना अधिकार भी नहीं देते। यही उसका बंधन भी है। पिंगला, मैं तो मानती हूं कि स्त्री के बंधन के मूल में ना तो पुरुष है और न काल। इस श्रृंखला से वो एक ही संकल्प के साथ मुक्त हो सकती है।
0: अर्थात
1: स्त्री के बंधन का मूल है उसकी कोक। माना कि रति सुख नर और नारी दोनों के लिए काम्य है, किंतु पुरुष अपना भाग पाकर संतुष्ट और मुक्त हो जाता है और दायित्व नारी को सहेजना पड़ता है। स्त्री इस दायित्व से जीवन भर बंधी रहती है। मेरे पति बंग नरेश ने भी अपने स्खलन का दोष मुझ पर ही मढ़ दिया था। 6 पत्नियां होते हुए भी 160 और भी न जाने कितनी। जब व्यथा से बचने के लिए मैंने विरक्त होकर साधना के मार्ग में मुक्ति खोजना चाही, तो उन्होंने मेरे गुरु के साथ मेरा नाम जोड़कर मेरे चरित्र पर ही संदेह किया। ये सब भूलकर अपनी कोख से उत्पन्न गोपी चंद को मैंने पाला है। कोख का बंधन है ये।
2: भगवती, उपहार प्रस्तुत है।
1: सभा का समय भी हो रहा है, नरेश पहुंचेंगे वहां, हमें भी वहां चलना चाहिए।

अवंतिपति भगवान महाकाल आप सभी का कल्याण करें। राजा तो वही हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। मदनोत्सव के इस अवसर पर मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि काम और वासना यूं तो एक ही प्रतीत होते हैं, किंतु उनके बीच मर्यादा की एक सूक्ष्म रेखा भी है जिसे भुलाना नहीं चाहिए। कामदेव का संयोग केवल रति से होता है, भले ही स्वर्ग में अनेक अप्सराए हों। नदी उमग कर अम्बुदी की ओर भागती है, लता विटप का आश्रय लेती है, पशु और पक्षी अपनी अपनी प्रजातियों में युग्म बनाते हैं। सर्वत्र मर्यादाएं हैं, किंतु मनुष्य प्रकृति का अतिक्रमण करके अपने ही नियम बनाता है और उन्हें तोड़ भी देता है। आज का ये उत्सव प्रारंभ हो।

0: मुख से मर्यादा का आख्यान सुना?
1: सुना नंदाश्री। कहते कहते हमारी ओर ही देख रहे थे।
0: उत्सव की उद्दाम इंद्रिकता को देखो। मनोरंजन के लिए आयोजित नर नारियों का ये मेला नागरिकों में रोग बनकर बैठ गया है। दमित वासनाओं को उजागर करने का एक माध्यम। हे गुरु जालंधर नाथ, परम शिव महानाथ के नगर में काम का कैसा प्रसार है ये। जिसे देखो वही डूबा हुआ है। सब अधीर, सब चंचल। सुन रही हो पिंगला?
1: जी नंदाश्री, हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं।
0: पिंगला, मैंने अपने पति को नरक के रास्ते पर जाते हुए देखा है। पुत्र को उसी मार्ग पर चलते हुए नहीं देखना चाहती। काम कांतार में भटकने से बचाने के लिए ही मैंने उसे विवाह की मर्यादा में बांध दिया है। इस समय मैं उसके पास नहीं, अभी कुछ और समय बीतना है। प्रभु, गोपी को अपनी शरण, अपना संरक्षण प्रदान किए रहे।
2: भद्रजनों, अब आपके रंजन के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं यह प्रहसन।
3: अब हमें क्या करना होगा आर्य?
4: वही जिसे करने के लिए हमने जन्म लिया है। आर्य, इस महोत्सव में तुम किसे अनुग्रहित करोगी?
3: मूर्खा सरित्र, जानती ही हो तुम कि मूर्खता के लिए तुम मेरी प्रिय हो। नीतिकार कह गए हैं कि राजाओं और रानियों के निकटवर्ती मुंह लगे चाटुकार सेवक ही मूर्ख होना चाहिए।
4: आर्य, आपके इस कथन पर सभा मौन है, ना समर्थन और ना विरोध।
3: सब सद ब्रह्मज्ञानी हैं मूर्खे, वे जानते हैं कि वे चुप नहीं हैं। और कोई है जो चुप है, वो नहीं करते, कोई और करता है और लेता है, अर्थात मौन के माध्यम से ही वह मुझसे सहमत हैं।
4: तो फिर अनुग्रह कर डालिए, सभा में इतने सारे पुरुष तो हैं आर्य।
3: हाय, किंतु मुझे अपने योग्य इनमें से कोई नहीं दिखता।
4: कैसा पुरुष चाहती हैं आप? कवि चलेगा?
3: हाय हाय, चलती चिता में कूद जाऊंगी, पर कवि की भार्या नहीं बनूंगी।
4: क्यों?
3: सुहागरात श्रृंगार रस के छंद गाते गाते बिता देता है।
4: तो फिर राजा अथवा राजकुमार की खोज की जाए।
3: नहीं, राजा राज्यकार में ही जुटा रहता है और राजकुमार को आखिर से ही अवकाश नहीं मिलता। ऊपर से राजा संदेही होता है। कहो मधुवन में भ्रमर को मंडराते देख ले और चरित्र पर संदेह कर बैठे।
4: फिर तो केवल दास ही बचता है।
3: दास क्रय करने के लिए धन कहाँ है मेरे पास? तेरी उधर पूर्ति ही मुझे चिंता में डालती है।
4: तो फिर तुम्हारी कामना क्या है?
3: सत्य कहूं?
4: आपके सच और झूठ में कोई अंतर है क्या?
3: मैं तो किसी श्रेष्ठी को अनुग्रहित करूंगी।
4: श्रेष्ठी? कोई कारण?
3: इसलिए कि वो धन के लिए जीता है और धन के लिए ही मरता है।
4: धन से दाम्पत्य सुख मिलेगा क्या?
3: मूर्खा, सुख तो कैसे भी क्रय किया जा सकता है, धन से रूप बल सभी मिल जाता है। धन अर्जित करने श्रेष्ठी अपना सार्थवा लेकर परदेश चला जाता है महीनों महीनों के लिए, तब स्त्री स्वतंत्र और स्वच्छंद हो जाती है।
4: तो दूर की सोच रही हो आ रही है? कनक श्रृंगा में कोई इस योग्य है?
3: यही तो दुविधा है सखी, इस नगरी में ऐसा एक नहीं अनेक हैं।
4: तो चुन लो ना किसी एक को।
3: हाय, हम स्त्रियों को कैसे कुदिन आ गए हैं, मुझ जैसी रूपवती का अनुग्रह भी किसी को स्वीकार नहीं है।
4: कितना दुखद है ये। अब क्या करोगी, अब क्या

0: करोगी?
1: हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी।
2: दूसरी सुंदरी बनागण कुछ क्षण उसे विस्मित टुकुर टुकुर सा देखता रहा, फिर वह भी दोनों हाथ से अपना घांगरा पिंडलियों तक उठाए भागता हुआ पहले के साथ हो लिया।
3: महानुभावगण, एक आवश्यक सूचना सुने। किसी आवश्यक कार्य के कारण महाराज अधिक समय तक कुलसभा की शोभा नहीं बढ़ा पाएंगे, अतः अब केवल एक और प्रदर्शन होगा। यह है इंद्रजाल। महानुभाव, ये कलाकार महीनों की यात्रा करके महाकाल की पुण्य सलीला इस नगरी उज्जैनी में पहुंचा है। रसज्ञ दर्शकों के सम्मुख अपनी कला की प्रस्तुति के लिए देखें और आनंद लें।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 20वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार अरुण गीते, मैनावती दिव्या पवार, महामात्य अरशद इकबाल, वैसिका प्रमिला दिवाकर, चंपा अनुराधा, पिंगला कंचन राजानी, उद्घोषक राकेश जैमिनी, स्त्रीवेशी पुरुष अमित त्रिछारिया और पुरुष अजय सिंह पाल। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: आपको याद होगा कि राजा पैठार प्रेतपुरी देवी मणिभद्रा के क्षेत्र से होकर चंद्रपुर।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में कामिनी काय कांतारे, इस धारावाहिक का 20वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5 बजे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में और समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट

उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा में इस साल छात्राओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ई प्रवेश सत्र 2026-27 में हर 100 छात्रों पर 171 छात्राओं ने दाखिला लिया है, जिससे जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.71 पर पहुंच गया है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे। प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना ज़रूरी है, चार लोगों की फिक्र छोड़कर अपनी भी सुनना ज़रूरी है। नहीं समझेगा हर कोई हमारे इन ख्वाबों को, इसलिए खुद ही खुद की काबिलियत पर भरोसा करना ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया एक ऐसा विषय जो आज हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट और तकनीक ने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका हमारे भविष्य और देश के विकास से क्या संबंध है? इन्हीं दिलचस्प पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी सतत विकास और युवा की। जानेंगे कि सतत विकास क्या है, यह क्यों ज़रूरी है और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और हाँ, साथ ही सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्मी गीत और जानेंगे रोजगार सूचना। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए बिना देर किए ट्यून इन करते हैं आज के शाम का पहला गीत।

साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके मोबाइल में एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो सबसे पहले किस चीज़ की परेशानी होगी? शायद किसी को ऑनलाइन पेमेंट की, किसी को पढ़ाई की, किसी को ऑफिस के काम की, तो किसी को अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ने की। यही तो है डिजिटल इंडिया का असर, जिसने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य था तकनीक को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रखकर देश के हर नागरिक तक उसकी पहुँच बनाना, ताकि सरकारी सेवाएं हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हों या फिर बैंकिंग, हर काम आसान, तेज और पारदर्शी बन सके। आज हम घर बैठे बिजली का बिल भर सकते हैं, बैंक का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ट्रेन या बस की टिकट बुक कर सकते हैं और सरकारी दस्तावेज भी कुछ ही मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी पहले जिन कामों में घंटों लगते थे, वे अब कुछ क्लिक्स में पूरे हो जाते हैं। लेकिन साथियों, डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए, मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए और किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब हम जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो आइए, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले शानदार गीत की ओर।

साथियों, एक बात बताइए, अगर हमें अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना हो तो क्या सिर्फ आज का ही विकास काफ़ी होगा, या फिर ऐसा विकास ज़रूरी है जिससे आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। यही सोच हमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाती है। सरल शब्दों में कहें तो सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की ज़रूरतें भी पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से भी कोई समझौता ना हो। यानी विकास भी हो, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। साथियों, आज जलवायु परिवर्तन, जल संकट, बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार कम होना पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में सतत विकास हम सभी की साझा जिम्मेदारी है, और जब बात बदलाव की आती है तो युवाओं का नाम

सबसे पहले आता है। आज का युवा नई सोच रखता है, नई तकनीक को अपनाता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। चाहे पानी हो, बिजली की बचत हो, प्लास्टिक का कम उपयोग करना हो, पेड़ लगाना हो, स्वच्छता को बढ़ावा देना हो या लोगों में जागरूकता फैलानी हो, हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। यही नहीं, आज कई युवा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप और सामाजिक नवाचार के माध्यम से भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि विकास के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करेंगे और अपने छोटे छोटे प्रयासों से एक स्वच्छ, हरित और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब समय हो गया है अगले खूबसूरत गीत का।

साथियों, अब वक्त हो चला है रोजगार सूचना का। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी IBPS क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से देश के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में नियुक्तियां की जाएंगी। योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। आशा है आप इस जानकारी का ज़रूर लाभ उठाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, एक बार एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग माली से पूछा, बाबा आप ये पौधे क्यों लगा रहे हैं? इनके बड़े होने तक तो शायद आप रहेंगे भी नहीं। माली मुस्कुराया और बोला, मैंने भी तो उन पेड़ों की छांव पाई है जिन्हें किसी और ने लगाया था। अब मेरी बारी है आने वाली

पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ जाने की। साथियों, यही सोच सतत विकास की असली पहचान है। आज हम जो छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं, उनका लाभ सिर्फ हमें नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। चाहे एक पेड़ लगाना हो, पानी बचाना हो, तकनीक का सही उपयोग करना हो या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो आइए आज हम सब एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ऐसे काम ज़रूर करेंगे जिन पर आने वाली पीढ़ियाँ गर्व कर सकें। इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: तुझे सो छू तो फूट जाता।
1: साथियों, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर मुलाकात होगी नई जानकारी और मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम युवाणी और ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: ये देख कैसे
1: Happy birthday, भाई।
0: दीका? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: I know, ma. But खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
3: Saving करने की भी यही उम्र है।
4: I know, pa. Save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था जतिन ललित का।

कुमार सानू अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत सुना, जिसके लिए गीतकार थे समीर और संगीत था जतिन ललित का।

0: ये गीत था फिल्म डुप्लीकेट से, जिसके लिए आवाज़ थी उदित नारायण अलका याग्निक की। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डीवाई पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं और प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूं आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा

0: अभ्यारण्य, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा, सोमनी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
1: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
1: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
1: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी,
1: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी, तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
1: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओ क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओ क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
1: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
0: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
1: जी,
0: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
1: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
0: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
1: जी,
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
1: जी,
0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
1: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: जी,
1: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
0: जी,
1: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
1: जी,
0: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
1: जी,
0: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
1: जी,
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
0: जी,
1: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
0: जी, ये बहुत जरूरी है।

0: साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
0: जी,
1: एआई हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
0: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
1: बिल्कुल,
0: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी,
0: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCRT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
4: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। आजा, आजा, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
5: सर मैं इशिता।
6: मैं हूँ चेताली।
7: मैं शुभेंदु।
8: और मेरा नाम है इंदु।
9: और मैं सोमेश।
4: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
5: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
4: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
5: जी सर।

0: मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
1: सर, फिर क्या होता है?
2: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
3: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
2: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे,
4: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
5: वाह, कितनी सुंदर बात है।
2: अच्छा, एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
6: पौधा।
2: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
6: उल्टा?
2: हाँ, उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
0: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर, एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
5: जी सर।
2: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
5: रसपान कैसे करते?
2: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
5: जी सर।
2: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
5: अच्छा, अब समझ आया।
2: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
6: जी सर।
7: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं।
5: अरे, कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
8: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
3: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
9: देखो, इतना बड़ा पेड़।
0: अरे, उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
6: अरे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
7: और ये मशीन क्या है? चलो चलो, सर से पूछते हैं।
2: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
9: माइक्रोस्कोप?
2: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता, तुम इधर आओ बेटा। हाँ, देखो।
5: जी सर।
2: हाँ, देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ, आओ देखो। देखो बेटा, देखो इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है।
0: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलिया दिखाई पड़ रही है।
2: शाबाश।
9: हाँ, नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
5: मुझे भी देखना है। सर, मैं भी देखूं?
2: हाँ, आओ आओ।
3: मुझे भी देखना है।
2: देखो क्या दिखाई दिया?
3: इसमें तो बहुत सारी नलिया हैं।
2: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
6: पाइप?
2: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
7: अच्छा, तो ये बात है।
2: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
0: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
2: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
6: नहीं सर।
2: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता ले? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ।

0: माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
1: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
2: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
3: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
1: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
1: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
3: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
4: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
2: हम जिंदा नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
2: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
2: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
2: थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
5: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए।

0: बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ये था NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं चित्रपट संगीत।

बंटी और बबली, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में। गीतकार थे गुलजार और संगीत था शंकर एहसान लॉय का।

परिणीता फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम श्रेया घोषाल के स्वर में। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीत था शांतनु मोइत्रा का।

के और शान की आवाज़ में अभी आपने 10 इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे पंछी जालनवी और संगीत था विशाल शेखर का।

0: पार्टनर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शान श्वेता पंडित सूजी क्यू के स्वर में। गीतकार थे शबीर अहमद और संगीत था साजिद वाजिद का। और इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। चल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: इसी के साथ अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया।

0: इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए LPG और LNG की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल DY पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले आपको बता दें, इस सभा के शेष कार्यक्रम आज रात 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत, उर्दू कार्यक्रम कहकशा रात 9:30 पर, रात 10 बजे सुनिए एक बार फिर फिल्म संगीत, 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में चैताली शैवलीकर से राग यमन में वायलिन वादन। और अब आपको बता दें कल सुबह की सभा के कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह की सभा में आप सुन सकते हैं 7:21 पर दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा जो फिल्म संगीत पर आधारित होगा, 9:15 पर सुनिए सुगम संगीत में अश्विना रागनेकर से भजन, और 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति, 10 बजे सुनिए जिले की चिट्ठी, 10:05 पर होगा कार्यक्रम महिला संसार, 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आप सुनेंगे डीवी गौरे का राग अलैया बिलावल में वायलिन वादन।

और दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसी समय आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से में कामनी काय कांतारे इस धारावाहिक का 21वां भाग। महिला कार्यक्रम होगा दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 1:30 पर और सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 1:45 पर। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2 बजे और 2:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

हमारी शाम की सभा में आप सुनेंगे 5:02 पर कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा, 5:33 पर कल शाम 6:30 पर और रात 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत, 6 बजे सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, रात 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, 8:15 पर होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे कल 7:21 पर। इसमें होगी भेंटवार्ता सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन डॉक्टर मनोज तरवारिया से। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हो।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र में फिर हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े बड़े फैसले। कवच योजना समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मुंबई दौरा। ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेशकों से किया संवाद। और गायक किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष नीट पेपर लीक और जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने

0: सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है, जिनमें आतंकवाद, गैंगस्टर, आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ तस्करी, हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों के आरोपी शामिल हैं। सरकार ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच भगोड़ों की 17,874 रुपये की संपत्ति जब्त की गई और 18,762 करोड़ रुपये की राशि वापस हासिल की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी मिली, जिससे करीब 5,000 किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 2026 से 2031 तक 12,517 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये और मलेरिया नियंत्रण के लिए करीब 1,700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया,
1: जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना भी प्रारंभ हो रही है। जो सहायक शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक है और उच्च श्रेणी के या फिर माध्यमिक शिक्षक, इनको 30 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में पहले से ही चौथा समयमान वेतनमान प्राप्त उनको हो रहा है, इसलिए जनजाति कार्य विभाग में भी 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूर्ण करने पर चौथे क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रस्ताव रखा गया है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों की पहली रोड शो और निवेशक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से सीधे संवाद कर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान देश की कई प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
3: बदलते दौर में राज्यों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि सभी प्रकार के अनुकूलता के अवसरों को यथार्थपरक योजनाओं के बलबूते पर उनको भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए राज्य को नंबर वन के राज्य में ले जाएं। तो आइए हम सब मिलकर के आज के इस अवसर का लाभ लें।
0: स्वर सम्राट किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे दिन समाधि परिसर में उनके सदाबहार गीत गूंजते रहे और संगीत प्रेमियों ने उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। समाधि स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। अब से कुछ देर बाद किशोर नाइट का आयोजन होगा, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी प्रस्तुति देंगे। दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा में मंथन तेज हो गया है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवास पर हुई बैठक में हार के कारणों और भीतरघात की शिकायतों पर चर्चा हुई। भाजपा ने हार की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है, जो जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री 31 अगस्त तक हितग्राहियों को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक राशन का 100% उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर भंडारण पूरा किया जाए। अंत्योदय योजना के परिवारों को 35 किलो और प्राथमिकता के परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य राशन दिया जाएगा। दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को 1 किलो नमक भी मिलेगा। राशन वितरण के समय POS मशीन में 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। राशन परिवहन की GPS से निगरानी होगी और गड़बड़ी मिलने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा एयरपोर्ट पर 9 अगस्त से नई विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। अब रीवा से कोलकाता और भोपाल के लिए 72-सीटर विमान उड़ान भरेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात कर शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नई उड़ान सेवाओं से विंध्य क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का राजा स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं रिमझिम बारिश के बीच समर्पण कांवड़ यात्रा निकली, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। त्रिवेणी घाट से शुरू हुई यात्रा में भक्त माँ शिप्रा का जल लेकर महाकाल मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले चार दिनों से प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है और ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बादल छाए रहने या हल्की बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 से 14 अगस्त तक रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ के जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। अशोकनगर जिले की आदिवासी बस्ती बमनावर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज बाल चौपाल का आयोजन किया गया। राजगढ़ में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन 9 अगस्त को किया जाएगा। मंडला में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आगरमालवा जिले में 7 अगस्त से विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: पढ़ाई छूट गई, अब चिंता छोड़िए।
1: MPSOS के साथ 10वीं 12वीं की पढ़ाई घर बैठे, अपने मनपसंद विषय चुनिए, साल में दो बार परीक्षा का अवसर।
0: चाहे नौकरी हो या घर की जिम्मेदारी, अब नहीं रुकेगी आपकी पढ़ाई। तो आज ही अपने नजदीकी आईसेट कियोस्क सेंटर पर पंजीयन कराएं, अपने पसंदीदा विषय चुने और MPSOS परीक्षा की तैयारी शुरू करें। आवेदन की अंतिम तिथि 31

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। हमारे सभी श्रोता और कृषक भैया बहनों को दो ही हाथ जोड़ के राम राम। हम हैं अमृता जैन, आज की ई किसान वाणी कार्यक्रम में आपकी अपनी साथी। भैया बहनों, किसान वाणी कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आकाशवाणी भोपाल केंद्र से संजा के 7:30 से 8 बजे तक प्रस्तुत करो जय है जी में हम बातें करेंगे खेती किसानी की तथा मौसम की और ऐसी बातें जो हमारे कृषक भैया बहनन के लाने लाभकारी हों। कार्यक्रम में बातें हुई हैं जो आपके लाने अत्यंत महत्वपूर्ण हो तथा संगे संगे जो सरकारी योजनाएं हैं और अन्य खेत खलिहान से जुड़ी सभी चर्चाएं हम अपने कार्यक्रम किसान वाणी में करेंगे। तो भैया बहनों, जब आज के ये अंक में आप सबसे जुड़ गए हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृषि में सेंसर तकनीक पे। आज हम सब देख रहे हैं कि खेती करवे के लाने हमें केवल मेहनत नहीं करने हैं बल्कि सही तकनीकों को अपना के आधुनिक व सटीक खेती करने हैं जिसे हमारी कृषि उन्नत बने और ऐसी ही तकनीक है कृषि में सेंसर तकनीक। अब बात करें कि जब तकनीक के द्वारा हम कैसे लाभ ले सकते हैं और का का फायदे हैं तो हम आप लोगों को बता दें ई तकनीक के द्वारा हम मृदा में नमी और तापमान कैसो है ई की जानकारी ले सकते हैं। हमारी मृदा में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है ई की जानकारी हमें मिलत है जिसे हम इन जानकारी के माध्यम से आवे वाई जो हमारी फसल है वह हमें कौन सी लगाने हैं और इन पोषक तत्वों के आधार पे कौन सी फसल है जो हमें उन्नत और अच्छी आय देगी जा हम जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब फसल अच्छी हुई है, लागत कम हुई है, खेत लहलहाएंगे तो हमारे कृषक भैया बहन तरक्की करेंगे, उन्नत बनेंगे। अब भैया बहनों बात करें जा तकनीक काम कैसे करते हैं। तो भैया बहनों, कृषि सेंसर तकनीक के कछु प्रकार हैं जैसे कि मृदा सेंसर, मौसम सेंसर और फसल सेंसर। ये तकनीकें कृषकों को कब पानी और खाद देने हैं जो बताते हैं। हम यदि इन अलग अलग सेंसरों के बारे में बात करें तो भैया बहनों, मृदा सेंसर से हम मृदा की नमी और आर्द्रता नाप सकते हैं जिसे हमें कब सिंचाई करने हैं ई की हम सही योजना बना सकते हैं। इसके अलावा मौसम सेंसर से हम हवा की नमी, तापमान और वर्षा व मौसम के बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। और यदि बात करें हम फसल सेंसर की तो इसे पौधों की बीमारी और वृद्धि पे नजर रखी जा सकते है। मतलब कि जो कहें कि ई तकनीक से पानी को सही उपयोग होते है, पोषक तत्वों व खाद की कितेक मात्रा हमें खेतों में डालने हैं जो हमें पतो लगते हैं और फसलों की अच्छे से देखभाल भी होते हैं। तो इस तकनीक के बारे में यदि आपको और जानकारी लेने हैं तो आप नजदीकी कृषि केंद्रों पे जाके जानकारी ले सकते हैं। अब भैया बहनों, अपन बात जब हम तकनीकों की कर रहे हैं तो हमें जो भी देख रहे हैं कि हमारे कई कृषक भैया बहनों ने सोयाबीन फसलों की बुवाई करी है और अबे जो सावन को मौसम जो वर्षा ऋतु चल रही है इको देखत भए हमारी फसलों पे कई कीट व अन्य समस्याएं आ सकत हैं। तो चलो आज जानत है कि कैसे सोयाबीन फसल में समन्वित कीट व व्याधि प्रबंधन करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं और ई के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र पाटिल और उनसे भेंट कर रही हैं हमारी बहन पूनम सरावगी। तो सुनत है जा भेंट वार्ता।
4: हमारे किसान भाई बहनों ने अपने खेत में सोयाबीन की बुआई कर दी है। पौधे इस समय फूल आने की अवस्था में हैं। ऐसे में सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके लक्षण पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों की संख्या को आर्थिक रूप से क्षति स्तर के नीचे रखना आवश्यक है। इसके लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन सी हम विधियां अपना सकते हैं, इसी विषय पर हमने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर देवेंद्र पाटिल को। आप कृषि विभाग भोपाल में स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
5: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
4: सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन एवं व्याधि प्रबंधन क्या है और इसका क्या महत्व है?
5: सोयाबीन फसल में अगर हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की बात करें तो आम तौर पर किसान साथी केमिकल या पेस्टिसाइड दवाइयों का उपयोग करते हैं
4: जी।
5: पर जब हम कीट एवं रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो उसकी तीन

0: चार प्रकार की जो विधियां होती है उनको अगर हम एक साथ प्रयोग करके कीट या बीमारी नियंत्रण के लिए करते हैं तो हम उसी को समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करते हैं, जिसमें भौतिक क्रियाएं होती है, मैकेनिकल कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, और अंत में जो साइन पर जाने की बात आती है। तो इसी विषय में आज हम किसान साथियों से बात करेंगे कि हम सर्वप्रथम हमारी जो जैविक विधियां होती है कीट नियंत्रण की या बीमारी नियंत्रण की, उनका पहले हम उपयोग करें, और परिस्थिति अगर ऐसी हो कि अगर हमारी जैविक विधियों से या कल्चरल जो हमारी विधियां हैं उनसे अगर कीट नियंत्रित नहीं हो रहे हैं तो अंत में जो अनुशंसित की गई कीटनाशी है हम उनका उपयोग करें। तो इसी को हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आज सिर्फ रासायनिक दवाइयों से अगर कीटों को नियंत्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है, हमारे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण की सुरक्षित रखने के हिसाब से भी हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की बात करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और उनकी पहचान हम कैसे करें?
0: देखिए, सोयाबीन की फसल कीट एवं रोगों के प्रति बहुत ही सेंसिटिव फसल होती है, और जब फसल अंकुरित होता है तब से ही इसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप चालू हो जाता है, खास तौर पर जब ये सोयाबीन 15 से 20 दिन या 25 दिन की अवस्था पर पहुँचता है।
1: जी,
0: तो उस समय इसमें तना मक्खी, सफेद मक्खी कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे ही हमारी सोयाबीन की फसल जैसे बढ़ती है, उसके बाद सेमिल ऊपर एक इल्ली होती है, इल्ली का प्रकोप होता है, उसके बाद अलसी की इल्ली होती है तो अलसी की इल्ली भी सोयाबीन में देखने को मिल रही है, इसके अलावा तंबाकू की इल्ली, तो ये तमाम प्रकार के जो कीट हैं ये हमें सोयाबीन की फसल में देखने को मिलते हैं।
1: जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तना मक्खी और चक्रभ्रंग सोयाबीन को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: जैसे आपने बताया, तना मक्खी एवं गर्डल बीटल को ही हम चक्रभ्रंग कहते हैं।
1: जी,
0: तो ये दो बहुत ही मुख्य कीट है सोयाबीन की फसल में, और ये दोनों कीट फसल की शुरुआती अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले तना मक्खी की बात करता हूँ। तना मक्खी का जो कीट होता है तो इसकी खी ना होके इसकी सबसे पहले एक छोटी सी इल्ली होती है, बहुत बारीक महीन होती है, पीले कलर की होती है, यह तने के अंदर सुरंग बनाकर तने के अंदर रहती है और वहीं पर अपना जीवन चक्र पूरा करती है, अंदर ही अंदर अंडे देके अंडे से इल्ली बनती है और वहीं पूरे तने को खोखला कर पूरे पौधे को सुखा देती है, जिससे कि हमारा जो है पौधा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम गर्डल बीटल की बात करें तो गर्डल बीटल चक्रभ्रंग पौधे के अंदर दो प्रकार की कट बनाता है, रिंग बनाता है ऊपरी सिरे पर, और ऊपरी सिरे से रिंग बनाकर पौधा वहां से मुरझा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा पौधा धीरे धीरे जो है कि इसमें गर्डल बीटल में भी सूख जाता है। तो अब इसको हम इस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं कि सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो हमारी सस्य क्रियाएं होती है या हमारी बायोलॉजिकल विधियां होती है, इनका हमें सबसे पहले इनके प्रबंधन की बात करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जब बीज बोने की बात करते हैं तो बीज हमारा जो है कि स्वस्थ बीज होना चाहिए, कीट एवं रोग से मुक्त होना चाहिए, ऐसे बीज का चयन करें। इसके साथ ही साथ बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर शुरुआती अवस्था में अगर हम बीज को उपचारित कर देते हैं तो बाद में कीट एवं रोगों से हम हमारी फसल को मुक्त कर सकते हैं। स्टिकी ट्रेप अगर हम 1 एकड़ में 6 से 8 स्ट्रिप्स लगा दें तो उसपे क्या होता है कि पीले कलर की स्ट्रिप्स जो होती है तना मक्खी और सफेद मक्खी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, और उस पीले कलर पर अट्रैक्ट होकर उस ट्रेप पर जाके बैठ जाती है। तो अगर हम ऐसे 1 एकड़ खेत में अगर 6 से 8 स्ट्रिप्स लगाते हैं तो हमारे सोयाबीन की फसल में जितने भी सफेद मक्खी है या तना मक्खी है तो उस पर आकर बैठेंगे, तो इस प्रकार से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में अगर इनसे भी अगर हमारा तर नहीं हो रहा है तो जो अनुशंसित की गई दवाइयां हैं जिसमें थायमेटोक्सम प्लस लेम्बड़ा साइलोथ्रिन की 50 ml मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करें, या फिर बीटा साइप्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड की 140 ml मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करें, या फिर आइसोसाइफ्लोसोरम की 200 ml मात्रा प्रति एकड़ करें, इनमें से किसी एक दवाई का उपयोग करके तना मक्खी एवं गर्डल बीटल चक्रभ्रंग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
1: सर, ये बताइए तंबाकू की इल्ली और सेमी लूपर से सोयाबीन को क्या नुकसान होता है और इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: जब हमारी फसल फूल के बाद वाली अवस्था में जैसे ही पहुंचती है तब सेमी लूपर और तंबाकू की इल्ली का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी सोयाबीन की जो फसल में जो पत्तियां होती है पत्तियों को खाती है, और उसके बाद जब फली में दाना बैठने लगता है, दाना आने लगता है, तो उस समय दाने को भी खाती है। तो इस प्रकार हमारी सोयाबीन की फसल को ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। और और इनके नियंत्रण के लिए हम अगर बात करें कल्चरल विधियों में, तो किसान साथियों को इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अपने खेतों में कराना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा फेरोमेन ट्रैप आता है जो कि जैविक विधियों के अंतर्गत

0: हम उसका उपयोग करते हैं। फेरोमोन ट्रैप में अलग अलग जब हमारी इल्लियां होती है उसका अलग अलग लेयर मिलता है, तो ऐसे ही अगर एक एकड़ में हम 4 से 6 फेरोमोन ट्रैप अगर हम लगा देते हैं तो इल्ली बनने के पहले की जो उनकी अवस्था होती है फ्लाई रहती है, तो मक्खी उस फेरोमोन ट्रैप में अट्रैक्ट होके एक जगह उस इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे पूरे खेत में अगर हम लगाते हैं तो इस प्रकार से भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें अगर इससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हम अनुशंसित जो कीटनाशी उन पर जाएं। इसके साथ ही साथ हम अपने खेत में किसान साथी इसमें टीब आकार की जो खुटियां होती है उनको भी अगर हम खेत में 8 से 10 खुटियां प्रति एकड़ अगर लगा देते हैं तो जो पक्षी होते हैं पक्षी उस टी आकार की जो खुटियां होती है उस पर आकर बैठेंगे और उनको जो इल्ली दिखती है तो इल्ली को खाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी सर, ये बताइए सोयाबीन में सफेद मक्खी से हमें क्या नुकसान होता है और इसका पीला मोज़ेक रोग से क्या संबंध है?
0: सफेद मक्खी शुरुआती अवस्था से ही सोयाबीन या अन्य फसल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसमें पत्तियों से रस चूसती है और रस चूसने के उपरांत जो उसका क्लोरोफिल होता है पौधे के पत्तियों में खत्म हो जाता है और पौधा पीलेपन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे को पूरा पीला कर देती है रस चूसकर सफेद मक्खी। और जब हम इसकी संबंध की बात करें मोज़ेक रोग से, तो मोज़ेक फैलाने का काम भी क्या करती है सफेद मक्खी करती है, क्योंकि मोज़ेक जो बीमारी है यह वायरस से होती है वो, और वायरस फैलाने का जो काम करता है वो सफेद मक्खी करती है, क्योंकि एक पौधे से अगर उसने रस चूसा और वहां पर उस वायरस मोज़ेक अगर बीमारी से ग्रसित है पौधा तो वहां से वो दूसरे पौधे पर जब जाएगी तो वहां का जो मोज़ेक वायरस है वो दूसरे पौधे पर ले जाके छोड़ेगी। इस प्रकार ये मोज़ेक रोग से इसका सीधा सीधा संबंध है।
1: जी सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पीला मोज़ेक का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: पीला मोज़ेक बीमारी का जो प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसमें हम हमारा जो बीज का चयन करते हैं वो स्वस्थ बीज होना चाहिए, बीज रोग रहित होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम बुआई करते हैं तो बुआई जब करते हैं तो कई किसान साथी आवश्यकता से अधिक बीज दर का उपयोग करते हैं या बुआई की दूरी है वो बहुत पास कर देते हैं, तो जो खेत के अंदर पौध संख्या होती है वो आवश्यकता से अधिक होती है, तो हम जो अनुशंसित की गई बीज दर है उस बीज दर के अनुसार बुआई करें, जो अनुशंसित की गई बुआई दूरी है हम उसी बुआई दूरी के अनुसार बुआई करें। इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया था कि हम फेरोमोन इसका एलो स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें और इसके साथ ही साथ जो अनुशंसित की गई जो दवाइयां हैं जैसे मैंने पूर्व में बताई थी कि थायमेटोक्सामपस लेमड़ा साइलोथ्रिन या बीटा साइप्लोथ्रिन प्लस इमिडा क्लोप्रिट, इन दवाइयों का अगर हम इसमें स्प्रे करते हैं तो इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कॉलर रोग का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: कॉलर राइड बीमारी जब बुआई होती है उसके करीब 8 से 10 दिन के उपरांत ही हमें खेत में देखने को मिल जाती है। पौधा जर्मिनेट होकर जैसे बाहर निकलता है तो जिस लाइन में हमने सोयाबीन का बीज बोया था उसी लाइन में क्रमशः हमें पौधे सूख के गिरते हुए देखने को मिलते हैं। ये इसका प्रमुख लक्षण है कॉलर राइड का और ये मुख्यतः शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। तो इसका सबसे सटीक जो उपचार है या सटीक अगर प्रबंधन है तो वो है बीज उपचार, क्योंकि अगर किसान साथी इसका बीज उपचार सही ढंग से या सही तरीके से करते हैं तो यह जो कॉलर राइड बीमारी देखने को नहीं मिलती है। अगर उसके बाद भी अगर हमें देखने को मिलता है इस बीमारी के लक्षण तो एक फफूंदनाशी जो होता है कार्बेंडाजिम, तो इसकी 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर से अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो कॉलर राइड को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी सर, चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोयाबीन में कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि किसान साथियों को जानना बहुत आवश्यक है कि हम जो भी कीटनाशी या फफूंदनाशी या अन्य दवाएं चाहे खरपतवार नाशी हो जब भी हम इनका उपयोग करते हैं तो इसके साथ जो पानी की मात्रा है उसकी भी अनुशंसा की जाती है, क्योंकि कई बार हमें ये देखने को आता है कि कई किसान साथी अनुशंसा से कम पानी की मात्रा का उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में हमारी फसलों पर उस दवाई का विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमारी फसल जो किसान साथियों की जो फसल होती है उस पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे फसल जलने लगती है या सूखने लगती है। तो ये सब चीजें ना हो उसके लिए किसान साथियों को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो अनुशंसित की गई पानी की मात्रा है 100 से 150 लीटर प्रति एकड़ मात्रा पानी की उपयोग होना चाहिए, और जो दवाइयां हैं कीटनाशी है या फफूंदनाशी उनकी दक्षता या उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जो अनुशंसित किया गया नोजल है होलोकोन नोजल का उपयोग करें। होलोकोन नोजल मतलब बहुत बारीक फुहार वाला नोजल होता है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो हमें इन दवाइयों का जो हम उपयोग करना चाह रहे हैं तो उसके हमें बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और उसकी जो दवाइयों की उपयोग क्षमता या दक्षता है वो भी हमें अधिक देखने को मिलेगी।
1: तो सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी आपने

0: हमारे श्रोताओं को दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान श्रोता अपने सोयाबीन की फसल को बेहतर बनाने में इस जानकारी का अवश्य इस्तेमाल करेंगे। आप हमें जानकारी दे रहे थे सोयाबीन की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन इस विषय पर। डॉक्टर पाटिल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भैया बहनों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो भैया बहनों देखो, अब अपन ने जानी सोयाबीन फसल में समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन की जानकारी डॉक्टर देवेंद्र पाटिल से, जिनने बहुत अच्छे से हमें सभी बातें बताई हैं, और उनसे भेंट कर रही थी हमारी बहन पूनम सरावगी। उम्मीद है डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लाने लाभकारी रहे है, और आप सभी इन बातों को ध्यान रख के अपनी खेती में जो कीट व रोगों के जो भी प्रकोप हो रहे हैं उनसे बचाव हेतु सही उपाय करेंगे। अब भैया बहनों देखो, अपनी चर्चाएं हो रही हैं, भेंट वार्ता सुन रही, और आप सोच रहे हुई हो कि अमृता बहन जानकारी तो बड़ी नौनी दे रही हैं, मनो कछु मनोरंजन हो जाए तो आनंद ही अलग हुई है। सो भैया बहनों, हम भी जई बात सोच रहे हैं, चलो तो सुनत है एक सावन गीत। जी ये गाँव है दया भार्गव और उनकी साथियों ने।

0: टाइफाइड, दस्त, उल्टी और पेट से जुड़ी अनेक समस्याएं बहुत जल्दी से हो जाते हैं, और यदि हम साफ जल को उपयोग करेंगे तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो हम तो जो ही कहेंगे कि पानी को उबाल लें और अच्छे से ठंडो करें, फिर यदि हम इको उपयोग करते हैं तो जल हमारे लाने अत्यंत लाभकारी हुई है। अच्छा भैया बहनों, बात हमने अपनी करी कि हमें स्वच्छ जल पीने हैं, मानो हमारे पशु हैं जो हमारे बाड़े में बंधे हैं, जो हमारी गौशालाओं में हैं, उनके लाने भी हमें स्वच्छ जल की व्यवस्था करने हैं जिससे कि बेबी स्वस्थ रहें। और भैया बहनों कथ है ना, पहलो सुख निरोगी काया, तो स्वच्छता से जुड़े और स्वच्छ जल ही पिए। अबे हम जो चर्चाओं के माध्यम से जो फसलों की बातें कर रहे हैं, तो हमारे कई कृषक भैया बहन ऐसे भी हैं जो बागबानी फसलें लगावे की सोच रहे हैं या लगावे को उन्हें प्रबंधन भी कर लो हुई है। तो आज हम डॉक्टर कुंवर जी सिंह से जानेंगे कि बागबानी फसलों में सामायिक कार्य कैसे करने हैं, कौन कौन से करने हैं, इस विषय पे भी आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सुनते हैं उनकी जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज बात करेंगे बागवानी ध्यान की फसलों के लिए सामूहिक सलाह। देखिए किसान भाई, आप भी जानते हैं कि रोपाई द्वारा लगाई जाने वाली जो भी बागवानी फसलें हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी के लिए नर्सरी की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए हमें 3-3.5 मीटर लंबा और करीबन 1.5 मीटर चौड़ा और जमीन से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनानी चाहिए। और खास तौर से इन सब्जियों के, जो टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी की हम बात किए हैं, इनके संकर किस्मों की जो मात्रा आती है 10 ग्राम प्रति क्यारी के दर से हम बीज लगाते हैं। और 1 हेक्टेयर के लिए इस तरह से अगर टमाटर की नर्सरी तैयार करना है तो 15 क्यारी लगेंगी टमाटर के लिए, बैंगन के लिए करीबन 20 क्यारियां की जरूरत पड़ेगी और गोभी के लिए करीबन 30 क्यारियों की आवश्यकता होगी। इस समय नींबू फसलों में फल जो बढ़ रहे हैं, जो है काम के टिकोड़े के बराबर, या कहना चाहिए कि बड़े बड़े नींबू के फल लगे हुए हैं, वो उस समय गिरते हैं। तो इनको गिरने से बचाने के लिए हमें तो 1.5 ग्राम 2,4-D या इसी के बराबर जिब्रेलिक अम्ल आता है, यानी दोनों में से कोई भी एक 2,4-D या जिब्रेलिक अम्ल जो है 1.5 ग्राम लगेगा, और 100 ग्राम कार्बेंडा जिम, ये फफूदनाशक है, ये 100 ग्राम, और 1 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो नींबू के जो फल गिरने की जो शिकायत है ये कम हो जाएगी और हर तरह से उसमें बीमारी और कीड़ों का प्रकोप भी कम रहेगा। इस समय हम देख रहे हैं कि आम के पेड़ों पर बगीचे लगाए हैं उसमें एक बंधा रोग है जिसको हम अंग्रेजी में माल फॉर्मेशन कहते हैं। ये आप लोग भी पहचानते हैं, जहाँ उसका जो गुच्छा बनता है, जहाँ आम के जो, तो वो गुच्छे में ही वो एक माइट होता है, कीड़े के बराबर है। हालांकि हम लोग कीड़े के ही नाम से जानते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में उसको हम माइट बोलते हैं, जिसको मकड़ी के कट ग्रुप में आता है। इसके जो ग्रसित हो जाती हैं तो पौधे दूसरे टहनियों में भी फैलाता है उस कीड़ के द्वारा, जिसको कि हम माइट बोलते हैं। या तो ऐसे जो ग्रसित पौधे हैं इस समय, उसको जरूर आप रोग ग्रसित जो शाखाएं हैं या फूलों को है जो काट करके उसको अलग कर दे। नींबू वर्गी में आप लोग भी जानते हैं, इस समय नींबू की तितली, खूब रंग बिरंग की तितली उड़ती है, वो अंडे रखती है और अंडे से ही एक इली निकलती है जो पत्ती को खा जाती है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि चिड़िया ने बीट कर दिया, बीटता है, लेकिन वो इली है और वो इली मुलायम पत्तियों को खा करके बहुत नुकसान करती है। क्लोरोपाइरीफास भी जानते हैं, 25 cc का, ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़क देंगे तो इसका नियंत्रण होगा। किसान भाई, आप भी बहुत कुछ समझदार हैं और जानकारी रखते हैं, अनुभव है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी समस्या से आप राहत पा सकते हैं।
0: ई बागबानी फसलों में सामायिक कार्य विषय की जानकारी के बाद हमारे जो सभी भैया बहन हैं उन्हें महत्वपूर्ण कृषि सलाह दी जा रही है। आपने यदि अपने खेतों में सोयाबीन, धान व अन्य खरीफ फसलें लगाई हैं तो अपनी फसलों की निगरानी करें व ध्यान रखें कि उनपे कोई भी तरह के कीट व रोगों को प्रकोप न हो पाए, और यदि ऐसे कछु प्रकोप देखवे मिलत है तो मौसम साफ हो तो ऐसे में जैविक उर्वरक और कीटनाशकों को उपयोग करें। अपने भैया बहनों को हम और बता दें कि यदि आप अपनी फसलों को अधिक पैदावार देके बढ़ावो चाहते हैं तो आप फसल चक्र अवश्य अपनाएं। तो जाहती खेती किसानी से जुड़ी आज की सलाह। और भैया बहनों, अब किसान वाणी कार्यक्रम में आज ते कई आपको आज

0: कार्यक्रम कैसो लगो और हमें का कछु नव अपने कार्यक्रम में करने चाहिए, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पतो लिख लें, किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। भैया बहनों अब ले रहे हैं आप लोगन से विदा, आप सबको ये चलती विरिया अमृता बहन की राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का
2: पुतला बोल रहे।
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जाँच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविण मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा

सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासन, UPPL के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया।
अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शन

0: सरकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए MSME विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य 20 वर्ष पुराने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान प्रणाली में विलंब दूर करना और विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: धन्यवाद।
3: दिलीप जी, ये जो बिल आया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे आंकते हैं पूरे MSME सेक्टर में मजबूती बढ़ाने के लिए? और इसी संदर्भ में अगर आप हमें ये भी बता सकें कि जो MSME सेक्टर है उसका हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है?
4: धन्यवाद। अगर आप देखें तो पहले वो करीब 31% जो है देश के GDP को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा अगर आप देखें तो 48.5% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर देखें खास तौर में तो 35.4% जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो भी MSME सेक्टर के द्वारा एक शेयर है। और सबसे ज्यादा एक लगभग 40 करोड़ व्यक्ति MSME में एम्प्लॉयड है और ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा श्रेय है। ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर संक्षेप में बताऊं कि इकोनॉमी में क्या है, ये चार आंकड़े हैं, जीडीपी का 31%, मैन्युफैक्चरिंग में जो है और 39.6% ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये अगर आप देखें और 48.5% एक्सपोर्ट्स, तो ये आंकड़े हैं।
3: तो इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है हमारी अर्थव्यवस्था।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी में। और आपने इसी जुड़ा हुआ सवाल था कि ये जो बिल लाया गया है और जो राज्यसभा ने इसको पास किया है,

0: इसकी क्या महत्वपूर्ण है इस पूरे होल सेक्टर में? तो जो एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर बेशक गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स में करें या कुछ भी करें, वो है डिलेड पेमेंट। तो ये डिलेड पेमेंट के लिए कई साल पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम किया था, ट्रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसको हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म करते हैं। उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने पहले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। अभी उन्होंने जो भी कंपनी 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर में है वो वहां पे रजिस्टर करना जरूरी है। और जितने भी एमएसएमईज के जो बिल्स हैं, जो उनके सप्लाईज हैं, वो बिल्स जो एमएसएमईज उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लार्ज कंपनी है और मैंने आपको 1,000 रुपए का सामान दिया है, तो मैं 1,000 रुपए का बिल अपलोड करूंगा और उसके बदले थोड़ा से पैसे वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म रखेगा, बाकी मुझे कर देगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का। और इसके अंतर्गत जो ये जो बिल में जो संशोधन लाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: सो जैसे आपने कहा कि कोई भी एमएसएमई होता है उनके लिए जो पेमेंट समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है, लिक्विडिटी उनकी जो फ्लो बना रहे वो बहुत जरूरी होता है। सो आपको लगता है कि जो ये नया अमेंडमेंट बिल आया है, ये पुराने जो एक्ट था 2006 का 20 वर्ष पुराना, उसमें जो बदलता परिवेश है उसके मुताबिक संशोधन करके लिक्विडिटी फ्लो को ज्यादा स्मूथ करेगा?
0: बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। देखिए, एक तो पहला जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इस बिल का जो सारा जो फोकस है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस पे है। ट्रेड्स अभी प्लेटफॉर्म ही एक नया ही प्लेटफॉर्म है, उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर होता है। उसमें जो है वो एमएसएमई का ट्रांजैक्शन का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो ये डिलेड पेमेंट्स जो एमएसएमई को कैपिटल ब्लॉक करता था उसको एड्रेस करता है, क्योंकि उनको बस पैसे नहीं होते थे, वो मार्केट से पैसा लेते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे। और सबसे बड़ा जो संशोधन आया है इस बिल में, वो जो अगर डिस्प्यूट हो जाता था तो वो नॉर्मल कोर्ट के प्रोसेस में सालों लगते थे एक लीगल प्रोडक्शन के लिए, तो 4 जो है और कैश फ्लो का जो पूरा परिस्थिति पैदा हो जाती थी क्योंकि पेमेंट्स ब्लॉक हो जाते थे। तो इन 4 चीजों को सॉल्व करने में एक ये बहुत बड़ा कदम है।
1: तो जैसा आपने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी विवाद है उसका समाधान, उसमें बहुत समय लगता था, तो अब जो टाइम बाउंड उन्होंने बताया है, साइकिल बताई है कि पहले मध्यस्थता होगी, मीडिएशन होगी जो 90 दिन के अंदर खत्म होनी है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो 30 दिन में अपील मैक्सिमम, और फिर 90 दिन में आर्बिट्रेशन। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो 3 स्टेजेस हैं, ये किस तरह से एक जो कॉमन एमएसएमई ओनर है, एक मान लीजिए एक माइक्रो एंटरप्राइज का ओनर है, वो कैसे इन स्टेजेस को समझे?
0: तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और अगर आप देखें तो कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो सबसे कम जो खर्चा होता है और सबसे कम टाइम में जो रेजोल्यूशन हो सकता है वो मीडिएशन द्वारा, और वो एक उसमें लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आप आपस में बैठ करके एक मीडिएटर के द्वारा बैठ करके आप अग्री कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ने मीडिएशन अग्रीमेंट को अग्री कर
1: दिया, कोर्ट से बाहर
0: मीडिएशन सेंटर्स कोर्ट्स के साथ भी लगे हुए हैं, जैसे अगर दिल्ली में तो हर कोर्ट के साथ लगा हुआ है, तो वो मीडिएशन अग्रीमेंट अगर साइन करते हैं तो वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर जो लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मीडिएशन में नहीं होगा, तो जो आर्बिट्रेशन है, और उन्होंने नया आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट लेके आए थे, उसको मीडिएशन एक्ट के अंदर ही एक आर्बिट्रेशन एक्ट है और एक मीडिएशन एक्ट है। सो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप जॉइंटली एक आर्बिट्रेटर या 3 आर्बिट्रेटर, डिपेंड करता है, उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन जो है एक कोर्ट के द्वारा फंक्शन करता है, लेकिन एविडेंस रूल और सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाइड सिस्टम है, लेकिन वो एक जजमेंट है और वो जजमेंट बाइंडिंग है, उसको अपील करना मुश्किल अगर कोई प्रोसीजरल गैप है, या नॉर्मली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसके जो 3 जो आंकड़े बोले थे, पहले तो मीडिएशन, अगर मीडिएशन ना हो तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो आर्बिट्रेशन जो है ये बिल कहता है कि 30 दिन के अंतर्गत ही आर्बिट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेशन शुरू हो गया, जब आर्बिट्रेशन शुरू हो गया 90 डे में उसका अवार्ड आना चाहिए। तो यानी कि 120 है 6 महीने में, और मीडिएशन के 2 महीने लगा लो तो 8 महीने में कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल कमर्शियल कोर्ट में भी जाएं तो 8 महीने में या 6 महीने में आपके 2 तारीख मिलेंगे और कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये सालों चलते थे अर्ली डिस्प्यूट, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और टाइम की बचत है सबसे ज्यादा।

0: बचत टाइम है. और नॉर्मल केसेस में तो अजर्नमेंट्स होते हैं, कुछ होता है. नॉर्मली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में अजर्नमेंट्स नहीं होते.
1: So, इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि एकदम टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने समय में समाप्त होना है विवाद और उसका कुछ निर्णय निकलना है, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है. बिकॉज नॉर्मली जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार बहुत लंबे चलते हैं केसेस, आगे बढ़ते जाते हैं. सो इसको आप इस अमेंडमेंट बिल का एक बहुत बड़ा एक पहलू कहेंगे.
0: हाँ, वो तो एक बड़ा पहलू है, लेकिन एक इसके बाद एक बहुत ही और छुपा हुआ एक पहलू है. ये उन्हें बिल ने ये कहा है कि आप इसको ऑनलाइन मीडिएशन या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन और डिजिटल प्रोसेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप अगर 2 घंटे लगाते थे आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंचने में या कुछ, वो आपका टाइम बच जाता है. और इससे अच्छा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा आपका केस पेंडिंग है तो 50% अवार्ड अमाउंट जो है वो MSME को मिलना चाहिए. तो ये पूरा एक सिंप्लीफाई कर दिया है और एक प्रोसेस बना दिया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ये बहुत ही बड़ा पहलू है.
1: सो ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक जो आपने पहलू डिस्कस किए हैं कि ये MSME फ्रेंडली अमेंडमेंट बिल है, ताकि एक कोलैबोरेटिव आपको लगता है अप्रोच लिया है सरकार ने.
0: बिल्कुल कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है, MSME फ्रेंडली अप्रोच है. लेकिन आप MSME की भूमिका जो देश की इकोनॉमी में है इतनी बड़ी है कि इकोनॉमी फ्रेंडली एक बिल है. और इसमें उन्होंने एक अच्छी चीज भी की है जो खासतौर लोग ध्यान नहीं देते. पहले अगर आपको MSME की डेफिनेशन अमेंड करनी होती थी ना, तो आपको एक्ट में अमेंड करनी चाहिए. इस बिल में उन्होंने बोला कि एक्ट के बाहर आप उसको अमेंड कर सकते हैं. तो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है.
1: सो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी भी है. जैसा हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा पूरा वातावरण है, खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत तेजी से बदल रहा है. सो जरूरत अनुसार जो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कहेंगे आप.
0: बिल्कुल सही. तो अगर देखें तो पहला जो है लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, दूसरा जो MSMEs के पैसे हैं उनको बहुत जल्दी मिलेंगे, तीसरा अगर उनको पेमेंट मिलेंगे तो बैंक के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, चौथा तो बेटर वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको कहा था. और जो अभी जो है MSMEs में लोग काम करने से थोड़ा सा हिचकिचाते थे, क्योंकि ये डिलेड पेमेंट्स के सैलरी इस टाइम पे नहीं मिलते थे, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते थे, GST में डिफॉल्ट हो जाता था, और ये पूरा लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा. और न्याय का ये एक फास्टर रूट है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो अनसर्टेनिटी निकाल देती है, और सप्लायर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस होगा कि लार्जर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग सप्लाई करे और लार्जर कंपनी सप्लाई करे. तो ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था.
1: और एक डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर भी सरकार ने हमेशा, वर्तमान सरकार ने बल दिया है. सो यहाँ पर जो प्रावधान लाए गए हैं, ग्रेडेड सिस्टम ऑफ वार्निंग्स एंड मॉनेटरी पेनल्टीज, आपको लगता है कि ये भी जो डर का एक, अभी आपने डर शब्द यूज किया, वो कम होता है और ज्यादा एक फ्रेंडली एनवायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है?
0: डीक्रिमिनलाइजेशन का एक पहलू बहुत आगे पहले से चल रहा था. जनविश्वास 1.0 और जनविश्वास 2.0 हमने उस पर भी चर्चा की थी. तो अगर आप देखें तो इसमें जो है डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, बट वो ऐसे इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम और नॉन पेनल्टीज और वार्निंग्स जो लार्जर कंपनीज के लिए है वो एक है. तो इसमें जो वो इम्पोर्टेंट सिग्नल जो क्या है ना, सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना चाहिए. अगर आपने किसी सप्लायर ने माल बेचा है और आप उसको पैसा देना, आप प्लीज उसको पैसा दीजिए, क्योंकि MSME होगा. दूसरा है कि डिले तो अब अनएक्सेप्टेबल है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस टाइम में, ठीक है, पहले ये नहीं था. और तीसरा है जो MSMEs का जो कमर्शियल जस्टिस है वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, अश्योर्ड होना चाहिए, और मिनिमम इनकन्वीनियंस से डिजिटल मीडिएशन, डिजिटल आर्बिट्रेशन. तो ये अगर आप 3 इंपॉर्टेंट चीजें इस बिल को ले जाएं, और जो MSME के डेफिनेशन में ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है.
1: तो डिजिटलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन जो करनी होती है MSMEs को, उसमें भी वो उनको सहूलियत होगी, अब एक इंसेंटिवाइज होंगे कि और MSMEs भी उभर के आए. एक आपको लगता है कि ग्रोथ ऑफ MSMEs या स्केलिंग अप जो है MSMEs की, उसको भी बढ़ावा मिलेगा?
0: पहले जो है अगर आप देखें तो MSMEs का जो डेफिनेशन बढ़ा गया है, पहले लोग छोटा रहते थे और छोटा से ग्रो करने से हेजिटेट करते थे, क्योंकि कंप्लायंस ज्यादा है. तो वो डेफिनेशन चेंज करने का एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैटर्न है. दूसरा जो आपने कहा था कि आप पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और MSMEs बिजनेस नहीं कर सकते थे, और MSME को कहाँ रजिस्टर करें, तो एक उद्यम पोर्टल रजिस्टर किया था. अभी उसमें 8.9 करोड़ लगभग MSMEs रजिस्टर्ड है, और अभी कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखें, आप लार्ज कंपनी और मैं, आप एमएसएमई आपके साथ रजिस्टर्ड हूँ, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारे पास ड्यूज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा जो आप देखें तो जिम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें एमएसएमईज बिजनेस कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट परचेसेस में। ट्रेड ई फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स है, तो ये अलग अलग ई प्लेटफॉर्म अगर वहां देखें तो ई नैम भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है, ONDC भी आ रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी और सबसे बड़ा जो फायदा एमएसएमईज के लिए UPI है और जो हमारा फाइनेंशियल स्टैक है। तो डिजिटली एमएसएमईज को काफी अच्छा होना चाहिए। और अब AI आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के लिए AI के भी काफी एक सुविधा की है, तो वो डिजिटली अवेयर है और डिजिटली उसको यूज कर सके।
1: सो MSMEs जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है पिछले 12 वर्षों में। आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक, उसमें MSMEs का बहुत बड़ा रोल होने वाला है?
0: देखिए, अगर MSMEs 31% ऑफ द इकोनॉमी है और अगर हमें ग्रो करना है, तो अगर ये 31% ग्रो नहीं करेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य बिल्कुल असंभव है। और ये 31% को वो दूसरे परसेंट से ज्यादा ग्रो करने का एक सुविधा दें, तो विकसित भारत का लक्ष्य आगे सामने नजर आता है।
1: सो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जो संशोधन बिल आया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, आपको लगता है कि ये समय की मांग है और बहुत ही उपयुक्त समय पर ये लाया गया है?
0: बिल्कुल उपयुक्त समय पे लाया गया है, और गवर्नमेंट जो है निरंतर एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टेप वाइज प्रोग्रेस कर रही है। और ये जो अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे है, शायद ये आगे जाके स्टेट अंडरटेकिंग्स पे लागू करे और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू करे, तो ये स्टेप वाइज एक इंटीग्रेशन और एक डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा कदम है।
1: दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए जो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके विभिन्न पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में ये था कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

रॉकस्टार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहित चौहान, सुजैन डिमेलो की, गीतकार थे इरशाद काबिल, संगीत था ए आर रहमान का।

एक था टाइगर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना तरन्नुम मलिक के स्वर में। गीतकार थे कौसर मुनीर, संगीत था सुहैल सैन का।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना।
6: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने

ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों

0: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
1: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं।

0: मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले दो से तीन दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assen. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
2: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
1: The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़हक-ए-खेस करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तिसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवान बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। इस बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल का मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर को रोकना और लोगों की बरवक्त इंदराज के लिए हौसला अफजाई करना है। इस बिल में ये गुंजाइश मौजूद है कि रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में अगर एक साल से ज्यादा ताहम दो साल से कम की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बिल के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात का इंदराज करने में दो साल से ज्यादा की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हुक्म पर ही किया जा सकता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से हो रहे रजिस्ट्रेशन की इजाजत देने से पहले रिपोर्ट की गई पैदाइश या अमवात की तस्दीक कर लें। पैदाइश और अमवात का रजिस्ट्रेशन लाजमी है और इससे मुतालिक जारी किया गया सर्टिफिकेट किसी फर्द को कानूनी पहचान फराहम करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इससे कबल पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की

0: कोशिश की। कुछ अराकीन ने सवाल पूछे जिनका वुजरा ने जवाब भी दिया। ताहम अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी के बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत की थी अब आवाम को चढ़ावे की मुबैना चोरी के मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान सभी का है और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इसे तफवीज किए गए वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। तरफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा ने आज तख्सीस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान-ए-ज़ेरीं की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 पेश किया। अपोजिशन अराकीन नीट पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान-ए-ज़ेरीं की कार्रवाई में रखना डालते रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के गंजम जिले के तप्तपानी में पवित्र मां कंधुनी देवी गईं और वहां पूजा अर्चना की। ये उनकी आबाई रियासत के जारी 3 रोजा दौरे का एक हिस्सा था। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भगवान शिव के कदीमी मंदिर में भी पूजा की। इससे कबल दिन में उन्होंने सदारती रेलगाड़ी के जरिए भुवनेश्वर से बहरामपुर का सफर किया जो दिल्ली से आई थी। बहरामपुर से सदर जमहूरिया ने मंदिर पहुंचने के लिए तकरीबन 75 किलोमीटर सड़क का रास्ता तय किया। ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी उनके हमराह थे। मशखी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान वाकई ये मंदिर माँ कंदुनी देवी को वक्फ है और ये गंधक के कुदरती झरनों के लिए मकबूल है जिनके बारे में अकीदतमंद मानते हैं कि उनमें शिफायाबी की खसूसियात हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के साबिक गवर्नर डीवाई पाटिल के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डीवाई पाटिल अपनी इंसान दोस्ती और बिलखसूस तालीम के जरिए समाज की खिदमत करने में हमेशा पेश पेश रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गमजदा खानदान के तई ताजियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए हौसले की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। अदालत आलिया ने रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं ताकि शिकायत के इजाले को मुस्तहकम किया जा सके, धोखादही से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखादही मामलों से निमटने में बेहतरी पैदा की जा सके। अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसओपी की कॉपी फराहम करने को भी कहा है और रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो शिकायत के इजाले और रकम की बहाली के तरीक़ेकार को यकीनी बनाने में तेजी लाएं। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के प्रोग्राम पर नजरसानी की है। नजरसानी शुदा प्रोग्राम के मुताबिक बूथ सतह के अफसरों की जानिब से घर घर जाकर तस्दीक करने का अमल इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। वोटर फहरिस्तों का मुसविदा इस माह की 24 तारीख को शाया किया जाएगा जबकि हतमी वोटर फहरिस्त अब 27 अक्टूबर को शाया होगी। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि शहरी इस माह की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और एतराजात दाखिल कर सकते हैं। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर इंदिराज का अपना फॉर्म भर सकते हैं।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़ाक़ा खेज़ करार देते हुए कहा है कि इस तरह के दिखावे से हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि असल हकीकत वहां अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी दस्तों की जानिब से बिला वजह हलाकती हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में कम अज कम 90 शहरियों की जान जा चुकी है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जनप्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को भारत के दोतरफा दौरे के लिए बाजाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मुतला किया कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्स्टेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वजीर आजम को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका एहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही इस फोरम पर किए गए इजहार ख्याल के सिलसिले में वो किसी नजरिए की तौसीक करती है। पाकिस्तानी फौजों ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर POJK के बाग ज़िले में आज गैर मुसल्ला शहरियों पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद POJK के में जारी बेचैनी मजीद बढ़ गई है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने गैर मुसल्ला शहरियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर JAAC ने जाए मौके का फुटेज शेयर करते हुए ये बात कही। JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने मकबूजा इलाके के मुजफ्फराबाद जिले के मकरी खत्ते में शहरियों की मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया। ये ताज़ा वाकयात ऐसे वक्त में मंजर आम पर आए हैं जब पाकिस्तानी फौजों ने पूरे POJK में बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। साल 2019 से 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से 274 मफरूर मुजरमीन को वापस भारत लाया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने मफरूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए साल 2018 में मौशी जराइम में मुलविस मफरूर अफराद का कानून नाफिज किया। वज़ारत ने मजीद कहा कि भारत ने मफरूर मुजरमीन से निमटने के लिए मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस की क़ियादत वाला और टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल तैयार किया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत के सिर्फ 37 ममालिक के साथ हवालगी माहदे थे और इक्तसादी जराइम में फरार लोगों से निमटने या उनकी इमलाक जब्त करने से मुतालिक कोई मखसूस कानून नहीं था। वज़ारत ने वाज़े किया कि साबिका हुकूमतों में मफरूर अफराद को वापस लाने के लिए सियासी अज़्म का फुकदान था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मफरूर अफराद की हवालगी को कौमी तरजीह बनाया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने मफरूर अफराद के खिलाफ तीन निकाती हिकमत अमली जैसे आलमी रसाई, मजबूत तालमेल और सूझबूझ पर मबनी सिफारतकारी को अपनाया है। जनाब शाह ने मफरूर मुजरमीन के मामले को मुल्क की सालमियत, मुआशी इस्तेहकाम, अमन कानून की सूरत हाल और कौमी सलामती से वाबस्ता इंतहाई अहम मामला करार दिया है। आज फुकेट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज AI-2379 में परवाज के दौरान मुख्तसर तौर पर खराब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी सतह परवाज में तब्दीली करना पड़ी। बहरहाल परवाज दिल्ली में बाहिफाजत उतर गई और सभी मुसाफिर और अमला बाहिफाजत बाहर आ गए। इस तैयारी में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। एयर इंडिया ने कहा है कि इनमें से 13 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को चोटें आई हैं और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दौलत मुश्तरक खेलों में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद मुल्क लौटे

0: भारतीय खिलाड़ियों का आज खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलीट शामिल हैं। नई दिल्ली में मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सोने के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 30 लाख रुपए, चांदी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए और कांसे के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। एथलीट से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने उनसे खेल के करियर से आगे सोचने और भारतीय खेल की अगली नस्ल तैयार करने में ताउन करने वाले बनने की अपील की। बैडमिंटन में आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठे दर्जे की चालुमपोन और वोरापोल थांगसाइंगा की जोड़ी को 21-16, 21-18 से शिकस्त देकर मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। और आखिर में खास खबरें पर फिर पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मजका खेज करार दिया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौरे के मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

प्रियतमा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी किशोर कुमार की। गीत लिखा था योगेश ने और संगीत था राजेश रोशन का।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए गीत लिखा था मजरूह ने, संगीत था आर डी बर्मन का और आवाज़ थी किशोर कुमार की।

सत्ते पे सत्ता इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी किशोर कुमार, अनीते पिंटो की, और गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीत था आर डी बर्मन का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चैताली शिवलीकर का राग यमन में वायलिन वादन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में चैताली शेवलीकर का राग यमन में वायलिन वादन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है।

0: at the Korea Masters Tournament in Asan today. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडिया 1593 किलो हर्ट्ज पर डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह की सभा में 5:51 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय हिंद।